0: ये छे आकाशवाणी श्रीनगर समय ने मोहतरम 6:15 समेत पेशा खदमत छे प्रोग्राम सुबोगाही।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम सुबोगाही अजुक शुमार हेतु तुहन मेजबान तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर। वलियो यमि बाबरकत मजलिस हुंद आगाज करो कुरान करीम चन यमन आयात मुबारक हिंस तिलावत बोजने से। तिलावत पत सब्द यमनी आयात मुबारक हिंद तर्जम ति नशर।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के 6:55 हो रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी खबरों के लिए। रिले का बस जरा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केंद्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदो उपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमंत्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमंत्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एक

0: कृताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य, प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 वर्षस्य अथ च 25-2000 वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु, तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका

0: संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से

0: निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 268.81 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। ये लाइव मॉर्निंग शो है पयाम सुबह, जो सुबह 7:10 से शुरू होकर 11:30 बजे तक आप इस लाइव ट्रांसमिशन को एंजॉय करते हैं और इसमें बहुत कुछ होता है आपके लिए, बातें, मुलाकातें और एक मेहमान से भी आपके हम आज मुलाकात करवाएंगे 10:30 बजे। और आज के थीम की अगर बात करें तो आज हमारा जो थीम होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम बात करते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ है फुरकान मजीद।
1: जी रिफत जी, जैसे आपने बात की कि वुमेन पर आज बात होती है,
0: जी
1: अपलिफ्टमेंट पर बात होती है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक बड़ा सवाल आज इस 21वीं सदी के माशरे में भी पैदा होता है कि वुमेन सेफ्टी। अक्सर हम आजकल अपने माशरे में ये लफ्ज सुनते हैं,
0: बिल्कुल,
1: हर जगह से। हैरानगी की बात यह है कि अपने आप को मुहज्जब कहने के बावजूद आज हमारे माशरे में ये लफ्ज अक्सर, बल्कि यूं कहें कि चारों तरफ से सुनाई पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: वुमन का तहफ्फुज, खवातीन का तहफ्फुज, जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है।
0: बिल्कुल, देखिए औरतों के तहफ्फुज यानी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन का मतलब सिर्फ उन्हें खतरात से बचाना नहीं है फुरकान, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जिसमें वो इज्जत, एतमाद और आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। उसके लिए फर्द, खानदान, मुआशरा और हुकूमत सबकी जिम्मेदारी बनती है।
1: बिल्कुल सही, और फर्द और खानदान अगर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो जाहिर सी बात है कि विमेन सेफ्टी पर सवाल ही पैदा नहीं होता या खातीन को तहफ़ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर हर कोई फर्द अपना फर्ज निभाता है। देखिए मुझे याद आता है कि अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिक में लिखा था कि इंतजाम सल्तनत में न तो किसी औरत को महज इस बुनियाद पर कि वो औरत है किसी इल्म या कारोबार से महरूम रखना जाए।

0: आकाशवाणी श्री नगर की आवाज और बायरास्त नशियात आप तक पहुंच रही है समीन पयाम सुब प्रोग्राम में। मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद और आज की इस ट्रांसमिशन की जीनत बनी हुई है मेरे साथ रिफत आरा जी। रिफत जी, हम बात कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी पर,
1: बिल्कुल
0: खवातीन को तहफ़ देने पर।
1: जी देखिए, हर आसानी बदतमीजी और तशद्दुद के खिलाफ सिफर बर्दाश्त यानी जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया जाए तो ये भी एक सेफ्टी होगी। जब हम किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवामी मकामात पर मुनासिब रोशनी, निगरानी और महफूज ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो, लोग अगर किसी औरत के साथ ज्यादती या हरासानी देखें तो खामोश तमाशाई न बने बल्कि कानूनी और अखलाकी मदद करें। हम अक्सर देखते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है तो हम चुप बैठे खामोश तमाशाई देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। थोड़ा अपने जमीर को जगाएं और सोचे कि जिसके साथ बदतमीजी हो रही है वो मेरी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, तो इस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है।
0: देखिए, आप बात कर रहे हैं हम कि आवाज उठानी है। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं।
1: जी,
0: हम कहते हैं कि आवाज या वुमेन सेफ्टी पर बात करते हैं कि आवाज, बाज़ अवकात हमने देखें कि अक्सर जो खवातीन होती हैं जब उनके साथ कोई हादसा होता है खुदा ना करे तो वो आवाज नहीं उठाती है। देखिए, सेफ्टी का मसला तब पैदा हो जाता है इनकी जब कोई माशरा शोरी या लाशोरी तौर पर उन चीजों को देख रहा होता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी जब

0: हम ज्यादा शऊर बेदार करने की कोशिश करते हैं तो इससे पता चलता है कि ज्यादा अवेयरनेस होगी तो लोगों में ये बात बन जाएगी कि नहीं कि कोई कोई चीज गलत हो रही है, तो उस चीज पर हमने काबू पाना है।
1: सही बात
0: मुझे एक
1: है।
0: बात याद आ रही है, देखिए वुमन की बात हो रही है, हमारे माशरे में क्या होता है कि जब ये बच्ची जब छोटी होती है, मान लीजिए बचपन में कुछ अच्छा कारनामा कर दिया इस बच्ची ने,
1: बिल्कुल,
0: जब ये कोई भी अच्छा कारनामा कहते हैं और हम क्या कहते हैं, हमारे अक्सर माशरे में ये कहा जाता है कि आप मेरा बेटा हो, न कि बेटी हो।
1: क्या बात है,
0: यानी हम बचपन से ही उसकी निस्वानियत को छीन,
1: आइडेंटिटी को छीन लेते हैं,
0: उसकी जो निस्वानी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को हम उससे छीन रहे होते हैं। और बाज अवकात क्या होता है कि कहें न कहें वो एहसास कमतरी के साथ ये बच्ची जो है वो बड़ी बड़ी,
1: सही बात,
0: और फिर खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त जब कोई भी हादसा इस बच्ची के साथ होता है, या बाज अवकात हमने देखा है कि कोई चीज बन रही होती है, पनप रही होती है, ये कहें से जो शुरुआत हो रही होती है, लेकिन ये बच्ची समझ नहीं हो पा रही है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है।
1: सही बात है।
0: और फिर जब ये उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये एक अलग उस एहसास कमतरी के साथ बड़ी हुई होती है, तो उसे शायद ये लगता है कि नहीं मैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, और या मैं अगर किसी को बता भी दूं तो शायद इससे मेरी मेरी जो जात है उस जात पर कोई दाग जो है आ जाएगा। और बनिस्बत इसके सोचना तो ये चाहिए था कि मेरे लिए जो कुछ जाल बुना जा रहा है, या अगर कुछ सही नहीं हो रहा है, कोई ऐसा ट्रस्टेड पर्सन, कोई ऐसा शख्स उसकी जिंदगी में हो जो उसके दर्द को समझ सके।
1: क्या बात है,
0: जिसने ऐसा पाला हो उस बच्ची को बचपन से कि जहां ये किसी भी बात को कहने से न झिझकती हो, झिझक महसूस न करती हो।
1: बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि उनकी आइडेंटिटी छीनी जाती है, कितना ही अच्छा होता अगर आपके बेटे ने कोई अच्छा कारनामा किया, आप उसे बोलते आप मेरी सबसे अच्छी बेटी हो, आप ताकतवर हो, उसे पहले स्ट्रांग हम अपने घर से बनाएंगे, उसको सारा कुछ बताएंगे कि ऐसा आपको ऐसा करना है, उसको वो माहौल हम बराबर प्रोवाइड करेंगे अपने घर में। जब वो स्ट्रांग बनेगी घर में, तभी वो माशरे में निकलेगी, क्योंकि आप आज के दौर में आप अपनी बेटी को घर में नहीं बिठा सकते,
0: बिल्कुल सही,
1: आप उसे कैद नहीं कर सकते, बल्कि उसे आपको स्ट्रांग बनाना है, जो चीजें उसको फेस करनी है उसके लिए उसे अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, इस्लामिक तालीम उसे दीजिए, उसको पता चलेगा कि सही और गलत क्या है, और उसको फिजिकली भी स्ट्रांग बनाइए, मेंटली भी स्ट्रांग बनाइए, एक्सरसाइज करवाइए उसे कुछ ऐसे टेक्निक सिखाइए, कुछ गुर सिखाइए, ताकि वो खुद को स्ट्रांग समझ सके, या जब वो बाहर निकले तो खुद को खुद वो प्रोटेक्ट करें।
0: बिल्कुल सही। देखिए आजकल हम देख रहे हैं, आए रोज हम देखते हैं कि कुछ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही हैं कुछ
1: और वो बहुत अच्छा है,
0: कुछ सेफ्टी के दीगर जो भी चीजें हैं उनका सहारा देती हैं, लेकिन शौरी तौर पर फिर यही सवाल उठता है कि इन सब चीजों की जरूरत एक मुहज्जब माशरे में पड़नी ही नहीं चाहिए थी, कि जब हम सब ने एक माँ से ही जन्म लिया है और हम उसी जो गोद में पालने वाली माँ है, और अगर हम उसी जिन्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें अपने अंदर कितनी तब्दीली लाने की जरूरत है। मुझे याद आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें तरक्की याफ्ता कौम दूंगा।
1: क्या बात है।
0: आप देखिए बात कहां से कहां तक शुरू हो जाती है। देखिए तालीम से शऊर बेदार होता है।
1: सही बात है।
0: और ये शऊर जब हमें बेदार हो, तो फिर शायद वुमेन की सेफ्टी के लिए हमने सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हम फिर सड़क पर चलती हर किसी लड़की को बहन ही समझेंगे, बेटी ही समझेंगे, या उसे अपनी माँ का दर्जा देंगे।
1: क्या बात है।
0: और हमें शायद फिर किसी और चीज की जरूरत
1: नहीं है,
0: नहीं पड़ेगी।

0: समीन पैगाम सुन की पैगाम सुबह की नशरत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियो से मीडियम वेव 268.81 मीटर के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन मैं हूँ आपका मेजबान फुरकान मजीद और मेरे साथ हैं रिफत आरा। रिफत जी, हम बात कर रहे हैं खातीन के तहफ़ के हवाले से।
1: जी,
0: जब इस पर बात होती है, अब देखिए कुछ इकदाम ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं,
1: यानी
0: आप आजकल के माशरे में उनसे नजरें बंद करके नहीं चल सकते हैं।
1: सही,
0: वक्त की जरूरत भी है और हर कोई चीज। आप देखिए, हम बात अक्सर कर रहे हैं कि आज के दौर में हम खातीन को अपने घरों के अंदर तो नहीं रख सकते हैं, ये वो

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हम को 5-5 किलो

0: दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पतालों में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।

0: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है।

0: सत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz पर, मीडियम वेव 268.81 मीटर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम ए सुबह। सुबह 7:10 बजे से लेकर ठीक 11:30 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। बहुत कुछ है इस ट्रांसमिशन में, बातें, मुलाकातें, मुलाकात भी करवाएंगे आपकी एक मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे 10:30 बजे। आप भी सुनना मत भूलिएगा। और आज के थीम की अगर बात करें तो विमेंस के हवाले से बात होती है, विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। आज का जो हमारा थीम है, तो एक लेडी आएंगी हमारे स्टूडियो में जिनके साथ हम बात करेंगे, आप भी सुनिएगा। और हमारा मकसद होता है लेडीज़ को, ख़वातीन को इस प्रोग्राम में लाने का कि आप इंस्पायर हो जाएं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं लेकिन कहीं ना कहीं घर के किसी कोने में छुपी हुई हैं, तो उनका टैलेंट बाहर आ जाए, वो भी दुनिया को दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। फिलहाल इस बात को हम फिलहाल रोक देते हैं और कोई और बात छेड़ देते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अलग अलग रंग हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान रिफत आर और मेरे साथ है फुरकान मजीद।
3: जी रिफत, जैसे कि आपने बात की कि मूड बदल देते हैं,
2: जी जी
3: हम बात तो करते रहेंगे और हर वक्त बात करते रहेंगे उन मौजूदात पर जो समीन की दिलचस्पी के मरकज हैं।
2: जी जी,
3: आजकल वैसे मौसम का जो सूरत हाल, मतलब मौसम की जो सूरत हाल है, वो एक अजीब तरीके की बनी हुई है।
2: बिल्कुल।
3: देखिए मैं क्या करता हूँ, सुबह जब निकलना होता है तो बड़ा दिल खुश होता है कि आज दिन जबरदस्त धूप खिली हुई है और
2: आप टी-शर्ट पहनकर बाहर
3: बिल्कुल निकलने का मन कर रहा होता है और हम निकल भी जाते हैं। लेकिन शाम को वापस इंसान 4:00-5:00 बजे सोचता है मैं वापस घर कैसे जाऊंगा, मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है, मेरे पास कोई जैकेट नहीं है, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो अचानक से शुरू हो जाता है। देखिए मौसमियाती तब्दीली तो है ही, लेकिन ये मौसम एंजॉय करने का है। हमारे यहाँ एक, चूंकि अल्लाह ताला ने जो हुस्न, कुदरती हुस्न
2: कश्मीर को बख्शा है,
3: कश्मीर को बख्शा है,
2: सही बात है।
3: और ये लाजवाब है।
2: क्या बात है।
3: और हम इस हुस्न के नजारे करने के लिए मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हैं, यानी मुख्तलिफ जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं आजकल हम उनका रुख कर रहे हैं।
2: सही बात और करना भी चाहिए,
3: बिल्कुल करना भी चाहिए और कुदरती हुसन का मजा भी लेना चाहिए।
2: और टूरिस्ट सीजन है तो बहुत सारे बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं आते इस हैं वक्त इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। लेकिन जहां हम जाते हैं एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ, हमारा जहन ताज़ा हो जाता है, हम जो रोजमर्रा की जो भीड़ होती है उससे थोड़ा हटके हम निकलते हैं बाहर।

0: गुज़श्त 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
1: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
0: हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज़ अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
2: मैं NDA सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई, जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था, अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरीज करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीज़ों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीज़ें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है, तब से ये चीज़ पूरे मुल्क में नहीं है।
0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है, जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मज़कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतायन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा NDA कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
4: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये खाती और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
3: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई ख़त्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दन में जहां अमरीकी फौजी मुतायन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक्वाम मुत्तहदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाज़ों समेत हर तरह के जहाज़ों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज़ मकामात पर आज शदीद

0: बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि ज़मीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं।
3: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
4: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
5: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
3: सेहत के मशवरे,
6: ऑर्थोपेडिक कुन तकलीफस मंज छ ब्रॉडली करन इम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
3: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
4: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
3: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयामे सुबह।
4: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह।
3: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
2: यहाँ समीन पयामे सुबह की बराए रास्त नशरियात बिल्कुल जारी है। मैं हूँ आपका मेजबान फुरकान मजीद और मेरे साथ हैं
7: रिफत आरा।
2: रिफत जी, पयामे सुबह की नशरियात के कई रंग हैं, मौसीकी भी बहुत अहम है।
7: बिल्कुल।
2: और ये जो इसका रंग है, हम कभी कभार अपने सामीन को ऐसे नगमे सुनाते हैं जो वो अक्सर तो नहीं सुनते, लेकिन पयाम सुब की खूबसूरती ये है कि उसमें वो रंग उन्हें दिखाई देता है जो कश्मीरी मौसीकी का है।
7: क्या बात है।
2: इस पर ये आख मुर्मुन कोशिश बहुत तेम पत करो इस बेतिकात।

0: पावन रोजा यात्रा के लिए जामे हिफाजती मनसूबा नाफिज, फोर्सेज हाई अलर्ट पर हिफाजती बंदोबस्त मनसूबा फाल।
1: जम्मू कश्मीर के 223 खिलाड़ी सरकारी मुलाजमतों के लिए मुंतखब, तकरारनामे वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों तकसीम होंगे, सतीश शर्मा का बयान।
0: दफा 370 की मनसूखी, राम मंदिर की तामीर और कौमी फख्र की बहाली बड़ी कामयाबियां, मरकजी वजीर दाखिला, मोदी जी का बतौर वजीर आजम 12 साल मुकम्मल करना, तारीखी संग मील, मरकजी काबीना ने की सबसे तवील अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने पर तारीफी करारदाद मंजूर।
1: मुनशियात केस में मुलव्वस एसपी और मुलाजमत से बरतरफ, मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद, महकमाना एहतिसाब का वाजिया पैगाम।
0: रियासती दर्जे की बहाली के मरकज के वादे की तकमील का वक्त आ गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ईरान अमरीका जंग के जल्द खात्मे और पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर में अमन के लिए दुआगो।
1: और इस सेक्टर में हादसाती दस्ती बम धमाके, दो फौजी जवान दम तोड़ गए।
0: चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फौज की शुमाली कमान के हेडक्वार्टर्स में मसरूफियात, जम्मू व कश्मीर की मजमू सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, दरअंदाजी मुखालिफ इकदाम और बालाई इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का तफसीली जायजा, सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम, ऑपरेशनल तैयारियों और जदीदकारी के इकदाम का अहाता।
1: बारामूला में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, 9 अफराद गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से 19,410 रुपए नकदी रकम बरामद करके जब्त कर ली।
0: कश्मीर में स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की बोलचाल में ताखीर का सबब, मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की इब्तदाई नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और मुतअद्दिद सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं।
1: 5 दिनों से लापता 12 साल बच्चे की पुर असरार मौत, पुलिस की खसूसी तहकीकाती टीम सरगर्म में आमन, पुंछ में अफसोसनाक वाकया।
0: सोनमर्ग गोमरी शाहरा पर माल बिरादर गाड़ियों को भी दो तरफा नकलो हरकत की इजाजत दी जाए, ताजरों को मुश्किलात का सामना, जिससे लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स।
1: जमीन सुर्खियां भी और भी हैं, पहले ये वक्फा।
2: जमींदार भाई मैंने दवा से
3: होंडा दवा मोटर, मजबूत पायदार दमदार तो वही वादा पर अजमूम बड़ी पाई परफॉर्मेंस कंपनी होंडा कटी प्रोन दवा मोटर इन एक्सचेंज स्कीम तहत नियो नो होंडा दवा मोटर रेप्टिकल कंपनी ही बाइक तैयार डीलर जेके स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे, क्या आप चाहते है की आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: चुना सलो होंडा एक्टिवा या होंडा बाइक अनो विनकेनस लगे खानरस मज हतन कालन बकार विसे गाड़ी मज कोत कोतवा
6: क्या छो वाना विनकेन रपन दवन जरूरत छे
5: बोस विनकेनस छ कश्मीर होंडा वे लोड डाउन पेमेंट स्पेट होंडा एक्टिवा जवान तो बाकी पोसन ऑन स्पॉट फाइनेंस करा पाछे पानी मर्जी होंडा डियो अनो एक्टिवा अखत दया अखत पुंच
6: मगर होंडा क्या है
5: ठीक है जी यस क्वालिटी हांड हस छ सछन बे कोनी कंपनी मजबूत बॉडी स्पीड कंट्रोल ज्यादा माइलेज तो लो मेंटेनेंस
6: विष्ट क्या गो जबर
3: होंडा एक्टिवा या कांटे होंडा बाइक हेल बापत याद कंपनी बाइक के डीलर कश्मीर होंडा मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।
1: समीन सुर्खियां आप आकाशवाणी श्रीनगर से बराह रास्त समाप्त कर रहे हैं, मैं हूँ आपका मेजबान फुरकान मजीद
0: और मैं हूँ रिफत आरा।
1: अब नजर डालते हैं अखबारात में शाया दीगर अहम खबरों पर। मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसकी सुर्खी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु से मुलाकात, जम्मू कश्मीर में रेल खिदमात को बढ़ाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया।
0: शहर खास वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी श्रीनगर का वफद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से मुलाकात, चंद मामलात की तरफ तवज्जो मरकूज कराई गई।
1: चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फौज की शुमारी कमान के हेडक्वार्टर में मसरूफियात, जम्मू कश्मीर की मजमू सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा।
0: नशा मुक्त भारत अभियान बड़गाम में जोर पकड़ रहा है, आगाही और आउटरीच सरगर्मियां तेज हो गई।
1: बदरगाम के लिए 15.99 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी।
0: जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने जिले में मनरेगा स्कीम के तहत कामों और कारकर्दगी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक जामिया जायजा मीटिंग की सदारत की।
1: गुलमर्ग गंडोला में तकनीकी खराबी, दो हफ्ते बाद तहकीकात का हुक्म।

0: जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने नौजवानों की शमूलियत के इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लिया।
1: तमाम मंसूबों पर काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए और मयार पर कोई समझौता न किया जाए। सनंदर चौधरी, नायब वजीर आला ने बांडीपुरा में कलीदी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तफसीली दौरा किया।
0: स्कॉट्स कश्मीर की खेत बचाओ मुहिम ने श्रीनगर के देहातों में किसानों की दहलीज तक रसाई के जरिए रफ्तार हासिल की।
1: पुंछ में LOC अबूर करने वाला कमसन लड़का जेर हिरासत, सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की जांच में मसरूफ।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क्यादत में हुकूमत ने वतरगाम के लिए 15.99 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी।
1: वजीर सेहत सकीना इतू ने DH पोरा के कई इलाकों का दौरा किया। हुकूमत अवामी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, खिदमात की फराहमी बेहतर करने और नौजवानों व खातीन के लिए नए मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म है।
0: डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने हारवन ब्लॉक में हंगामी सेहत की देखभाल की खिदमात को मजबूत बनाने के लिए BMO हजरत बल को सहूलियात से लैस एम्बुलेंस सौंप दी।
1: जम्मू कश्मीर में पानी का बहरान मजीद गहरा, रवा बरस बारिश में 42% कमी, पीने के पानी की किल्लत का शदीद खतरा, जीर जमीन पानी की कमी होती सतह के बायस लाखों अफराद मुतासर हो सकते हैं, ज़राअत पर मनफी असरात का खदशा, पन बिजली पैदावार में भी कमी का खतरा माहिरीन।
0: DIG जनूबी कश्मीर ने हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। तमाम सिक्योरिटी व एजेंसीज को हम आहंगी, हाई अलर्ट और मरबूत प्लानिंग पर जोर दिया। यात्रियों की हिफाजत, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस को अव्वलीन
1: तरजीह। हम हर किस्म की शरारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन।
0: मरकजी वजीर संजय सेठ ने दरगाह हजरत बल की तामीर नौ और खूबसूरती के लिए डॉक्टर दरकशाह अंद्राबी की सताइश की।
1: अमरीकी कार्रवाई के बाद ईरान का भरपूर जवाब, बहरीन उर्दन और कुवैत में फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले कर दिए।
0: मनशियात केस में मुबैना मुलविस SPO मुलाजमत से बरतरफ, कानून सबके लिए बराबर, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत महकमाना एहतसाब, मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद, महकमाना एहतसाब का फाजह पैगाम।
1: अमरीकी हमलों के बाद ईरान मुतहरक, सऊदी और तुर्क वज़राए खारजा से हंगामी राब्ते।
0: जम्मू कश्मीर के तमाम हॉस्टलों की माहाना जांच के लिए कमेटियों का कयाम, हॉस्टल इंतजामिया में शफाफियत और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नया निजाम नाफिज।
1: जनूबी अफ्रीका, मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक।
0: पॉलिसी की तातीली से विकसित भारत तक का सफर, मोदी दौर ने भारत की नई इबारत लिखी।
1: ईरान ने $3 अरब के असासे अबू जहबी मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद कर दी।
0: 21 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैच में बांग्लादेश से शिकस्त।
1: मशरकी वस्ता में मजीद कशीदगी, चीन का बयान सामने आ गया।
0: डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की डल झील में योगा सेशन की क्यादत, आज की दुनिया में योगा जिस्मानी तवानाई और जहनी मजबूती के लिए बेहतरीन डाल है, अनुराधा गुफ्ता।
1: समय आखिर पर यह खबर कि अमरीकी अदालत ने H-1B वीजा पर $1,00,000 फीस खत्म की, कई रियासतों ने फैसले का खैर मकदम किया। जमीन ये थी मकामी अखबारात से ली गई सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और TVS कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: और रहनुमाई।
1: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नोलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
2: सेहत के मशवरे
3: ऑर्थोपेडिक कुंती तकलीफस मंज छ ब्रॉडली करन इन क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स।
2: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
0: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
2: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह।
0: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयाम में सुबह।
2: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयाम में सुबह।
4: समीम प्याम सुबह की नशियात तो जारी है, यहाँ रुकते हैं खबरों के लिए। पहले कश्मीरी में उसके फौरन बाद उर्दू में।
5: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:00 सपित खबरन हुंद बुलेटिन हेत छुस मंजूर अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वोनमुत मुल्क कैन 1,40,00,000 अवाम च उम्मीद यन प्रथ सूरत मज पू कर। तमो वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसन हमेशा कौमुक एतमाद मजबूत कोरमुत। नवी दिल्ली हिंदिस भारत मंडपमस मज रात NDA कनक्लेवस खताब करान वोन तमो ज मुल्क अवामन कौमी सुथरस पे सियासी इस्तेकाम अहमियत समझम। तमो वो मुल्क पतम 12 वरियन दौरान सारे शोबन मज थकिन लायक तरक्की प्रम तो अम साकार सपदान NDA सरकार च पालसी सही वत पकान।
6: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
5: यपर जम्मू कश्मीर लूख तो NDA सरकार चो फलही स्कीमों दस फायदेमंद सपदान। NDA सरकार 2 मुकम्मल सपदन के सिलसिलस मज वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान।
7: 12 साल बेमिसाल है और ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी वो अब कंप्यूटर बच्चों की पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस अब बढ़ गए हैं IITs और बाकी चीजें अब हड़ताल पीछे रह गया है। अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई, अब तरक्की और कंप्यूटर AI का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है, टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है।
5: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बायोमेडिकल इख्तिरायत तिबी वुचदह शोबस मज इम्यूनोलॉजी बड़वन रोल वतलोमुत। SKICC श्रीनगर रात इंडियन इम्यूनोलॉजी सोसाइटी हिंज सालान कॉन्फ्रेंस इम्यूनोकॉन 2017 इफ्तिताही तकरीब खताब करान वोन तमो साइंसी इलम गन आम लूकन हंद फायदे बापत मुकम्मल पाठ काम लागन यिन युत जन लागदार बमारियन हंद मुकाबल असरदार तरीक कर यथ हे। बचाव वजीर ममलिकत संजय सेठन रात लोक भवन श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मुलाकात कोरमुत। JK होटलियर्स क्लब के वफदन तोर सदर मुश्ताक चाया सरबराही मज LGS सत मुलाकात। इस दौरान कोर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उड़ी सेक्टरस मज फर्ज नख वालान पन जू छपि दिन वाल दोन बहादुर जवानन सोवर चवान विक्रम बाल कृष्ण तो सप्पर जादव अर्जुन राजेंद्र खराज अकीदत अदा। अकिस पैगामस मज वो तमो कौम थावि यमन बहादुर जवानन हज कुर्बानी हमेशा याद। LGN यहिंद गरिकन सत हमदर्दी बम। वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन कोर नवी दिल्ली मज रेलवे किस मरकजी वजीर अश्वनी विष्णुवस सत मुलाकात तो जम्मू कश्मीरस मज रेल खजमतन पोछर दिनस नस्बत कोरुक अमूरन पे तबदुल ख्याल। तमो वो अत मौक पे जम श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वादी मुल्क कैन मुख्तलिफ हिस्सन सत रलान तो कनेक्टिविटी हजन सहूलतन मज हुर कर बापत अक मील कन हज हसियत

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ आवाम की तवक्कात को हर सूरत में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हमेशा कौम के एतमाद को मुस्तहकम किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल शाम एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने पिछले 12 बरसों के दौरान तमाम शोबों में नुमाया तरक्की हासिल की और इससे ये बात वाजह हो जाती है कि एनडीए हुकूमत की पॉलिसियां सही समत में जा रही हैं।
1: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: इधर जम्मू कश्मीर के लोग भी एनडीए हुकूमत की फलाह स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्श अंद्रावी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: 12 साल बेमिसाल है और ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव, हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेजेस अब बढ़ गए हैं, आईआईटीज और बाकी चीजें, अब हड़ताल पीछे रह गया है, अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई। अब तरक्की और कंप्यूटर एआई का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है, टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बायोमेडिकल इख्तराइयत और तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में इम्यूनोलॉजी के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया है। एसकेआईसीसी श्रीनगर में कल इंडियन इम्यूनोलॉजी सोसाइटी की सालाना कॉन्फ्रेंस इम्यूनोकॉन 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साइंसी उलूम को आम लोगों के फायदे के लिए मुकम्मल तौर से बरोएकार लाया जाना चाहिए ताकि लागदार बीमारियों का असरदार तरीके पर मुकाबला किया जा सके। दिफा के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने कल लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। जैन के होटलियर्स क्लब का एक वफद भी उनके सदर मुश्ताक चाय की कयादत में एलजी से मुलाकात हुआ। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उड़ी सेक्टर में अपने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वाले फौज के दो बहादुर जवानों सोवर चवान विक्रम बालकृष्ण और सपर जादव अर्जुन राजेंद्र को खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कौम इन बहादुर जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। मनोज सिन्हा ने उनके कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में रेल खिदमात को तकवीत बख्शने से मुतलिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वादी को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जोड़ने और कनेक्टिविटी की सहूलियात

0: में इजाफा करने के ताल्लुक से एक संग मील की हैसियत इख्तियार कर रही है। इस मौके पर वजीर आला ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अनंतनाग में एक स्टॉपेज कायम करने का मामला मरकजी वजीर की नोट्स में लाया ताकि जनूबी कश्मीर के लोगों को राहत नसीब हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पद यात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मनशियात के खिलाफ एलजी का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
0: दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है शबे खबर की पेशकश। शहर शहर मंजर
3: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश शहर शहर मंजर।
4: आदाब। शहर शहर मंजर का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। अवामी शिकायात और मुतालबात पर मबनी प्रोग्राम के आगाज में आइए सुनते हैं शहर शहर मंजर को मौसूल हुई कुछ फोन कॉल्स।
5: मोहम्मद जमना इब्राहिम सेक्टर पे ये सड़क खराब नाली खराब आज ब्रो जवरी आय तो बे वल सा क्या वो वल सा क्या कमिश्नर सब दी एप्लिकेशन तम सूच यो नफर तुल फोटो वो क्या दा नाल करनी ठीक तो सड़क तरनी ठीक मे तुम कम दुम तुम सी सी टी रोड पे दुम क्या तुम कम वो दुम कमिश्नर सबन सूच यो अच्छा मे दल कर मेहरबानी ये नौजवान इंसान वाले इन दबन मे गोर अमर रोजा जो त्रे घर तम बड़ तकलीफ गए पे कानर वन कि भूज वन कि दौद रटन सब्जी रट दिन कह पाए तुम तुल फोटो फोटो तुल सोरे कह कह आय मौक पे एस्टिमेट बनो खब क्या पत आय नारा तीन तम तो ना सोर खराब मोमूली आबरा से पवान ना बना चोचि ना सब्जी ना दौद रटन अद पे बलान त्रे घर रोजान इन ज्यादा मुश्किल इन बिचार जो नौजवान इंसान सदी गबन मन अत खसान आब पलो भरने शिको सोमूली रूद पे ये सोर बुल एस्टिमेट बनो पत क्या दलील गो पत क्या कुरुन यह वनान इन कहें वो कप फो पत पत वो गसान अच्छा ये तम ओर द्राम
6: गुलाम हसन बस चाकरपूरा खास बड़गाम जीरीन मांग अमि चीफ सब चीफ इंजीनियर आर एन बी एस तान वाने चाकरपूरा छुल रोड तकरीबन चूल पंदा शत अपार यपर अस रलान मगर अस पे गो द्रंग पत सुन पत पे वसुन छुल मेहरबानी कर मेहरबानी कर सी शिकायत वाने तो चीफ इंजीनियर आर एन बी एस तान क्या लागन अत काम
7: सर अल अर्जाल पे खान सब ब्लॉक मज जनाब अब्दुलरहमान कुमार जनाब सर अर्ज इत कि अस नाल सख नाग यप वसान सर अस गए पतम पंदा वरी तीन बेस वन लोक तम तो कहें आज सोई मांग सौ बट सब अम प्रोग्राम के वसा मेहरबानी कर कम अच्छा बना अपर सर
8: कदल
7: नाल सख नाग सिर्फ पे पोजो जनाब वन करान कहें
6: सर अमद मलिक दरगाम बड़गाम पे पारक फ्लोरी कल्चर पारक तथा ईदगाह सर तथा यूत ठोट मीत लिफाफ मा जीता मशीन आम कर डिपार्टमेंट और अत क्या फ्लोरी कल्चर डिपार्टमेंट अच्छा सही प्रॉब्लम गोर से तुरी दाम अंदर मगर तम पे वापस नान अति वन तम पार्क हाल अल कमन तम प्रोग्राम के जरिए कत वाता बड़गोम डी सी तान कत वाता कि पार्क ध्यान गन दिन ताकि टूरस्ट मिले वोबार अम पार्क थ्रू सर अच्छा सही प्रॉब्लम सर अम पार्क थ्रू गा सर
9: हजरत बीर मीरपुर पे अर्ज कर अब्दुल हामिद बट सर मसला परेशानी गाँव आब प्रॉब्लम अस गस मज टी आब वसान अस गम फी कर वाल बनमें आंगन मज सब्जी अम लागान सोरे आब सब्जी चन खुद कहें।

0: के पास हेलमेट नहीं होगा, किस तरह की कार्रवाई होती है एज पर लॉ?
1: उसमें एज पर लॉ जो है विदाउट हेलमेट उसको चालान दिया जाता है, दैट अमाउंट अबाउट 1000 रुपीज चालान, और अगर वो कंपाउंड करता है तो 500 ऑन स्पॉट वो कर सकता है एंड ही इज चालान बट नोबडी इज स्पेयर्ड। अब ये जो है हमारा मसला ये है कि इस वक्त लोग काफी वायोलेशन कर रहे हैं बट देन आहिस्ता आहिस्ता पिलियंस पे भी फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं कि कम से कम राइडर जो है वो हेलमेट पहन ले, बट देन अल्टीमेटली दोनों को ये हेलमेट जो पहनना, ये पिलियन हो या राइडर हो दोनों को।
0: सामईन, अदालती उज्मा ने अव्वल से आठवीं जमात तक के तालिब इल्मों को पढ़ाने वाले बच्चों के असातिज़ा के TET यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाजमी करार दिया है। असातिज़ा साहिबान की जानिब से इस ज़मन में सामने आए रद्द अमल के बारे में प्रोग्राम सरबरा तारिक राठौर ने वादी के एक नामवर उस्ताद और स्टेट अवार्ड याफ्ता मुदर्रिस जावेद जव्वाद से बात की है। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा हिस्सा।
2: जब तक अकाउंटेबिलिटी ना होगी, और ये अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, बॉटम टू टॉप नहीं होनी चाहिए। जैसे 6 टीचर्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, 104 स्टूडेंट्स हैं, 2 टीचर्स हैं, हु इज रेस्पॉन्सिबल। इस तरह हम खुद अपने टीचर्स को, जो टैलेंटेड टीचर्स हैं, अगरचे रिसोर्स बहुत सरफ हो रहा है गवर्नमेंट स्कूलों पर, और सवाल उठने चाहिए, उठ रहे हैं, और ये सवाल बहुत पहले उठने चाहिए थे। मैं जाती तौर पर कहना चाहूंगा कि मैंने 2007 में इस पे एक ओपन लेटर लिखा था, उस वक्त जो हमारे टीचर्स फोरम के जो सरबराह थे उनको, उनके नाम मैंने एक ओपन लिखी थी, और मैंने उस वक्त एक पॉइंट आउट किया था कि अगर हम आज सरकारी स्कूलों की तरफ तवज्जो न दें तो फ्यूचर में सरकारी स्कूल बंद होने का एहतमाल है, और वही हमारे सामने है। जो इसमें जो हमारे लीडर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल बनता है, क्योंकि जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं, राइट्स के साथ साथ हमें वो अपने ड्यूटीज को भी याद रखना पड़ेगा, और राइट्स के साथ हमारे बच्चे वाबस्ता है, वो इस कौम का मुस्तकबिल है। अगर हम उन बच्चों का नहीं सोचेंगे तो हमारे राइट्स की कोई हैसियत ही नहीं रहती, और आज हम देख रहे हैं हमने बहुत जुदोजहद की, टीचर्स कम्युनिटी ने बहुत जुदोजहद की अपने राइट्स के लिए, लेकिन आज उस मुकाम पर हम खड़े हो गए हैं जहां टीचर का जो इज्जत है वो दांव पर लगी है, या टीचर का जो उसकी जो उसका जो कैरियर है वो भी दांव पर लगा हुआ है, उसकी फैमिली इस वक्त टेंशन में है क्योंकि अब उसको एक एग्जाम का सामना करना पड़ा है, वो कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी कुछ रोल है, और हमें चाहिए कि जो टीचर कम्युनिटी है, टीचर लीडर्स हैं, उनको इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, हमें खुद आकर सरकारी स्कूलों के निजाम को बेहतर करना चाहिए, हमें खुद आगे कर बच्चों के जो राइट्स है उनके लिए जुदोजहद करनी चाहिए, खुद ब खुद हमारे राइट्स भी फिर मिल जाएंगे। और साथ ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सिस्टम है उसमें लाजमी तौर पर अकाउंटेबिलिटी का आंसर होना चाहिए, और वो टॉप से बॉटम की तरफ होना चाहिए।
0: जैसे सब स्टूडेंट, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन एजुकेशन सेक्टर, ये किस तरह से एक सिनर्जाइज करके बनाया जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जो पिवोटल है इसमें वो स्टेक होल्डर है स्टूडेंट। हालांकि स्टूडेंट इनोसेंट है, स्टूडेंट को पता नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया जाएगा, मुझे क्या करना है, लेकिन टीचर जो है उसी के हाथ में उसके मुस्तकबिल की डोर है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डोर है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: तारिक साहब, आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। एजुकेशन में पहले ही बताया जाता है कि एक ट्राईपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर है, पेरेंट है और स्टूडेंट है, लेकिन जो बदलता हुआ अब सिनेरियो है, मुझे लगता है इसमें अब जो पेरेंट है उसका रोल अब उतना नहीं रहा है। वजह यह है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो अक्सर उन फैमिली से आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स वो बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स में उतनी दिलचस्पी वो नहीं लेते हैं, तो इसके लिए अब रोल बढ़ता है, मुझे लगता है इसमें टीचर का रोल बढ़ता है, स्टूडेंट तो स्कूल में है ही। तो जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में हम शुरू करते हैं जडियो से डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन तक, तो इनका रोल ज्यादा अहम हो जाता है। क्या इसी तरह जो हमारे लीडर्स है, मुख्य टीचर्स के लीडर जो है, फोरम्स जो हैं, अगर वो सब मिलकर एक टेबल पर बैठकर एक रोड मैप तैयार करें, मुझे नहीं लगता है कि इस इशू को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
0: इस बारे में जेंट के टीचर्स फोरम के चेयरमैन शौकत अली बेग के साथ भी एक बातचीत रिकॉर्ड की गई है। प्रोग्राम के गुज़श्ते शुमारे में हमने इस बातचीत का पहला हिस्सा नश्र किया था। आइए सुनते हैं इसी बातचीत का दूसरा हिस्सा।
3: हमारे जो असातिज़ा किराम हैं, अपनी जिम्मेदारियां जो उनकी है स्टूडेंट्स के तई एजुकेशन सिस्टम के तहत, एज पर अवर क्यूरिकुलम, एज पर अवर सिलेबस, एज पर अवर सिस्टम, क्या स्टूडेंट्स के साथ इसमें इंसाफ हो रहा है? और सरकारी सिस्टम में बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छे इंसेंटिव हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है, यानी स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है, स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है, उनकी जो पेडागॉजी है, या सारी चीजें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उसके साथ भी इंसाफ हो रहा है?
4: बिल्कुल सर, ये सही बात आपने फरमाई, क्या वाकई उनके साथ इंसाफ हो रहा है। आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो आपको वाजह करती है।

0: कि किस स्टैंडर्ड के लिए कौन सा सिलेबस, कौन सी चीजें, कौन से पैडागॉजिकल इनपुट्स होने चाहिए, वो एक टीचर में होने चाहिए। बनस्बत हम इनको टीटी से वो इनकलाब नहीं आएगा, बनस्बत हम उसके बनस्बत अगर हम सीधे इन्हीं चीजों को पकड़ेंगे, हम जाके देखेंगे क्या वाकई हमारे स्टूडेंट्स को, चाहे जो वो प्री प्राइमरी टीचर्स स्टूडेंट्स हैं या प्राइमरी लेवल के टीचर्स हैं, जिनको नेशनल पॉलिसी में बिल्कुल वाजे तौर पर कैटेगराइज किया गया है अप टू थर्ड स्टैंडर्ड तक जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्या उनमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्वायर किए हैं जो उनको आगे लेने के लिए बहुत जरूरी है। उसमें क्लियर कट हमारे जो फंडामेंटल जो इसमें इनपुट्स हैं होने चाहिए इस बच्चे के लिए, जो थर्ड ग्रेड का स्टूडेंट होगा उसके लिए, और उसके बाद जो थर्ड ग्रेड से अप टू प्राइमरी लेवल तक जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, ये वाजे तौर पर एनईपी 2020 में सब कुछ दिया हुआ है। इसमें टीईटी और उसके साथ कोई वाबस्ता नहीं है। टीईटी सिर्फ हमें हमारी प्रोफेशनल और हमारी ये क्वालिटी स्किल बढ़ा सकता है, लेकिन जो एनईपी 2020 है उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। अगर टीचर्स ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, उनको हमें सिर्फ गाइड अप करना है। वो गाइड किसके जरिए, मैं आपको अभी अर्ज कर रहा था कि अगर हम इनको कैपेसिटी बिल्डिंग, वही कैपेसिटी बिल्डिंग में सारी चीजें आती हैं, हम टीचर्स में वो कैपेसिटी बिल्डिंग देंगे ताकि वो इन स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ कर पाए एज पर एनईपी 2020। टीचर को हर लिहाज में जो क्लासरूम सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर क्लासरूम में मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, बच्चों को किस चीज के लिए मैं उनको आज ये नॉलेज देने जा रहा हूँ, वो पहले उस पे उसको खुद पे अबूर होना चाहिए, उसके बाद ही वो इम्पोर्ट कर सकता है इनको बच्चों को। लिहाजा टीचर को हर हाल में इसके लिए तैयार रहना चाहिए ताकि वो क्लासरूम ट्रांजेक्शन जो है वो एक ऐसे माहौल में हो जिसमें बच्चा लर्न कर पाए।
1: समीन काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने अदालत उज्मा का ये फैसला अभी तक लागू नहीं किया है और इस पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। इस बारे में वजीर तालीम सकीना ईतो ने शहर शहर मंजर के साथ बात करते हुए कहा,
2: हमने तो शुरू से कहा है कि ये टीचर जो हैं हमारे बच्चों को जो तालीम देते हैं, जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने का सलीका सिखाते हैं, जो उनको KS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी बड़े ओहदे हैं उन पे बिठाने के लिए उनको तालीम देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए हर एक वो चीज़ करते हैं जो इन टीचर्स के हाथ में है। जब ये आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आई है कि इसमें जो है सारे टीचर्स को टीईटी टेस्ट देना पड़ेगा, उसी वक्त हमने फैसला किया था हमारी सरकार ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम इनकी इसमें मदद करेंगे। मतलब आप देखें, ये एक टीचर जो आप जिसको आप इतनी इज्जत करते हैं, जितना जिसको लोग मानते हैं, उसको आप कह रहे हो कि 30 साल के बाद आप खुद एग्जाम दे दो, जो बच्चों को एग्जाम दिलवा रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि हम रिव्यू पिटिशन करेंगे और ये एक इतने 2-3 महीने से हमने उसके लिए कोशिश की और उसके लिए काम किया है पूरे डिपार्टमेंट ने, और ये रिट पिटिशन जो है कोर्ट में दायर हो गई है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन हमारे भाई जो हैं टीचर्स हैं उनको इस रिव्यू पिटिशन से फायदा मिल सकता है। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, उसको वहाँ पे लेके जाएंगे, ऑलरेडी दर्ज हुई है।
1: प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं कुछ मजीद फोन कॉल्स।
3: तकरीबन 400 चूल से सोनपा बड़ गाम असल गाम अकूल मन लड़का गुतर ना बिल्डिंग आ हुक दर्जा अम किस मिनिस्टर वनता दपस अगर तुम प्रेस कुछ जाए दिवान अत कर् अपग्रेड यह
4: चिनार कॉलोनी चेक कावसा यह डिस्ट्रिक्ट बड़गामस महमूद मंसूर खान अस मसल आब मे दुद वसात सूत अकि लटि तुदे जरिए तो पत् वन तुम एम एल ए सोबस मगर कहें ती कारवाई गई ना पी एच एस ना दिवान टेंकर टेंकर दिवान पांच दज तो हो स्कीम बनानी जर्दा पे वो तथ चलान कत पे तथ कहीं गान मेहरबानी कर सोन वो चीफ सेक्रेटरस यह गुजारिश क्या कि बहुत थे एग्जाम वन एडवल।

0: जैसा आप बता ही रहे हैं, अस्पताल में पेशरफ्त हो रही है, हर चीज को ध्यान से देखा जा रहा है। सरकारी सतह पे कुछ कमियां हैं, वो मजमूई तौर उन कमियों को समझने की जरूरत है, लेकिन जो हमारी हिस्सेदारी है उसमें शायद उतनी कोई कमी वाका नहीं हो रही है। हम बराबर इस अस्पताल की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, और अमला भी काम कर रहा है, डायरेक्टोरेट भी काम कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, लेकिन कुछ अहम चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जिनको समझने की जरूरत है, जहाँ मल्टी डिपार्टमेंट इंटरवेंशन होती है। जहाँ तक लिफ्ट का ताल्लुक है, लिफ्ट पहले से तैयार है। लिफ्ट इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करना था, इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम है, जो हाउसिंग बोर्ड को पूरा करनी थी। हॉस्पिटल वालों ने प्रोसीजर के मुताबिक बाजाबता चिट्ठी लिखी हाउसिंग बोर्ड को कि वो टेक्निकल फॉल्ट क्लियर करें, ताकि पेशेंट्स को ये सुविधा इमीडिएटली मिल पाए, जिसकी बहुत जरूरत है। लेकिन हाउसिंग डिपार्टमेंट फॉर नो रीजन अभी तक डिले करती आई है, और आपके माध्यम से मैं उनको याद दिला दूं, हाउसिंग बोर्ड वालों को, कि इस तरह का तगाफुल बहुत ही गलत है, और उनको फौरी तौर खत का जवाब देकर वहाँ इंस्पेक्शन दोबारा कराएं, और इंस्पेक्शन के साथ साथ जो लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है, जो उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, उसको दूर करके लिफ्ट को, वो इंस्टॉल्ड है, लिफ्ट को शुरू कराएं। दोबारा मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उन्हें अपनी कमी को पूरा करना चाहिए, और लिफ्ट की जरूरत है, उसको शुरू कराएं।
1: शहर मंजर के लिए बांडीपोरा से मैं आदिल इस्माइल।
2: तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में एम्बुलेंस सर्विस को कलीदी अहमियत हासिल है। एम्बुलेंस सर्विस तभी कामयाब और नतीजा खैज साबित होगी जब एम्बुलेंस कॉरिडोर दस्तियाब हो। वादी में अवामी सतह पर एम्बुलेंस रहदारी के कयाम की मांग बढ़ रही है। हमने प्रोग्राम के गुज़श्ते शुमारे में इस ताल्लुक से एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी। प्रोग्राम सरबरा तारिक राठौर ने शहरी खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर्स के चेयरमैन बशीर अहमद कन्यू के साथ बात की है, आइए सुनते हैं।
3: क्या सरकार को ये नहीं करना चाहिए पॉलिसी प्लानिंग में कि जब हम सड़कें बनाएं, हाईवेज बनाएं, कि एम्बुलेंस का कॉरिडोर, एम्बुलेंस की लेन जो है वो अलग से हो? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: देखिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा है और होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है क्योंकि उसमें भी एक इंसानी जान होता है, और एम्बुलेंस को हमें पहले रास्ता देना है। और जब आज के दौर में अगर हम अभी की अपनी डेवलपमेंट देखेंगे, अपनी सड़कें देखेंगे, हम तो रास्ता दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वजह यह होती है कि उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। जब ट्रैफिक जैमिंग होती है तो बंदा साइड से गाड़ी लगाता तो साइड में ऑलरेडी गाड़ी पार्क होती है। वो वहाँ फेलियर है हमारे सिस्टम का, वो हमारे लोगों का फेलियर नहीं, वो सिस्टम का फेलियर है कि जगह जगह रोड्स पे गाड़ियां होती हैं और जैमिंग होती है, तो पीछे से एम्बुलेंस सायरन बजाती है, तो बेचारा जो आगे वाली गाड़ी है वो उसको साइड नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए एक अच्छा अलग सा एक कॉरिडोर होना चाहिए, एक अलग सा वे होना चाहिए, जहाँ से एम्बुलेंस से चले और अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, चाहे उसमें इमरजेंसी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। देखो वजह क्या है, यहाँ फेलियर है सिस्टम का, क्योंकि जिन्होंने इस तरीके से हमें फैसिलिट किया ही नहीं। आप देखोगे, आप शहरी खास देखो, डाउनटाउन, आप डाउनटाउन में देखोगे स्मार्ट सिटी का काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ। हम नहीं कहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, 30 साल 35 साल बाद हुआ, कम से कम डाउनटाउन पे काम हुआ, मगर किसी एक जगह इन्होंने वो पार्किंग रखी नहीं कि भाई अगर दुकानदार आएगा वो अपनी गाड़ी कहाँ रखेगा। तो ये सब चीजें, ये फेलियर है हमारे सिस्टम का। यहाँ के जो जो ये रोड्स बनाते हैं उनको देखना है, ये चीजें उनको देखनी है। वैसे मैं एक सोसाइटी चलाता हूँ, एक ट्रेंड चलाता हूँ, जब मैं ये रियलाइज कर सकता हूँ तो कम से कम सिस्टम को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि कम से कम हमारी जो इमरजेंसी एम्बुलेंस है ये कैसे पास हो, ये इसमें इंसानी जान हो, तो उसके लिए एक अलग सा वे होना चाहिए जिससे ये अपनी मंजिल मकसद पे पहुंचना चाहिए। ये बात भी हम इंशाल्लाह नोट की मैंने यहाँ पे। जब भी कोई काम होता है, किसी जगह सड़क का काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, उसमें बाज़ाता एक नोटिस निकलती है, वो यहाँ के लोगों को उस पे नजर नहीं है कि भाई किसी को कोई एतराज मत है, तो उस टाइम हम चुप रहते हैं। जब ये बनती है तो उस टाइम उसके बाद हम उसके नेगेटिव्स देखते हैं। अगर हम पहले ही देखे, वैसे थे हम यहाँ के नागरिक हैं, हमारा राइट है बोलना। अगर स्मार्ट सिटी बनी तो उस टाइम अगर हम बोलते भाई इधर ऐसा होना चाहिए, उधर ऐसा होना चाहिए, आज हमें ये ट्रैफिक जैमिंग देखनी नहीं पड़ती, तो उस टाइम हम चुप रहे। अगर स्मार्ट सिटी में टाइल्स लगाए, इनका हक नहीं बनता है कम से कम हम देखेंगे कि भाई किसी जगह मत

0: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेट सुबह 10 बजे पेट साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविन तुए प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम प्रे दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बज पेठ साढ़न 10 बजन ताम नश्र सब्दान।
2: समीन तुएसु ऋषि तो सूफी वैचारण पेट मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 2.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन आपको बताते चले कि प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं आप पयाम सुबह, और पयाम सुबह की अब आखिरी कड़ी पेश होगी। ये है लाइव इंटरैक्टिव शो, लीजिए समाप्त कीजिए।

0: संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयाम ए सुबह
1: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर पयाम ए सुबह।
2: जी सामीन, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.81 MHz पर, और इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर एक खूबसूरत मेहमान जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, मुस्कुरा रही हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ और बहुत ही अच्छी लेडी जो हमारे साथ हैं। आप इनकी आवाज़ से आप मानूस हैं, बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता वाबस्ता रहा है इनका रेडियो के साथ, बहुत अच्छे नगमे गाए हैं इन्होंने। मेरी मुराद है डॉक्टर शाजिया हमीद जी से। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहिबा।
3: जी वालेकुम सलाम,
2: कैसी हैं आप?
3: अल्लाह ताला का शुक्र है, सबसे पहला अल्लाह ताला का शुक्र जिसने हमें ये दिन दिखाया, और आप सबका शुक्रिया, ख़ास तौर से आपका और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र का जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी।
2: शुक्रिया तो हम आपका अदा करेंगे, पहले आप आई इतनी मसरूफियत में भी, क्योंकि आजकल के दौर में हर एक इंसान मसरूफ ही है, फिर भी अपनी मसरूफियत को छोड़ के आप यहाँ आई, ये बड़ी बात है। शाजिया आप सिंगर हैं, आपने बहुत अच्छे नगमे गाए हैं, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं और आपकी तालीम कहाँ से हुई?
3: जी मेरी जो पैदाइश हुई है वो हुई है गुरगड़ी मोहल्ला जैना कदल में।
2: जी
3: आई वॉज लाइक 4 years old when I have started singing.
2: ओके
3: चलो वन अब बच्चा शुगर सा सेंस डेवलप बात करने का, मुझे लगता है कि मुझे सेंस डेवलप हुई संगीत की।
2: जी जी
3: तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा दाखिला हुआ गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल में जो कि सोचते थी महलस मजी।
2: ओके
3: उस वक्त मान लीजिए आप आई वॉज इन क्लास फर्स्ट, तो मेरे जो वहाँ पे उस्ताद थे सारे दे टोल्ड मी कि सिगिया क्या।
2: अच्छा
3: मैंने एक दो लाइनें नाज शरीफ की पढ़ी है, सो दे मोटिवेटेड मी, दे एनकरेज्ड मी कि यू शुड पार्टिसिपेट इन चिल्ड्रंस प्रोग्राम।
2: अच्छा
3: तो मान लीजिए आप क्लास फर्स्ट से ही आई वॉज सिलेक्टेड फॉर क्वायर ग्रुप।
2: ओके
3: आई वॉज बस लीडर तथ क्वायर ग्रुपस इन क्लास फर्स्ट।
2: अच्छा
3: तो तुमो दुत मैं अख मानो तुम लिख दुत हम अख नोट कि यह आप दूरदर्शन में दिखाइए दैट शी इज फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल एंड शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन चिल्ड्रंस प्रोग्राम। इट वॉज सच मानो तुम रिक्वेस्ट। तो मुझे वो याद कि वो मेरे मैथ के टीचर थे मोहम्मद शफी साहब।
2: अच्छा
3: अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो मैंने तो मकसद आई वो दूरदर्शन, मैंने पेरेंट्स को बोला मैं आई मदर थे तो फादर थे से दूरदर्शन एंड आई पार्टिसिपेटेड इन बामन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वन एंड आई पार्टिसिपेटेड इन कलिया शगुफे। तो सो तुम इस करनावान मैडम कौंसर परवीन जी और मैडम हलीमा परवीन जी इन प्रोग्राम। मैंने तो मेरा जो पूरा बचपन गुजरा है वो दूरदर्शन के अंदर गुजरा है एंड आई वॉज लाइक इंक्रीज्ड एंड बकरे मेरी ग्रूमिंग दूरदर्शन की पूरी टीम की वजह से और मैडम हलीमा परवीन जी और मैडम कौंसर परवीन जी की वजह से। उसके बाद तख मज मिले मैं पद मौके थे जैसे रूफ वगैरह प्रोग्राम्स होते थे उनमें मुझे मौका मिला या जैसे बामन का टाइटल सॉन्ग था वो मैंने गाया चाइल्ड आर्टिस्ट अखलू वाले नजर बस बस।
2: अच्छा
3: तो जो कि प्रोफेसर मुजफ्फर साहब ने कंपोज की थी कंपोजिशन है उनकी।
2: जी जी
3: उसके बाद ये मैंने तो मैट्रिकस वर्सेस सुबह खैर एक प्रोग्राम आता था जिसमें शबीर मुजाहिद साहब और बशीर कादरी साहब हुआ करते थे, वो वाबस्ता थे उस प्रोग्राम से। टिमोटिकल हजबत दौरान वारिया ज्यादा मोटिवेट
2: एनकरेज
3: क्या कि बस एक आई बस ड्रामस एक मिडिल क्लास फैमिली मस
2: ठीक
3: तो तच पन मसल मसाइल मिडिल क्लास फैमिली मस
2: सही बात है।
3: तो दे एनकरेज मी अलॉट बोलता है मैंने जो है क्लास फर्स्ट से मैंने समझाया है कि کتھ کتھ کن چھ مے خرچ کرن ایز اے چائلڈ آرٹسٹ ون بن بیکاز آئی یوز ٹو گیٹ 120 روپیز پر پروگرام فرام دوردرشن پھر وہ انکریز ہو گیا 150 آئی یوز ٹو

0: it as a child artist fees at that time. तो विनीत कहें कि मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो अपने पैसों से की है.
1: अच्छा
0: जी. और उसके बाद क्या हुआ कि ये मैट्रिकस वर्सेस मेरी मदर की ख्वाहिश थी. मैं त्रिबेनी उसमें ब्रदर आख तो मैं उस माजवार या शौक की गजवानी डॉक्टर.
1: अच्छा.
0: मगर मैं कर गोड़े अर्ज के बस चूंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी मुझे पता कि कैडेट कोटा खर्च क्या चुकाऊं क्या चुनका.
1: सही बात है.
0: तो जब मैं नवकल हायर सेकेंडरी गई एडमिशन लेने के लिए तो मे पुछ तिमन यह कतिस यथ कूता हु क्या यूता. तो अल्टीमेटली आई सॉ म्यूजिक तो आई चूज आर्ट्स.
1: अच्छा.
0: एंड म्यूजिक वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज आई वॉज लाइक इट वॉज लाइक राइट फ्रॉम माई चाइल्ड हुड आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स म्यूजिक. तो मैं रोट आर्ट्स.
1: ठीक.
0: तो जो वहां पे पहली मेरी टीचर रही है दिलशादा मैडम जी टेंटिकनस बस वारिया ज्यादा एनकरेज. तो आई वाज वन ऑफ द लकी एनफ एट दैट टाइम दैट आई गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन साजर आवर्स एट दैट टाइम.
1: ओके.
0: यह मोनिटी वादी के मुख्तलिफ वनों तक जगहों से बच्चे आते थे वो शोकेस करते थे अपना टैलेंट और हमें जो सिखाते थे वहां पे तुम्हें हमारी वादी के बहुत ही मशहूर और एक बेहतरीन इंसान काजी रफी साहब है जो हमें वहां पे सिखाते थे कि कित कंचु कैज के तम साथ उस इंसान रहा कित कंचु तुलन कित कंचु
1: त्राव. सही बात.
0: वो हमें सिखाते थे. तो तब दौरान उन्होंने मुझे सजेस्ट किया शाजिया यू शुड लर्न फर्दर.
1: ओके.
0: کیاز کہ مےٚ ما چھِ پتہ کِتھ کٔنۍ کیاہ چھُ گیوُن کیاہ چھُ امہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ کرُن اس کے بعد فیوٗچر کیونکہِ اللہ تعالیٰ نے توٚتانۍ یہِ تہِ مےٚ دیُت برونٛٹھ کَنۍ مےٚ اوس سُہ توٚتانۍ تہِ سوٗنٛچمُت
1: کِہیٖنۍ. بِلکُل.
0: ہاں. اس کے بعد کیاہ ہوا کہِ تِم ؤنی حظ بہٕ وۄنۍ مجھے لے کے گٔے اور بیٚیہِ آسہٕ اسہِ زٕ کورِ میرے فرینڈس تہِ وہ لے کے گٔے ہمیں کرا نگر تو جہاں پہ میرے ٹیچر بیٹھتے تھے प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट साहब राइट नाउ ही इज अ प्रिंसिपल इन डुमना कॉलेज.
1: ओके.
0: तो वो लेके गए उनके पास तो बस इनको सिखाइए इनका सुनिए पहले गिव पंजाब सॉन्ग.
1: अच्छा.
0: क्या मैंने पंजाबी गाना गाया तो उन्होंने बोला बहुत टाइम लगेगा इसको सीखने में क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था. दुख में सरगम वगैरह मैंने बोला माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज के हाउ मच आई हैव टू पे.
1: अच्छा.
0: क्योंकि मैंने चाइल्डहुड से ही अपना सफर
1: अर्निंग स्टार्ट की थी.
0: बिल्कुल. तो ही सेड आई डोंट चार्ज एनीथिंग.
1: ओके.
0: यू कैन कम फ्रॉम टुमारो. तो ये टाइमिंग है. तो मेरे साथ और भी दो लड़कियां आती थी. अच्छू म्यूजिकस की यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट.
1: ओके.
0: आप में पेशेंस जब तक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं.
1: अच्छा.
0: دِژٕکھ مےٚ سرگم گۄڈنِکٮ۪ن مےٚ دوٚپ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ دوٚپُکھ یہِ چھُ تانۍ کَرُن اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ کَرُن تانۍ کِہیٖنۍ. میرے ساتھ جو دو لڑکیا تھی دے سٹاپ تِمو کوٚر
1: نہٕ
0: کیٚنٛہہ. ہاں وۄنۍ وہاں پے بہت سارے لڑکے تھے تہٕ بیٚیہِ ٲسٕس بہٕ کوٗر تِمن منٛز چوٗنٛکہِ مےٚ ٲس کی کہِ مےٚ اوس نہٕ بیک گراوُنٛڈ میوٗزِک کانٛہہ کِہیٖنۍ. تہٕ اس کے بعد کیٛاہ ہوا کہِ مجھے سِکھایا بھی جاتا تھا और मुझे प्रोग्राम्स भी मिलते थे. मतलब मेरी अर्निंग भी होती थी और मेरी लर्निंग भी होती थी वहां पे.
1: अच्छा.
0: तो उसके बाद ये सिलसिला बराबर चलता रहा. न्यू मैं पुतुस एडमिशन डिग्री कॉलेज नवा कदल में तो कौर मैं पार्टिसिपेट जैसे गजल कंपटीशन में मैंने पोजीशन लिए या वाहिम चाइन कौर मैं पार्टिसिपेट या जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मुझे मिला नवा कदल में. ऑलराउंडर मुझे मिला है. ये थी वारिया चीज اللہ تعالیٰ نے کر تمہ ساتھ پاسبل. جی
1: شازیہ آپ کے ساتھ ہم باتیں اور بھی کریں گے. آپ نے کہا کہ میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں اور بہت سارے مرحلے آتے ہیں مشکلیں آتے ہیں ان مشکلوں کی بات ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہی کی پسند کا نغمہ سنیں گے آؤ گے جب تم ساجنا.
0: جی
1: آپ نے کہا تھا.
0: جی جی
1: ہم نے آپ کے لیے تیار رکھا ہے.
0: شکریہ.
1: سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں.

आओगे जब तुम वो साजना अंगना फूल खिलेंगे, हमारे मेहमान की पसंद थी और वैसे हमें भी अच्छा लगता है ये गाना। और मेहमान कौन है? वो है डॉक्टर शाजिया हमीद, जिनकी आवाज़ से आप मानूस हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख नहीं रहे।

0: हम देख रहे हैं उनकी मुस्कुराहट इस वक्त। खैर, मैं आपको बताना चाहूं कि मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ नाहिदा भी हैं।
1: जी रिफत, मैं अपने मेहमान से मुखातिब होंगी और इनसे पूछना चाहूंगी कि गाने के उस पार आपने बताया कि आपकी जो स्ट्रगल थी, जो आपकी जर्नी थी, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे पड़ाव आए। आप उन पड़ावों के बारे में कहिए कि क्या मुश्किलें आई, कौन सपोर्ट में था, कौन नहीं था, इसके बारे में बताइए।
0: मैं ऐसे बोलूंगी कि nobody was there. There was a single person, that is my teacher, Professor Muzaffar Ahmed Badshah. मतलब हकीकत, मतलब he motivated me, he encouraged me. It is just because of him the way I am today.
2: Okay.
0: Even if I am speaking right now, it is just because of him. मतलब गड़े आर स्कूल में I was from a government boys middle school. ये जब मैं 8th मजपुर ABCD, right? Then it was म्योसुपानस मजपाने inferiority complex that I cannot speak in front of others. चुना मतलब मोहल्ले में जाहिर सी बात है, मत्ताइटिस मेलन सने की बच्चे, बिस्को एक बच्चे, in front of them I was not able to speak. तो फिर ये इंसान उस चुना आँख नफर युथ मिलान ज़िंदगी मज़, who will not judge you, who will say that you will be not judged, I will correct you. Wherever you are wrong, I will definitely correct you. तो वो है, मतलब दावा है कि new on pronunciation, new on English, new on music, it is just because of one person, that is Professor Muzaffar Ahmed Badshah. अच्छा, रहा सवाल कि मुश्किलात क्या-क्या आई? मुझे मतलब ये कि मुझे तोड़ा गया, मुझे डिस्करेज किया गया, मुझे ह्यूमिलेट किया गया, सुना मतलब मुझे नहीं लगता कि बुतरहस इसके डिस्करेज वाले तो, लेकिन ये है कि मे पता अख नफर सोस मुजफ्फर अहमद बादशाह थे कि यम सुन मैं कॉन्स्टेंट सपोर्ट उस दैट यू विल डू इट, परवा इनफैक्ट बहु वन इथ कि मैं मतलब बस पकान नो डाउट कि मोन यूजन मोहल्ला मेरा जो है दे आर वेरी कोऑपरेटिव, क्या मैं उस रियाज करूँ, दे हैव बीन ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी, क्योंकि वो मुझे बचपन से सुनते हैं ये शरियाज करा। मगर ये वो बाकी जायन असस असम पकान, दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी, दे यूज्ड टू ह्यूमिलेट मी, तो मगर मैं उस गसान मज मज ना व्हाई आर दे डूइंग दिस, तो मगर मैं समझनस टीचर। और दूसरी बात कि इस सब्जेक्ट को एज प्रोफेशन बनाना, इट वॉज ए चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, मतलब क्या इसके आई एम द राइट नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम डाउन टाउन एरिया हु हैज डन PhD इन म्यूजिक राइट नाउ हु इज लाइक हाई ग्रेडेड आर्टिस्ट फ्रॉम डाउन टाउन। ये सफर उस वारिया मुश्किल और घर वालों को वन इत कहें कि मोटिवेट करना इस चीज के लिए, इट वॉज टोटली डिफरेंट, मतलब बच्चे तुलान कह चीज गिनने खतर मैंने तुम्बखनारी उठाई है। I used to play बस बचपन पे सो वायन तो मे फादर और ड्यूटी पे सो वन मान मजी ये नेर फेल एक्चुअल वर्ड्स ये शफीका वी नेर फेल। उसके बाद क्या हुआ कि ये तुम्हें पूछना कि इसका रुझान किस और है, फर्स्टली वन बो इत कहें कि ये प्रोफेशन अत मज बनाऊ मुझे नहीं लगता कि इस वक्त सही है, क्योंकि ये तीते एवेन्यूज ना तो प्लेटफॉर्म्स है, ये हकीकत है। और आप देखेंगे कि गोड़ गोड़ ऐसे नेरान रिक्रूटमेंट होती थी, आर्टिस्ट गसान रिक्रूट रेडियो में, दूरदर्शन में, कल्चरल एकेडमी में, नाउ डेज दो थिंग्स आर नॉट देयर। तो मोल मोस्ट कुन हदस तक फिक्रमंद कि मोन बच यूजन अगर एम रूट ये सब्जेक्ट खबर एम्स बनिया बुथ अत मज रोजगार
1: रोजगार बिल्कुल।
0: दिस काइंड ऑफ कंसर्न मुझे लगता है कि एवरी पेरेंट इज हैविंग, बट अब इत कहें कि 2005 तक आई वॉज नॉट दैट मच श्योर कि मे अत मज पकुन ब्रो कि
1: बिल्कुल।
0: एंड एट दैट टाइम आई वॉज इन कॉलेज, शूटिंग पे और वापस तो ए गाना चल रहा है सुर मूवी का, मोन टीचर वन बहुत यहाँ कि शायद ये गेव है इत कहत तोतान गेवान, मे हे मतलब दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई यू नो टीचर दैट ही इज एक्सपेक्टिंग दैट आई शुड सिंग more, you know, nicely and beautifully.

0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी आवाज डॉक्टर शाजिया हमीद साहिबा की। दिल खुश हुआ हमारा, जाहिर सी बात है हमारे सामीन का भी दिल खुश हुआ होगा। तो शाजी, यहाँ एक और सवाल मेरे जहन में आता है
1: जी।
0: यमजन नई फनकार चुने, यमजन रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें, दिस इज गॉड।

0: आप पीएचडी हो गई म्यूजिक में, बहुत बड़ी बात है. इस मंजिल तक, इस मरहले तक पहुंचना ये फख्र की ही बात होती है, फख्र का आलम होता है. अब आपको लकब दिया गया राज बेगम सानी का
1: जी.
0: आप बहुत मुतासिर हुई राज बेगम जी से
1: जी.
0: क्या वजह है?
1: वजह शु ये कि 2016 में मैं बोलूंगी कि शुरा हुआ आई गॉट अ चांस. मुझे मेरे टीचर ने फोन किया, ये हकीकत मतलब उन्होंने मुझे कॉल किया कि शाजिया सवाद फौरी तौर स्टूडियो, तो यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. एंड आई संग अ सॉन्ग इन अ मूवी विच वॉज हर थीम ऑफ फ्रीडम, राज बेगम द मेलोडी क्वीन ऑफ कश्मीर, जो कि बॉम्बे डिविजन की तरफ से थी. तो मैं गयो, मैं तो बुक से गया रंग छटना, मैंने नहीं अपनी वॉइस को चेंज किया, नथिंग मतलब मैं तोल तो पाई नहीं वॉइस, मैंने गाया
0: बिल्कुल, मैंने सुना है.
1: तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने तो सत्रह रहत गई, मुझे सर ने फिर से कॉल किया, तो भी शाजिया से बात फोर यू तो स्टूडियो, आई हैव समथिंग इन माई माइंड, आई वॉन्ट टू डिस्कस इट विद यू. तो उन्होंने मुझे बुलाया, दोपहर आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस, क्या तथ उस रीजन यूजन प्रोफेसर साहब जो है
0: जी,
1: वो बहुत एक मतलब एक वो तो तौर है कि इंसान सोचती थी, वो बहुत अच्छे इंसान भी है मतलब, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी है
0: बिल्कुल.
1: उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है टूवर्ड्स अवर फोक म्यूजिक जी. दोपहर से यूर अच्छू रीजन पा कि आज के विद इन टू और थ्री ईयर्स राज बेगम जी को कोई मतलब याद भी नहीं करेगा. क्यों? क्याजी यम जन में ऐसी टेप छु बाकी चीज घिस गए हैं पूरी तरह से. क्योंकि उस टाइम ये मैं तथ फिल्म मज गो, सर ने बोला था उनको कि मैं कैसा ये ना ट्रैक चाहिए मुझे रंग छटना, और ये सु बूझुक ना उसमें इतना मश था तथ उस जो तुस हालत उस तथ, तो सर का यही था कि अस करो अथ पेट काम, वी विल री रिकॉर्ड सिक्स सॉन्ग्स. मगर मुझे बिठाया गया, मैं बोलूँ ची कर वॉइस चेंज, ची गेवन इथ कोज. जब मैंने राज बेगम जी के गाने सुने, आई स्वर आई फॉरगॉट एवरीथिंग.
0: क्या बात है,
1: आई फॉरगॉट एवरीथिंग. मतलब व्हाट अ लेडी शी वाज,
0: लेजेंड,
1: शी इज एन इंस्टीट्यूशन. मतलब क्या वन बट शी हैज स्टार्टेड है ना इनिशिएटिव, टेमी शु ये स्टार्ट कर, शी वाज अ फर्स्ट लेडी आई थिंक यम जन ये स्टार्ट छु कर.
0: सही बात है.
1: तो ये
0: और उस दौर में
1: निकलना है
0: क्या
1: वनकस सान खनकस ईजी वनकस ऑल दो, मगर तम सात कदर शनास भी लोग होते थे. तो जनाब अली तो गए मे तम शे सॉन्ग.
0: अच्छा.
1: तो जब लोगों ने सुना, और दपो तो इत कि ये मेरे टीचर के अल्फाज हैं कि अगर से शाजिया यम गेवित इत कि असल पट गेवित, यू विल बी डेफिनेटली सिलेक्टेड फॉर स्टेट अवार्ड. सह अवार्ड उसे मिली, मगर ये सब गेवक ये सब मोहब्बत सान गेवक, और जैसे मैंने तुम्हें दिखाया कैसे तुम्हें हर एक इमोशन डालना है, इसे कैसे किस तरीके से तुम्हें गाना है, तो मेटी तुल तो मेटी गेव. मतलब इट टुक ऑलमोस्ट वन ईयर टू वर्क ऑन दो सॉन्ग्स. तो गे मैं तुम शे सॉन्ग, एंड जब लोगों ने उनको गानों को सुना, मतलब पता इत कहें कि यह अल्लाह ताला सन्स मे पे ज्यादा इनायत, अदरवाइज आई वॉज नॉट दैट मच यू नो. क्या वन बु बस एट टाइम्स आई गेट इमोशनल बिकॉज ऑफ माई जर्नी, कि यह मैं अल्लाह ताला सन्स मेहरबानी कि जिसने मुझे बहुत आगे लिया इस चीज में. मगर रीजन वॉज मोन टीचर. तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जब वो गाने सुने तो तिमन कोरन वारिया ज्यादा खुश, और मुझे लोगों ने ही एक्चुअली ये नाम दिया कि राज ऐसे मॉडल राज बेगम जी. जी
0: अच्छा शाजिया, मुझे याद है जब आप ये रंग छटना मेन जवानी एक स्टूडियो में गा रही थी, तो मैं भी वहां पर थी, मौजूद थी उस वक्त, मेरी भी रिकॉर्डिंग थी वहां पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे जब मैंने आपकी आवाज में राज बेगम जी का वो गाना सुना
1: जी,
0: तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे. तो थोड़ा सा हो जाए फिर इस वक्त
1: जरूर.

0: क्या बात है शाजिया, बहुत खूब, बहुत अच्छे, आपकी आवाज दिल को छू जाती है।
1: और ही पहुंच गए।
0: बिल्कुल आपने
2: शुक्रिया
0: वो याद ताजा की।
2: शुक्रिया।
0: और बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह की परफॉर्मेंस सुनते हैं, और यकीनन हमारे जो इस वक्त सामने हैं वो भी
1: रस बोलते हैं।
0: बिल्कुल, वो भी मुतासिर हुए।
2: येलबो में आए ना, मुझे मौके मिले ना सर के पास, मुझे विंडी याद के मैं देती हूँ, मुझे टाइम टू टाइम गाने देते थे डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के। येलबो में गयो, पता है लुकअप क्या बोलना है, तुझ वो छोट बट तुला आर्टिस्ट, आई स्वेर कि ये नाक से गाती है। दिस इज द क्रिटिसिज्म विच आई हैव रिसीव्ड। मैं तो अपना कि इथे के मोड में कि मगर रीजन न्यून छू कि वाई डिड आई परस्यू my degrees and all that, why did I continue? Reason is only my teacher Professor Muzaffar Ahmad Bhatt sahab. Matlab yitkan ti agar bhi yitkan ti chhas gyawan ya badal kan style ti chhas gyawan, even baad bhi main kar leti hun na to usme ye saath gyawan. All credit goes to my teacher.
0: Ye hako vanit ki agar zindagi mein to ek nafar te support chhu karan to ye kyun zindagi hin sare aap jo maqam hai na wo aap
2: exactly bhavan yitkan Rafat ji ki अल्लाह ताला छ आसा हर कह बच बनोत, हर कह नफर बनोत विद अ स्पेसिफिक टैलेंट, विद अ स्पेसिफिक यू नो आर्ट। तो यूजन ये तारे जमीन पे छ मूवी, एट टाइम्स मे बसा के है देयर इज नोबडी हु वो कैन अंडरस्टैंड मी यू नो, मगर ये अख असल रुत टीचर छ पेवा, रहबर छ पेवा इंसानस लाइफ मस, दैट पर्सन कैन चेंज योर लाइफ, दैट पर्सन कैन यू नो मेक यू एबल at least to speak. me to show matlab even I exactly ye cheez nafar ye aasan na society mein main shun baasan ke kah nafar chu bekar, har kah nafar, har kah chu, har kah nafar chu Allah taala an banamut with specific talent.
0: mujhe ki bhavan to even kinesthetic sanan garam is variya korte, bahut sari bachiyan hain, bahut sari ladkiyan aisi hain, या अगर हम लेडीज की भी बात करेंगे, शादीशुदा औरतें जो हैं बहुत टैलेंट रखती हैं, बहुत ही टैलेंटेड है।
2: बिल्कुल,
0: मंचुनी की जरूरी सिंगिंग माजी कुछ और,
2: मैंने यही अर्ज किया ना आपको कि
0: अल्लाह
2: ताला ने किसी को नहीं छोड़ा,
0: किसी ना किसी कोने में वो छुप जाती हैं।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, पीछे बैकअप नहीं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन ये है कि अगर आप आगे चली, आप रुकी नहीं, मुश्किलें आई, परेशानियां हुई, दिक्कतें हुई, आप रुकी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है।
2: बिल्कुल,
0: कहीं पर रुकना, फिर खड़े होना, फिर आपको सपोर्ट मिलता है, आप खड़े हो जाते हो। आपको ये इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं पर मेरी हार होती है तो वो पहला जीना होता है मुझे ऊपर चढ़ने का।
2: कुछ पता इस तरह भी भोया क्लास फर्स्ट एंड ही वॉज इन क्लास फर्स्ट, तेमस गो डायग्नोज ब्रेन ट्यूमर। तो फाइनली भवन होता ये कहें कि उसको ट्रीटमेंट हुई, तेमस गो सर्जरी हुई उसकी, तो अल्टीमेटली

0: 2004 में उसकी डेथ हो गई। अरे तीन गुजरे में मौज, और यहाँ से आपके असाइनमेंट्स भी होते हैं, मगर
1: वक्त
0: मतलब आप गई में है, मतलब छुने टाइम पत बात वक्त उन लोगों का ये बोला कि एक्जेक्टली फिर मतलब टाइम मज़े नहीं है, मतलब मैंने यही बोला कि मैं रोड आख नफर सीट नो डाउट कि मेरी जो स्विलिंग्स हैं दे वर ऑलवेज देयर कि मतलब मेरी हेल्प करने के लिए, क्या कि एक इस आर्टिस्ट को समझना समझ एक आर्टिस्ट को समझने वाला
1: चाहिए,
0: तुम इस घर काम कर और मैं रियाज कर, यस आई एम थैंकफुल टू देम।
1: क्या बात है,
0: ये चीज थी वो
2: हिसाब से सपोर्ट किया।
0: जी जी जी जी जी
1: आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं
0: जी,
1: तो थोड़ी सी बात हो उन पे।
0: अवार्ड्स मुझे मैंने कि मैंने जैसे आपको बोला कि

0: क्या बात है,
1: ये मेन चीज थी कुछ में हमारे
2: उस हिसाब से सपोर्ट किया।
1: जी जी जी जी जी,
0: आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं
1: जी,
0: तो थोड़ी सी बात हो उन पे।
1: अवार्ड्स मुझे मैंने जैसे आपको बोला कि मिश मिले मोहम्मद नसीम अख्तर मेमोरियल ट्रस्ट अवार्ड, मिश मिले मोहम्मद हबा खातून मेमोरियल ट्रस्ट अवार्ड,
0: क्या बात है,
1: मिश मिले मोहम्मद बेस्ट म्यूजिशियन, और बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने मुझे अवार्ड्स दिए हैं। यहाँ की जे एंड के गवर्नमेंट ने मुझे स्टेट अवार्ड से ऑनर किया है,
0: क्या बात है।
1: और रात करहजबो ऑनर विद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी,
0: क्या
1: जी। सो आई हैव रिसीव्ड सो मेनी अवार्ड्स, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर और अल्लाह ताला की वजह से, क्या इसकी खुदाई के त्रोन कोई पर, क्योंकि ये बोलते हैं कि जब आपके इंटेंशन सही हैं, आप सच्चे हैं, बिल्कुल म्यूजिकस मनसा यूटी चीज जरूरत। इनफैक्ट बोलन यूटी यूथ की इस वक्त जो है मेरे पास जो भी आता है सीखने के लिए वनकस यूजा पेशेंस लुकन क्या पत बिहन घंटस दोन घंटन बिहन तो अत कर यह सेवा कर चीज नो बस ये मैसेज तम दिवान कि बी ऑनेस्ट
0: Be honest
1: with yourself, be honest with your country, be truthful. और इसमें मतलब मे गे टीचर वोनमुत कि यू हैव टू फॉलो द थ्री डीज फॉर्मूला, सो मे तरह फिक्र तम सात क्या ये दैट इज डिसिप्लिन डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ये त्रे आय लाइफ मज दैट पर्सन कैन अचीव एनी थिंग। और एक चीज मैं यहाँ पे अर्ज करूंगी कि ये आख नफर ऑनर कर स्पेसिफिक अवार्ड मुझे लगता है कि पत ज्यादा इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी बना अल्लाह तला की कसम ऑलवेज आफ्टर मे कंपटीशन मुझे खुद को मजा आना चाहिए,
0: क्या
1: मतलब मुझे खुद के कानों को मजा आना चाहिए, मुझे खुद को सुकून मिलना चाहिए, सो दैट्स वाई बस पान पान थाना पर्दन छाई पर्दन छाए मतलब कि मैं ज्यादा लाइट में पसंद नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है, बस थमा अवै पन पान पर्दन छाए। इनफैक्ट आई रिसीव सो मेनी ऑफर्स बट आई ट्राई टू बी एट माई ओन
0: ऑनेस्ट,
1: मे पनी कंपनी खुश कर अकेले रहना खुद के साथ और म्यूजिक सुनना अकेले यूता साथ दून अल्लाह ताला सुन वनुक तान और मेरे टीचर का साथ अभी तक रहा है यह कह मान मेहनत नफर खतर क्योंकि मिडल क्लास से निकलना इंसान यह मान खतर वारिया कह और रहा सवाल कि इसको आगे लेना जैसे कि मैंने आज किया कि यह प्रोजेक्ट तैयार राज बेगम जी का प्रोजेक्ट तैयार है और हमने बहुत सारे इदारों से बात की थी तो वो अल्लाह ताला कूत पकनाए तथा और दूसरे भी प्रोजेक्ट है। दरअसल बात यह है कि यूज़न यू सोन म्यूजिक नोटेशन सिस्टम ये बनावान कहीं और आई हैव वर्कड इन माय थीसिस और मैंने अमे मूजूब कि बह थ नोटेशन सिस्टम अत बन क्या यह गोस नावन गोस
0: बिल्कुल
1: कहें अगर वो वनकस कित थान ना रच रव बनाव कीज प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं अपने म्यूजिक को सह हेको कलम बंद कर सह लिख सकते हैं या और कोई चीज है सह हेको कर सो आई एम वर्किंग ऑन मेनी बो दप इत कि बस वस मैंने दो बुक्स लिखी है इस वक्त और बस उनको मुझे पब्लिश करना है, वेटिंग फॉर दैट क्या ये छुना ऐसे म्यूजिक की सिंबल छुना ऐसे लिखा है
0: उससे भी हेल्प होगा आने वाली जनरेशन
1: एग्जैक्टली नो डाउट दे आर बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल रागास बट डेफिनेटली क्या सोचा ऐसे बेस
0: वो बेस है हमारी सही बात
1: इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यूजन बेस ये मिस सुतोग क्योंकि मैंने जो डिग्रीज की है मैंने एमए किया है एमफिल किया पीएचडी किया है आई हैव डन इट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नो डाउट ये मैं ये कोर पीएचडी माय टॉपिक वाज फोक म्यूजिक ऑफ कश्मीर तो मगर यह जन मे बी एस दैट इज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या अगर वो वनकस जो मेरी रिसर्च रही है यह सो ये म्यूजिक यह खत्म हेवान ग

जो इरादा है वो सही है तो कोई ना कोई आपको ऐसे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस मकाम तक पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो रवैया है वो सही हो, आपका इरादा जो है वो सही हो, और आप नेक हो, और आप मेहनत मेहनत कश हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम आपकी आवाज में एक नगमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने जा रहा है। थोड़ा सा वक्त है, 5 मिनट है अभी, तो आप एक नगमा सुना दीजिए।

की कंपोजिशन है और इसको लिखा है मोहतरमा नईमा कुची जी ने। बहुत खूबसूरत अल्फाज और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन।

0: क्या बात है शाजिया, दिल को वाकई में सुकून आ गया आपकी आवाज़ सुनकर। दिल चाहता है कि बस यही सुनते रहें।
1: शुक्रिया शुक्रिया,
0: बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत ही मीठी आवाज़, और आप जब हारमोनियम साथ में बजाती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे यकीन है कि हमारे सामीन इस वक्त महसूस हो रहे होंगे आपकी आवाज़ सुनकर, और आपके साथ बात करके वक्त का पता ही नहीं चला। चाहते हैं हम कि आपके साथ और रहें, और बातें हों।
1: मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके।
0: लेकिन मुझे लगता है कि किसी और दिन आपको फिर से जहमत देंगे, आपके साथ बात करेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दिया, आपने मुझे इस काबिल समझा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो सामीन, इसके साथ ही हमारा ये जो लाइव ट्रांसमिशन है, इसका सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप हमें इजाज़त दीजिए और आप आगे का ट्रांसमिशन नाहिदा के साथ सुन

0: रहिए, हमें इजाज़त दीजिए, हमारे मेहमान को इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होंगी अगर अल्लाह ने चाहा। तब तक के लिए आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हामियो नासिर।
1: जी समीर, आप समाप्त कर रहे थे लाइव इंटरैक्टिव शो। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। इच आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 68.8 मीटर ते FM 73.5 MHz पर। समीन वलिव सूफिया ने मौसीकी बोजो फनकार शुबीन अख्तर तीन सती यमन निश बुजुती मकामी आसावरी।

0: जहाज पर। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी और हिंदी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमद्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: conquering Goa, Tamil Nadu and Northeast India. And with that, we end this news bulletin.
1: हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है. मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर. आइए समीन चंद फिल्म में नगमे सुनते हैं. आगाज में सुनते हैं मजरू का लिखा हुआ गीत. आर डी बर्मन की मौसिकी है. इस नगमे को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है यादों की बारात.

जी दोस्तों, आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं और ये नगमा आपने सुना यादों की बारात फिल्म से। मजरू के बोल थे, आर रिबर्मन की मौसीकी थी और इसे गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। अब आ रहा है गीत फिल्म याद रखेगी दुनिया से। समीर के बोल है, आनंद मिलन की मौसीकी है और इस नगमे को गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने।

0: जी दोस्तों, ये थी कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें। फिल्म का नाम था विजयपथ, ज़मीर काजमी के बोल थे, अनु मलिक की मौसीकी थी और आप समाप्त कर रहे थे फिल्म नगमे। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी, पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाजा अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ आवाम की तवक्कात को हर सूरत में पूरा

मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां।

0: महसूस करता है अपनी माँ का, तो वो एक्सपीरियंस करने लगता है। उसके बाद दूसरा उसका एक्सपीरियंस होता है जब वो क्रॉल करता है, वो चीज़ें देखता है, वो मुंह में डालता है, उसको खिलौना भी देता है, वो मुंह में डालता है। मुंह में डालने का मकसद ये है क्यों, क्योंकि उसे सबसे पहले सिर्फ देखी होती है चीज़ की मुंह में डालने वाली चीज़ है, तो मुंह से ही वो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है
1: जी।
0: तो ये सब चीजें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। या उसके बाद ऐसा भी है कि अगर उसने हेड पे कंट्रोल नहीं हुआ, वो बैठ नहीं पाया 9 महीने तक, या फिर वो चल नहीं पाया, तो हम इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी है। इसको टमी टाइम देंगे। टमी टाइम में हम इस बच्चे को क्या काम करते हैं कि पेट के बल सुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये क्रॉल करे, क्योंकि वो खुद अपने हाथ पांव मारता है। और ये भी देखा गया कि फॉरेन में क्या काम करते हैं, वो थोड़ा सा पानी लेते हैं किसी खुली सी जगह में, एक काइंड ऑफ बाथ टब बनाते हैं और इस बच्चे को पानी में मुंह के बल गिराते हैं, ताकि बच्चा ऐसे हाथ पैर मारे और कहते हैं कि देखो भाई ये बच्चा स्विमिंग सिखाते हैं। वो स्विमिंग नहीं सिखाते हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली कोशिश करते हैं कि बच्चा क्रॉल करना चाहिए, वो बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा होता है। तो पानी की थेरेपी की वजह से वो उनको ये चीज़ें करवाते हैं। या अगर सही मानों में किसी को स्विमर भी बनाना होता है, वो वहीं से शुरुआत करता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो जम्मू कश्मीर में हमारी माएँ हैं, वो कोशिश करती हैं कि हम उनको मतलब पेट के बल बिठाएं और वो कोशिश करते हैं कि बच्चा आगे क्रॉल करे और आगे बढ़ता जाए। और ऐसे ही पिंसर ग्रिप जो हमारी है, मतलब उंगली और अंगूठा, ये दोनों को मिला के ये कोई ना कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं।
1: अरफाना जी, आप मतलब हम कश्मीर से हैं, हम अपने मास्टर के बारे में जानते हैं, जो हमारी नई नई माएँ होती हैं ना, वो अपने बच्चे को अपने गोद से नीचे रखने को तैयार ही नहीं होती हैं।
0: वो वजह है ना,
1: हालांकि
0: उनकी
1: उनका उसमें प्यार है, उनकी ममता है, लेकिन साथ में उनको ये इस बात का ख्याल नहीं है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं,
0: खुद को भी
1: जी,
0: खुद को भी।
1: क्योंकि वो चिपकू बच्चा रह
0: जाता है, पहले ही वो पॉजेसिव हो जाते हैं।
1: हाँ जी,
0: बहुत ही ज्यादा। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जब वो पॉजेसिव हो जाते हैं, फिर कल को 2 साल तक तो ठीक है, फिर उसके बाद जब उनको स्कूल में डालना होता है या खुद इस माँ को कहीं जाना होता है, एम्प्लॉई होती है या घर में ही वर्क फ्रॉम होम करेगी, वो
1: हाउसवाइफ भी,
0: हाँ, वो उसको कोई भी काम नहीं करने देंगी, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाते। और वजह ये होता है कि स्टिक हो जाते हैं। फिर इतना ये भी होता है कि आई हैव सीन, मतलब मैंने माएँ देखी है, मैंने बच्चे देखे, इवन 10th class में 11th class में भी बच्चा पढ़ रहा होता, माँ कहीं गई होती है, मामा कहाँ गई, कितना टाइम लगेगा,
1: उनमें वो इंडिपेंडेंस नहीं आई होती है,
0: वो इंडिपेंडेंस,
1: वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं।
0: और उनको सेपरेशन एंजाइटी का मसला हो जाता है, इसमें मेंटल हेल्थ पे बहुत असर।
1: देखिए ना, मतलब हालांकि छोटी छोटी सी बातें, जैसे आपने अभी कहा कि कैसे उनको लिटाना है या फिर कैसे उनको क्रॉल करवाना है, अगर नॉर्मली देखेंगे तो हम तक ये तक कुछ भी नहीं है, लेकिन शुरुआत वही से है कि हम अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं और क्या बनाना चाहते हैं।
0: सही बात है शहनाज, आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे शायद, तो अक्सर ऐसा होता था जब किसी बच्चे ने क्रॉल करना शुरू किया या उसने पहला कदम निकाला, नानी दादी, वो एक किस्म का यहाँ पे रोट बनता था, वो रोट लेके आते थे और घुटनों पे वो काटते थे रोट की, भाई इसने कदम शुरू किया, और फिर वो रोट सबको बेचते थे, मतलब मोहल्ले वालों में बांटते थे, बाकियों में बांटते थे, भाई क्या बात है,
1: बड़ी खुशहाल बात मानी जाती थी
0: और सेलिब्रेट किया जाता था। आज तो है ऐसे ही, चलो भाई इसको डाल दो उसमें, डालते
1: वॉकर
0: हैं
1: में।
0: वॉकर में, तो बच्चा चलने लगता है वॉकर में, वो वॉकर में नहीं चलता है खुद,
1: वॉकर
0: वो वॉकर
1: चलाता
0: चल रहा है, वॉकर चलाता है,
1: सही है।
0: जबकि हमारे पास वो होता था एक काइंड ऑफ, इसको वदनुगुर कहते थे, वो लकड़ी का होता था, 3 ट्राइंगुलर पे
1: स्क्वायर,
0: और फिर
1: जी,
0: ऐसे
1: अभी भी है,
0: अभी भी है, कुछ लोग वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें पुशिंग की एक्टिविटी होती थी, फिजिकल एक्टिविटी होती, जो हमारी बाजुएं बच्चे की होती है या जो उसके पांव होते हैं, टांगे होती है, अच्छी तरह से वो चला पाते थे उसको। तो यहाँ पे हमें फिजिकल ग्रोथ का बहुत ध्यान रखना है,
1: शुरुआती साल जो होते हैं उसमें हमने बहुत ख्याल रखना है कि इसकी, इनकी जो जस्मानी नशो नमा हो वो
0: सही
1: हो,
0: मानों में हो, उनकी इम्यूनिटी बढ़े। आप देखेंगे आजकल के बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने इस गंध के साथ नहीं खेला होता है। ये जरूरी है बच्चा नीचे से कुछ उठाए मुंह में डाले, लेकिन वो निकालना भी है, इन्फेक्शन पहले पहले हो जाएगा, लेकिन उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी।

0: लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन बढ़ाना है, नहीं, उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन जो वो चीज़ें उठाते हैं, खिलौने उठाते हैं, फिर मुंह में भरते हैं, उसको कहते हैं, बच्चे को ये तहजीब देते हैं कि मुंह में नहीं भरना है, बट पहले पहले वो उसको एक्सपीरियंस करता है कि ये चीज़ क्या है।
1: साथ में हमने अपने बच्चों को ना कहते हैं ना नेचर के करीब रखना है।
0: बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करीब रखना। इसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा, माएँ अपने बच्चों को अपनी गोद से नीचे नहीं उतारते, लेकिन गोद में रख के वो उनसे बात करने की कोशिश तो करते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं बैठते हैं। तो जब वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो कूइंग जो होते हैं, बैबलिंग साउंड लाइक दैट,
1: जी
0: ये
1: जी
0: सब
1: जी
0: चीज़ें
1: बिल्कुल।
0: जो होती है, तो इससे बच्चा
1: क्यूट साउंड्स
0: शुरुआत,
1: होते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बच्चा शुरुआत करता है बात करने की, क्योंकि ये एक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन, जो हमारा बच्चा है, अल्लाह ताला ने एक कुदरती एक निज़ाम दिया कि बच्चा बोलने लगता है, उसमें वो इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन हम जब क्या काम करते हैं, जब हम यहाँ से भी बोलते हैं, तब बच्चे की साउंड सही मानों में निकल आती है, क्योंकि उसकी एयर ट्रेनिंग हो जाती है। मैं बोलती हूँ, बच्चा तो अब खुद साउंड्स निकालता है, लेकिन माँ हमेशा कोशिश करते हैं, बोलो मामा मामा मामा, और यही वजह है बच्चा पहले मामा बोलने की कोशिश करता है। लेकिन आपने कई इसमें देखा होगा, बच्चा डायरेक्टली मामा नहीं, मैक्सिमम तो बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मामा नहीं बाबा बोलते हैं, या कोई और साउंड बोलते हैं। वो क्या होता है कि उन्होंने जो कानों में उनके आवाज़ गई होगी, मैं तो मामा बोल रही हूँ, लेकिन सुन क्या रहा है मेरा बच्चा।
1: ठीक।
0: बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके एनवायरनमेंट में है, जो उस पर असर करते हैं, और आवाज़ क्या आ गई बच्चे के कान तक, वो डिफरेंट होती है। इसलिए जो बच्चा सुनेगा वो वही बोलेगा,
1: यानी आप जितना सही बोलेंगे बच्चा भी सही
0: सही
1: बोलेगा।
0: बोलेगा। यही वजह, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ सभी पेरेंट्स से, अक्सर हमें 2 साल के बच्चे तक की, 3 साल के बच्चे तक की ये तोतली आवाज़ बहुत पसंद, तोतली ज़ुबान बहुत पसंद होती है, इसने मुझे ऐसा किया, मैं क्या कर लूँगा। हाँ,
1: हाँ
0: तो आप, हम भी यहाँ से बोलते हैं, आप भी ये कर लो ना, तो
1: सही
0: जो
1: है।
0: हम यहाँ से कर लो बोलते हैं, वो भी बोलता, बच्चा सोचता है कि कर लो ही सही लफ्ज़ है, बच्चा बोलेगा मैं क्या कर लूँगा, तो माँ हो बाप हो या जो भी केयर गिवर होगा, उसको ज़रूरी सही लफ्ज़ बोलना है, आप ये करो।
1: हाँ, उनको एहसास नहीं देना है कि आप गलत बोल
0: हाँ,
1: रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से सही बोलेंगे तो
0: तो वो
1: बच्चा भी सही
0: सही
1: बोलेगा।
0: सुनेगा। तो इसी तरह नोज़ का नोज़ी नहीं बनेगा, और मेरी हैंडी में क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, सीधे हैंड रखना है, नोज़ को नोज़ ही रखना है।
1: बिल्कुल,
0: मतलब ये चीज़ों का हमें बहुत
1: बहुत
0: ध्यान
1: ज़्यादा
0: रखना है,
1: ख्याल रखना।
0: लैंग्वेज तो
1: मुझे
0: होती
1: लगता है
0: है
1: खसूसन हमारी माओं को तो बहुत ख्याल
0: बहुत
1: रखना है, जो
0: ज़्यादा।
1: हमारी नई नवेली माएँ हैं। और आजकल तो आपको पता ही है, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज है, ज़्यादातर बुज़ुर्ग हमारे साथ होते नहीं हैं, तो उन पे ज़्यादा एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन चीज़ों का खास ख्याल रखे।
0: बेशक खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यही पहली शुरुआत जो है, पहले साल ही जो है, जब यहाँ पे सही तरबियत होगी, सही चीज़ें हो जाएंगी, तो आगे बढ़ के प्रॉब्लम्स नहीं हो जाती हैं।
1: इंशाल्लाह जी।
0: तो इसके साथ साथ हमारा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, कि बच्चा कभी देखे, मतलब वो मुस्कुराता है, खासकर माँ को देख के, अपने जो इर्द गिर्द उसके होते हैं, मतलब रिश्तेदार, माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो भी कोई होगा घर में, तो उसको देख के मुस्कुराता है। और खासकर केयर टेकर, आजकल हमारा होता है ना ये, कि कोई केयर टेकर या चाइल्ड सिटर आ जाता है, वही बच्चे का
1: बेबी
0: ध्यान,
1: सिटर जी,
0: बेबी
1: नैनीज
0: सिटर,
1: वगैरह।
0: नैनीज आती है, उनको देख के भी, क्योंकि उनसे भी बहुत अटैचमेंट होती आती है बच्चों को, उनको देख के भी बच्चा बिल्कुल शांत बैठता, बिल्कुल उनको लगता है कि हम यहाँ पे सेफर साइड में हैं। तो इसके साथ साथ गुस्सा दिखाना, बाकी चीज़ें, अब बच्चे के साथ खेलना, वो पीकअबू खेलते हैं ज़्यादा, मैं कहाँ गई, दुपट्टा माँ अपने चेहरे के आगे डालती है, और फिर कहती है, अरे मैं कहाँ गई, मैं कहाँ हूँ, फिर दुपट्टा हटा के बच्चे के साथ खेलती है, त्या। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चे के इमोशंस ग्रो हो जाए, इन चीज़ों से बच्चों के
1: यानी
0: इमोशन,
1: जिस्मानी नशोनुमा के
0: साथ
1: साथ
0: साथ हाँ ज़हनी
1: ज़हनी
0: नशोनुमा,
1: नशोनुमा
0: हाँ,
1: बहुत ही ज़रूरी
0: और
1: है।
0: समाजी नशोनुमा, क्योंकि ऐसे समाज समझ जाता है बच्चा कि मुझे ऐसे खेलना है, वहाँ पे गुस्सा है, कभी मेरी माँ गुस्सा करती, बोलती नहीं नहीं ये मत उठाओ, ये नहीं करते, ये नहीं करते,
1: सही है।
0: ये चीज़ों का ध्यान
1: अक्सर
0: ज़रूरी है।
1: देखते हैं ना उरफाना जी, जब छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ कहीं किसी के घर चले जाते हैं, फिर खाली माँ आंखें उठाती है, ऐसे ही देखती है, तो वो जो खाने लगते हैं वो

0: छोड़ देते हैं,
1: हाँ
0: मतलब वो होते हैं, मतलब इतनी क्लोज रिलेशन होती है उनकी कि एक दूसरे की नजर को वो समझ जाते
1: समझ
0: हैं।
1: जाते हैं, सही बात। देखिए आजकल की माएँ ऐसा भी करती हैं कि मुझे काम है बहुत ज़्यादा, तो मैं मोबाइल दूंगा बच्चे को, तो मोबाइल हाथ में
0: वो
1: देते
0: सही
1: हैं
0: नहीं है।
1: वो सही नहीं। देखिए हम क्या, इससे बेटर ये है कि अगर आप कोई आईना सामने रखो बच्चे को, अगर खाना खिलाना है आईने के सामने खाना खिलाओ, आईने में बच्चे की शक्ल आनी चाहिए, किसने खाया किसने, बच्चा अपने आप को देखेगा, हाँ मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, वो क्या खा रहा है, उसको लगता दूसरा बच्चा है, मेरे मुंह में भी जा रहा है, कितना जा रहा है, वो
0: सही।
1: उसको भी देखेगा, अगर अटेंशन स्पैन बढ़ाना हो, वरना इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वही जैसे हम वो देखो कौवा आया, बिल्ली आ गई, चिड़िया आया वगैरह, जितने भी टैक्टिक्स है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का, मेहरबानी करके मोबाइल का इस्तेमाल पहले से मत कीजिए, फिर बच्चा बिल्कुल नहीं
0: मानता है।
1: नहीं एक तो मानता नहीं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है उसकी, क्योंकि माँ भी कहती है चलो मोबाइल से बैठा हुआ है, मेरे 10 काम निकल आएंगे, मेरा बच्चा बिल्कुल शांत बैठता है, मैं उसको
0: यानी बच्चे की जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो देखभाल है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है।
1: नहीं, कोई भी शॉर्टकट नहीं
0: जो
1: करना।
0: हमारे माँ बाप करते आए हैं, वही हमने भी करना है।
1: सही मानो, और साथ में खाना खाते समय हम अपने दस्तरखान पे बच्चे को भी बिठाएं, ये 2 साल का ही बच्चा है, ये बिल्कुल फैला देगा, चावल फैला देगा, रोटी फैला देगा, जरूरी है इसके लिए ये फैलाए, क्योंकि फैला के ये जानेगा कि मुझे कल को ये साफ भी करना है, क्योंकि आप साफ कर रही हैं एज अ माँ, ये साफ करिए, वो देखता है कि मेरी माँ फिर उठा रही है ये कितना। मैं आपको एक इंस्टेंस दे दूँ, तो वो किसी बच्चे ने कहा था, मतलब हमारे स्कूल में एक बच्चा आया था, हमने उसको कहा देखो आपकी ड्रेस कितनी अच्छी है, मतलब और हाथ फेरा था, रियली वो बहुत ही क्यूट सी बच्ची आई हुई थी, मतलब रोज आती थी, उस दिन उसकी ड्रेस काफ़ी खूबसूरत थी, शायद उसका बर्थडे था, तो उस दिन वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई थी, ड्रेस पहन के आई थी, तो किसी टीचर ने उसको किया, हाँ कितनी प्यारी बच्ची है, कितना अच्छा ड्रेस पहना है, उसने उसको यहाँ वापस जवाब दे दिया, हाँ मैम मैंने ड्रेस तो अच्छी पहनी है, लेकिन ये खराब मत करो ना, ये लप का मसला आया है। मतलब ये आवाज, ये बात उसने घर में कहीं का कहीं सुनी है,
0: हाँ सुनिए।
1: तो ये चीजें हमारे बच्चों में आ जाती हैं इससे, और वो चीज की शी हैज गॉट, मतलब उसके दिमाग में आया कि बहुत सारे पैसों में आया हुआ है,
0: और इसको टच नहीं करना है।
1: और उसको टच नहीं करना, शायद उसको घर में कहा गया हो ये ड्रेस खराब नहीं करना क्योंकि ये बहुत पैसों में आया हुआ है, कश्मीरी में कहा था, तो ये चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, कलर कॉम्बिनेशन का, ये कौन सा कलर है, बाकी चीज़ें।
0: हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो मौजू है काफ़ी वसी है, लेकिन साथ में दिलचस्प भी है। तो इंशाल्लाह आपको हम फिर से मधु करेंगे एक नए प्रोग्राम में, और हम आगे का जो पार्ट है, 3 साल से आगे का, हम उस पे हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे।
1: बेशक ज़रूर, इंशाल्लाह,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।
1: शुक्रिया।
0: सम किराम, इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह रहमान, अगले प्रोग्राम में हम आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने गवाह।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये था प्रोग्राम बज़्मे निस्वां, पेशकश समीना शाह। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 2.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय 1 बजा चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।
7: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
3: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
3: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
3: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
3: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
2: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
3: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
2: जी
3: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
2: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी

0: मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर।

0: देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: रामकृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है।

0: मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा सात वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: उस समग्र दृष्टि थी, उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: मीडियम वेव 200.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोस्तों, ये है वीर फिल्म का नगमा। राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो की आवाजें हैं, साजिद वाजिद की मौसिकी है और गुलजार के बोल हैं।

ये है खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी।

0: इनको भी है
1: हा, हा।
0: मेरा खुमार इनको भी है
1: हा, हा।
0: इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

0: उलझन, सच बन गया अगर उलझन, फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता। मुझ पर यकीन अब कम सही, मैं सादा दिल।
1: ये थी मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम था तीसरी कसम, आर डी बर्मन की मौसीकी थी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ज़मीन 1:50 हो रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें और 2 बजे मिड डे न्यूज़ रिले करेंगे। ज़रा सा इंतज़ार कीजिए।

पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। और आज रात मैक्सिको में शुरू होने वाले एक महीना तवील फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर के फुटबॉल मद्दा तैयार हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कारोबार को फरोग देने, हुनरमंदी में इजाफा करने और रोजगार के मौके पैदा करने के इकदामात पर गौर खोज किया जाएगा। तबादला ख्याल के दौरान इज्तिमाई तौर पर अमलावरी का खाका तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, ताकि जवाबदेही को यकीनी बनाते हुए हुक्मरानी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और साझेदारी को फाल बनाया जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तआवुन पर मबनी वफाकी निज़ाम के जज्बे से रहनुमाई हासिल करते हुए मरकज़ और रियासतें भारत की तरक्की के सफ़र में तेज़ी लाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के मुश्तरक विजन की तकमील में अहम किरदार अदा करेंगी। इस साल की मीटिंग का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए सबकी शमूलियत वाली इंसानी तरक्की, जिसमें उम्र, खित्ते, जिंस या समाजी व इक्तसादी पस मंज़र से क़त नज़र हर शहरी की फलाह व बहबूद और तरक्की पर ज़ोर दिया गया है। गवर्निंग काउंसिल इस विज़न को पाए तकमील तक पहुँचाने की हिकमत अमली और इसे मुल्क भर के शहरियों के लिए एक ठोस नतीजे में बदलने पर गौर करेगी। रेलवे और इत्तिलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर के आकाशवाणी अहाते में मुनक़िद प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के रामगढ़ में नसब 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। तकरीब में जयपुर के रुकन पार्लियामेंट मनोज शर्मा, प्रसार भारती चेयरमैन प्रसून जोशी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन के अलावा दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णव ने स्ट्रेटजिक एतबार से अहम बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करते हुए सरहदी खित्तों में मवासिलात को मुस्तहकम करने के तहत हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों का अहाता करने की बड़ी पहल आज राजस्थान में शुरू हुई है। जनाब वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से शुरू करते हुए मुल्क की पूरी सरहदी पट्टी को जामे कवरेज फराहम करने का मंसूबा है। हुकूमत ने इथेनॉल की आमेजिश वाले बाज अकसाम के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत ख़जाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि इस कदम का मकसद भारत के इथेनॉल की आमेजिश के प्रोग्राम को मुस्तहकम करना है, ताकि दरामद किए जाने वाले खाम तेल पर इन्हिसार कम हो, कार्बन के अखराज में कमी आए और मुल्क में तैयार करदा इथेनॉल की मांग में इजाफा किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सदरनशीं CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी आबादी के वजीर राममोहन नायडू ने आज गुजरात में वडोदरा से भारत में तैयार की गई पहली एयरबस C295 की पहली आजमाइशी परवाज पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि यह आसमान में उड़ने वाला महज एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि इससे हवाई जहाज़ों की तैयारी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का भी इजहार होता है। शहरी आबादी के वजीर ने इस कामयाबी पर एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय फिजाइया और सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्करों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अदीब और कंसल्टेंसी फर्म काउंसिलेज इंडिया के बानी और मैनेजिंग पार्टनर का मजमून शेयर किया है। ये मजमून वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुद्दत कार का अहाता करता है और इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने मुश्किल रास्ते को चुना और हुक्मरानी के तरीक़े कार के ज़रिए बदलाव लाते हुए वक़ार और खिदमात की फराहमी को अवामी तहरीक बना दिया। ये मजमून इस बात को भी नुमायाँ करता है कि जनाब मोदी ज़्यादा बाअसर वज़ीर आज़म साबित हुए और वो बदलाव लाने वाले शख्स बने जिसकी भारत को सख्त ज़रूरत थी। भूटान के वज़ीर आज़म शेरिंग टोबगे ने आज कौमी रोज़नामे में एक मजमून लिखा, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब

जी, यह था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वरदान फिल्म का नगमा। वर्मा मलिक की मौसीकी थी, कल्याण जी आनंद जी की जी हाँ वर्मा मलिक के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी थी। अब आ रहा है आशा भोसले का गाया हुआ नगमा। इस नगमे को लिखा है प्रेम धवन ने, मौसीकी तैयार की है राजेश रोशन ने और फिल्म है वल्ला क्या बात है।

जी समीन, आप फिल्मी रंग में समाप्त कर रहे थे। ये था मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में फिल्म उत्तर दक्कन का नगमा। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी और ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 68.8 मीटर ते FM 73.5 MHz पर। समीन वलियो सूफियान मौसीकी बोजो फनकार च शुभेन अख्तर तिहन सती ये मन्नी रोजो ते मकामे रिहावी।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से नगमे से। ये है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई, गुलजार के बोल है और खयाम की मौसिकी है।

जी फौज भाइयों, ये था प्रोग्राम का पहला नगमा। गुलजार के बोल थे, खयाम की मौसीकी थी, लता मंगेशकर की आवाज़। जी हाँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। और अब ज़मीर फिल्म का नगमा आपके लिए पेश करते हैं। सपन चक्रवर्ती की मौसीकी है, साहिर का लिखा हुआ गीत है और आवाज़ें हैं जहाँ किशोर कुमार और आशा भोसले ने इस नगमे को गाया है।

जी फौजी भाइयों, ये था वारदात फिल्म का नगमा। रमेश पंत के बोल थे, बप्पी लहरी की मौसीकी थी और इस नगमे को गाया था मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर ने। अब अगला गीत आ रहा है फिल्म राम बलराम से। आनंद बख्शी के बोल है, जी हाँ, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है और मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं।

जी फाजू भाइयो, ये था अनवर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी। फिल्म का नाम था ये इश्क नहीं आसाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा, ये है महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। ओ पी नायर की मौसीकी है। आइए समाप्त करते हैं

0: फौज भाइयों, ये था महेंद्र कपूर का गाया हुआ नगमा फिल्म ये रात फिर न आएंगी से, और इसकी मौसीकी तैयार की थी ओपिनियर ने। आपको बताते चले कि आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर। और आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: कास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबित

जी फौज भाइयों, आप फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये नगमा था निदा फाजली का लिखा हुआ। खयाम की मौसीकी थी, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी और फिल्म का नाम था नाखुदा। और अब आ रहा है आपकी खिदमत में, पेश कर रहे हैं हम क्रोधी फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी है और इस नगमे को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

जी फौजी भाइयों, ये था क्रोधी फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी, और इस नगमे को गाया था लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। और अब प्रोग्राम का आखिरी गीत आपकी नज़र करते हैं, ये है कशिश फिल्म का नगमा। इसके बोल लिखे हैं अनजान ने, मौसीकार है कल्याण जी आनंद जी, और आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार की।

0: तो फौजी भाइयों, ये था प्रोग्राम का आखिरी नगमा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन 3:50 हुए हैं। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपेर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शबीरुज़्ज़मा। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत तरक्की की राह पर गामजन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खेलकूद के शोबे में सरमायाकारी करने पर जोर। वजीर अला उमर अब्दुल्ला का जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस को मजीद मुस्तहकम करने का मरकजी रेल वजीर से मुतालबा। और वादी में सयाहों की अच्छी खासी तादाद मौजूद। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी सतह पर गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बावजूद भारत एतमाद के साथ तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 11वीं मीटिंग की सदारत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क विकसित भारत का निशाना हासिल करने की जानिब पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलकूद के शोबे में सरमायाकारी इस शोबे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ खिलाड़ियों को बेहतर मौके फराहम करने में मददगार साबित हो सकती है। श्रीनगर में अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के उभरते हुए खिलाड़ी खेलों के शोबे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके यूटी का नाम रोशन कर रहे हैं।
2: अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। उनमें से जो प्रतिभाशाली हैं उनकी आगे की यात्रा का ये पहला कदम है और ये टूर्नामेंट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मैं सभी प्लेयर से ये बात कहना चाहता हूँ ताकि भविष्य के लिए भी उनके भीतर नई संभावनाएं पैदा हो सके। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य

0: हो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी।
1: इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए हर तरह के इंतजाम को पेशगी मुकम्मल करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वाजह रहे कि इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णव के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में रेल खिदमात को तकवीत बख्शने से मुतलिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वादे को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ जोड़ने और कनेक्टिविटी की सहूलियात में इजाफा करने के ताल्लुक से एक संग मील की हैसियत इख्तियार कर रही है। इस मौके पर वजीर आला ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अनंतनाग में एक स्टॉपेज कायम करने का मामला मरकजी वजीर की नोट्स में लाया ताकि जनूबी कश्मीर के लोगों को राहत नसीब हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया जाना चाहिए। किसानों की बहबूद से मुतलिक जेएंडके मशावरती बोर्ड के अहतमाम से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के कैंपस में आज तरक्की पसंद किसानों के लिए एक रोजा तरबियती कैंप मुनक्द हुआ। इस मौके पर किसानों को काश्तकारी की जदीद और साइंसी तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को यूनिवर्सिटी रवाना करने के मौके पर ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि फसल बीमा स्कीम सरकार की जेर गौर है। मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे हैं, इनको जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी से इनकी जानकारी हो, लेटेस्ट जो हमारी इनोवेशंस होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशंस होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उस सारी चीजों को लेकर जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड्स में ही उस जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
1: जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ LG का पैगाम,
0: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
1: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से आर्मी गुडविल स्कूल अनंतनाग में 7वीं जमात की एक तालिबा हामिया मुख्तार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
3: मिटाएंगे इस नासूर को जड़ से, चलो आज ये अहद हम दोहराए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हमारे खित्ते को तन्हाई, उदासी और तबाही की अंधेरों से निकालकर एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का अजम है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान सिर्फ एक हुकूमती मुहिम नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जानब समाजी बेदारी का सफर है। आओ सब मिलकर नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाए, हर घर में उम्मीद का दिया जलाए और अपनी वादी को अमन और सेहत का गहवारा बना दे।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर सियाहती मकामात पर इन दिनों काफी रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की सैर पर आकर यहां के कुदरती नजारों से महसूस हो रही है। सयाह मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और यहां के मौसम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। चंद सयाहों के तासुरात,
4: कुदरत ने बनाया एक करिश्मा है उसे कश्मीर कहते हैं। धरती ये सहना सिखाती है, यहाँ की जो सरिता है वो बहना सिखाती है और कश्मीर ये हमें जिंदगी जीना सिखाती है। कश्मीर की वादियों में, हवाइयों में, हर एक कोने कोने में खूबसूरती छुपी हुई है।
5: मुझे बहुत ही अच्छा लगा, माननीय मोदी जी ने संदेश दिया है कि आप अपने देश की जन्नत जो कश्मीर है, जितनी खूबसूरत वादियाँ हैं जिसमें प्राकृतिक एडवेंचर

0: अब अपन विदेश में जाके देखते हैं, वो अपन यहाँ लोकल देखना चाहिए।
1: मुझे 3 दिन हो गए लेकिन यहाँ पे लोगों में मैंने बहुत इंसानियत, उनका जो बोलना है सादापन सरलपन ये मैंने नजर किया है।
0: बेलगाम में बहुत सुख शांति अमन चैन और भाईचारा है। यहाँ पे जो अपने मुस्लिम भाई भी है वो भी अपने साथ और अच्छे सहयोगी है, उनका नेचर भी अच्छा है।
2: एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में वकला के लिए आरजी कैबिन तामीर करने की खातिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में से 20 लाख रुपए वागुजार करने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में एमएलए मौसूफ ने जिले के चीफ प्लानिंग ऑफिसर के नाम एक मकतूब में जरूरी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला मरहूम मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की बरसी पर आज सरनल अनंतनाग में फातह खानी की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान मरहूम को फूलों का खराज अदा किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर डॉ महबूब बेग, कई सियासी कारकुनों, उनके चाहने वालों और दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद ने मरहूम के लिए दुआएं मगफिरत की। मरकज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत वाली सरकार ने 12 साल मुकम्मल किए हैं और इन 12 बरसों के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सईद दरख्शां अंद्राबी के तासुरात।
3: 12 साल बेमिसाल है और लॉन्गेस्ट टेन्यूर जो है किसी भी प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, वो प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और ये तारीख कोई मिटा नहीं सकता। ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज अब बढ़ गए हैं, IITs और बाकी चीजें, अब हड़ताल पीछे रह गया है, अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई। अब तरक्की और कंप्यूटर AI का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है, टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है।
2: इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
4: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।
5: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थियां इदा पहाड़ी प्रोग्राम सुनने वालियां को जहांगीर अहमद खान दा सलाम कबूल होवे। सामीन उम्मीद करदा कि तुसे सारे बखैर वाफियत होसो। अस्ती भी हमेशा ई दुआ होंदी है कि अस्ते सामीन जेड़े अस्ते कदरदान हमेशा खुश ते खुशहाल रहन। सामीन अज अस्ती वीरवार दी महफिल है। अज दी महफिल विच तुसते पसंद कीते दे गीत पेश करसा और नाल ही तुसा नाल कुछ गलां भी सांझियां करसा। तसामीन अज दी महफिल दी शुरुआत एक सदाबहार गीत नाल ते सदाबहार आवाज़ है अब्दुल रशीद कुरैशी दी।

जी सामीन, तुसें गीत सुनिया तो आवाज़ असी अब्दुल रशीद कुरैशी दी। सामीन, तुसें अक्सर यह जुमला सुनिया उसी कि कसबी कौम की तामीर बिच इस दे नौजवानों का बड़ा किरदार होंदा है। असल बिच नौजवानी का दौर वह दौर होंदा है जिस वेले इंसान के इरादे, जज्बे और तवानाई अपने उरूज ते होंदे न। अगर इन्हां जज्बियां और

जी सामीन, तुसें गीत सुनिया तो आवाज़ असी सैयद मुहम्मद इकबाल मलनगामी दी। सामीन, गीत की पहलियां गल करदे असा नौजवानों के बारे में। सामीन, जरूरत इस गल की है कि असते सामने एक वाजिया खाका और मनसूबाबंदी होवे कि असते नौजवानों को अपनी सलाहितों को इस्तेमाल करने और किस तरह मुल्क व कौम की तरक्की विच अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक कम हुकूमत, वालदेन, असातेजा और आप नौजवाना सारे को मिलकर करना है। सामीन, इस हवाले नाल सब थी बुनियादी चीज बेहतरीन तालीम दा हासिल करना है। बेहतरीन तालीम दा मतलब महंगे और मशहूर तालीमी इदारियां विच तालीम हासिल करना नहीं, बल्कि अपने वसायल दे मुताबिक तुस्ता एक एक लम्हा सीखने दे अमल विच इस्तेमाल होवे। अपने कीमती वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। ज्यादा थी ज्यादा इलम हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। एजा इलम जिड़ा असा को एक बेहतरीन इंसान बढ़ावे और तुस्ती सलाहितों को निखारने विच मददगार साबित होवे। तसामीन, प्रोग्राम विच अगर पेश है तुसा वास्ते एक और खूबसूरत गीत। तो खूबसूरत आवाज है यूनस लोलाबी दी।

0: अदाबी आकाशवाणी श्रीनगर है खबरनामा लेके मैं से शाफिया पहला कुछ खास खबरां दी सुर्खियां। आलमी सतह ते गैर यकीनी सूरतहाल दे बावजूद भारत तरक्की दी राह ते जुल रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा खेड कूद दे शोबे विच सरमायाकारी करने ते जोर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला दा जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस को मजीद मस्तकम करने वास्ते मरकजी रेलवे दे वजीर नाल गलबात। और वादे विच स्याह दी मुझ सारी तैदाद मौजूद। और खबरां तफसील नाल सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुनाक है जे आलमी सतह ते गैर यकीनी और गैर मुस्तकम सूरतहाल दे बावजूद भारत एतमाद दे नाल तरक्की कर रहा है। राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली विच नीति आयोग दे गवर्निंग काउंसिल दी 11वीं मीटिंग दी सदारत करदे हुए नरेंद्र मोदी सुनाक है कि मुल्क विकसित भारत दा निशाना पूरे करने दी तरफ जुल रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या कि खेड कूद दे शोबे विच सरमायाकारी इस शोबे दे बुनियादी ढांचे को डेढ़ा बढ़ाने दे नाल नाल खिलाड़ियों को बेहतर मौके देने विच मददगार साबित हो सीगी। श्रीनगर बीच अल्फा हाकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब नाल खिताब करदे हुए उन्होंने सुन आख्या कि जम्मू कश्मीर के उभरते हुए खिलाड़ी खेडां दे शोबे विच बेहतर कारगर्दी का मुजाहरा करके यूटी का नाम रोशन करन।
1: अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। उनमें से जो प्रतिभाशाली हैं उनकी आगे की यात्रा का ये पहला कदम है और ये टूर्नामेंट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मैं सभी प्लेयर से ये बात कहना चाहता हूँ ताकि भविष्य के लिए भी उनके भीतर नई संभावनाएं पैदा हो सके। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन श्रीनगर बिच एक बड़ी मीटिंग दे दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दे सिलसिले बिच कीती जुल रही तैयारियां दा जायजा लिया। उन्हें सुन सारे महकमा को हिदायत दी है कि वह यात्रा दे असल तरीके नाल इनकाद वास्ते हर तरीके दे इंतजाम पूरे करन। उन्हें सुन खासकर बुनियादी ढांचे सेहत दे मुतलक निगरानी सफाई सुथराई कनैक्टिविटी और बाकी सहूलतों की तरफ तवज्जो देने की हिदायत भी दी। मीटिंग चीफ सैकटरी अटल डुल्लू डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और बाकी बड़े अफसर भी मौजूद से। याद रहे जे इस साल दी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त को मुकसी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन नवी दिल्ली बिच रेलवे दे मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु दे नाल मुलाकात कीती और जम्मू ते कश्मीर बिच रेल खिदमतां को तकवीत देने दे बारे अमूर ते गलबात कीती। वजीर आला

0: इस मौके ते आख्या जे जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वादी को मुल्क ते मुसारे एशियां दे नाल जोड़ने और कनेक्टिविटी दी सहूलतां विच बढ़ावा करने दे बारे विच एक संगे मील दी हसीयत रखती है। इस मौके ते वजीर आला सुन जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वास्ते अनंतनाग विच एक स्टॉपेज कायम करने दा मसला मरकजी वजीर दी नोटिस विच आणिया तां जे जनूबी कश्मीर दे लोकां को राहत नसीब हो सके। किसानों के बहबूद के जे एंड के एडवाइजरी बोर्ड के अहतमाम नाल श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के कैंपस बिच अज तरक्की करने आले किसानों वास्ते एक दिहाड़े का तरबियती कैंप मुनक्द होया। इस मौके पर किसानों को काश्तकारी की जदीद और साइंस के तौर तरीके के बारे में जानकारी दी। किसानों को यूनिवर्सिटी रुखसत करने के मौके पर ज़राअत वज़ीर जावेद अहमद डारसू ने आख्या कि फसल बीमा स्कीम सरकार के ध्यान बिच है। मीडिया दुमायदे के नाल गल करते हुए उन्होंने
1: हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे हैं, इनको जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी से इनकी जानकारी हो, लेटेस्ट जो हमारी इनोवेशन होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उस सारी चीजों को लेके जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड में ही उस जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
0: मरकज बिच वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत आली सरकार सुन 12 साल पूरा कर छोड़े हैं और इन 12 सालों के दौरान आवाम की फलाह ते बहबूद वास्ते मुझ सारिया स्कीम ते प्रोग्राम शुरू किए। जम्मू कश्मीर बिच इस तरक्की तो फायदा जा रही है। इस बारे में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद अरशद अंदराबी सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करते हुए आख्या
2: 12 साल बेमिसाल है और लॉन्गेस्ट टेन्यूर जो है किसी भी प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में, हमारे भारत में वो प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और ये तारीख कोई मिटा नहीं सकता। ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव, हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेज अब बढ़ गए हैं, IITs और बाकी चीजें, अब हड़ताल पीछे रह गया है, अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई, अब तरक्की और कंप्यूटर AI का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है, टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है।
0: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ AIR ਔਰ DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। जम्मू कश्मीर दिया मुझ सारिया सियाहती जगह ते इन त्याड़े मुझ रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। मुल्की और गैर मुल्की सियाह दी एक बड़ी तादाद कश्मीर दी सैर ते आ के इत्थे दे कुदरती नज़ारियां तो लुत्फ जा रही है। इत्थे दे रहने वाले लोगों की मजमानदारी और इत्थे दे मौसम तो काफी खुश लग रहे हैं कुछ सियाह दे तासुरात।
3: कुदरत ने बनाया एक करिश्मा है, उसे कश्मीर कहते हैं। धरती ये सहना सिखाती है, यहाँ की जो सरिता है वो बहना सिखाती है और कश्मीर ये हमें जिंदगी जीना सिखाती है। कश्मीर की वादियों में, हवाइयों में, हर एक कोने कोने में खूबसूरती छुपी हुई है।
4: मुझे बहुत ही अच्छा लगा, माननीय मोदी जी ने संदेश दिया है कि आप अपने देश की जन्नत जो कश्मीर है, जितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, जिसमें प्राकृतिक एडवेंचर है, जो अपन विदेश में जाके देखते हैं वो अपन यहाँ लोकल देखना चाहिए।
3: मुझे 3 दिन हो गए लेकिन यहाँ पे लोगों में मैंने बहुत इंसानियत, उनका जो बोलना है, सादापन, सरलपन, ये मैंने नजर किया है।
4: बेलगाम में बहुत सुख, शांति, अमन, चैन और भाईचारा है। यहाँ पे जो अपने मुस्लिम भाई भी है वो भी अपने साथ और अच्छे सहयोगी है, उनका नेचर भी अच्छा है।
0: जम्मू कश्मीर को मंशियात दी लाने तो छुटकारा दिलाने वास्ते 100 दिहाड़ियां ते मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आप मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम और कदमों की निगरानी कर रहे हैं। मंशियात के खिलाफ LG दा ई सिन्हा
5: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिध ते काबू करने वास्ते मुसारे कदमा और लोकां दियां जिम्मेदारियां दे बारे आर्मी गुडविल स्कूल अनंतनाग बिच 7वीं जमात दी एक तुलबा हानिया हामिया मुख्तार सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या
6: मिटाएंगे इस नासूर को जड़ से, चलो आज ये अहद हम दोहराए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर।

0: अभियान हमारे खित्ते को तन्हाई, उदासी और तबाही की अंधेरों से निकालकर एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का अजम है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान सिर्फ एक हुकूमती मुहिम नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब समाजी बेदारी का सफर है। आओ सब मिलकर नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाए, हर घर में उम्मीद का दिया जलाए और अपनी वादी को अमन और सेहत का गहवारा बना दे।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरावां दे मरकजी वजीर नितिन गडकरी सुनाख है कि जम्मू और श्रीनगर दे विचकार कनेक्टिविटी को अगल जाने नई श्रीनगर जम्मू कौमी शहर तै मियार बिच बढ़ावा देने वास्ते मरकजी सरकार हर मुमकिन मदद कर रही है। उन्होंने सुनाख है जे आने वाले कुछ महीने बिच जम्मू और श्रीनगर दे विचकार सफर छड़ा 3 घंटे रह जासी। उन्होंने सुन जम्मू कश्मीर दे कुछ जरूरी प्रोजेक्टां दा भी जायजा किया।
2: जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन, बनियाल, अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो 4 लेन पोर्शन हम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा।
1: जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के एहतमाम नाल आज श्रीनगर बिच पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके ते बी के पुरा चाडोरा के साबिक सरपंच गुलाम महीउद्दीन डारसुन जे डी यू बिच शमूलियत इख्तियार की। एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परासुन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपलैक्स पुलवामा बिच वकीलों वास्ते आरजी केबिन बनाने वास्ते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवेलपमेंट फंड बिचू 20 लाख रुपए व गुजार करने की सिफारिश की। इस सिलसिले बिच एमएलए मौसूफ सुन जिला दे चीफ प्लानिंग ऑफिसर के ना एक चिट्ठी बिच जरूरी कार्रवाई शुरू करने वास्ते आख्या। इस दे नाल ही पाड़ी खबरनामा मुक्या। इसका अगला बुलेटिन 5:50 ते गोजरी जबान बिच नशर होसी। खुदा हाफिज।
3: जी सामीन, पहाड़ी खबरों के बाद एक बार फिर तुस्ता प्रोग्राम विच खैर मकदम है।

जी सामीन, तुसें खूबसूरत गीत सुनिया। तो खूबसूरत आवाज़ असी मास्टर करतार चंद दी। तो सामीन, प्रोग्राम विच अगर पेश है अज दी महफिल दी आखिरी सौगात। एक खूबसूरत गीत तो आवाज़ है काबुल बुखारी दी।

0: इन लोगों को बाद में पता चले कि ना मजा में ये लोग भी लिखे लगा हुआ और अच्छो लिखे लगा हुआ। तो बहरहाल इनकी कुछ चंद चीज में पढ़ी, जिस तरह बाबू नूर और अंको दो ब्याह वो में पढ़े, तो इस तरीका ना आगे बढ़ोगे। तो एक बार हॉस्टल के बीच एक रजौरी को एक शायर तशरीफ ले आए, तो उसने कुछ शेर सुनाया कि ये मैं पढ़ना है जी, महफिल के बीच फलाने जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें ये पढ़ना है। तो मैं भी सुने तो मैं सोचे हम इस तरह की चीज लिख सकूंगा, फिर मैं भी शुरू कर ली। बहरहाल उसकी वह नजम थी सौकड़, मैं क्यों हम ही सौकड़ लिखूं, तो हूं कितनी इस तो अच्छी लिख सकूंगा कि इस तो बुना ही रह के लिखूं। बहरहाल मैं भी लिखी और उसना बड़ी हौसला अफजाई हुई, जिस वक्त वह मैं सुनाई, रेडियो ते सुनाई, टीवी ते भी नशर हुई, अकेडमी वाला ने छापी, मुशायरा में भी पेश होती रही, बड़ी जगह वहां पढ़ी गई। तो बहुत हौसला अफजाई लोगों ने की और बहुत लोग हंसे उस पर। तो फिर मैंने अपनी जगह एक हौसलों मिली कि ना लिख सकूंगा।
1: ताजुद्दीन ताज साहब एक शायर जुड़ा हुआ है, एक उस्ताद की हैसियत भी रखे।

0: हैं इस अदब के आज तक बिल्कुल उनको कोई वास्तो ही नहीं। और उसके नाल नाल जो मारो नशर अशियात को जो तरीको है उस तक रसाई मारी नहीं, तो यू अदब जो इसकी निखार जड़ी है या इसकी फलाह बहबूद उस तक कोई कारण की जरूरत है।
1: इस वास्ते सब तो बड़ो प्लेटफॉर्म यो ही है कि एकदम रेडियो तो का हवा में आई चीज चली गई
0: जी,
1: महफूज मत रही, किताबी सूरत में महफूज है लेकिन पढ़ने वाला काटे। इस वास्ते सेमिनार होना चाहिए, इस वास्ते एनजीओ काम करनी चाहिए जिस तरीके ना बाकी जबान का लोग करें लगावा। मारी गमांडन जमान है कश्मीरी, इसके भी कितनी तरक्की हो रही है, कितना हर मतलब ग्राम हर इलाका हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे सेमिनार करें, जबान पर गल करें, कॉन्फ्रेंस करें। इस तरीके ना मारी भी होनी चाहिए। कल्चरल अकेडमी एकली नहीं कर सकती क्योंकि उनको वसाइल काट हुए, वे एक कॉन्फ्रेंस कर छोड़ेंगे साल में, उसके भी ज्यादा तो ज्यादा 500 आदमी जमा हुआ है वो या 1000 जमा हो गए बड़ी हद है। और वे लोग होएगा जेड़ा दानिश्वर लोग होएगा, अदीब लोग होएगा, आम लोग थोड़ा जा होएगा, आम लोग थोड़ी गल मत पहुंची, वह महदूद लोग तक पहुंची ना जिन्हें ऑलरेडी पत्तो है कि ये क्या है, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें यू पत्तो नहीं कि जबान क्या है, जबान के बीच किन चीजों की जरूरत है, के करनो है अगर नई नस्ल जड़ी है उसने किस तरीका ना आम चलावेंगे, वे किस तरीका ना इस मैदान में आवेगा, वे जबान वास्ते के करनो चाहिए, उन्होंने के मसला मसायले हमारी जबान दरपेश वे करना चाहिए, जिस तरह 8वां शेड्यूल में हमारी जबान ना आ जानो चाहिए। उस वास्ते जदोजहद मुझ लोग कर रहे हैं तो बहरहाल किस साल हद तक कामयाब हुए के हुआ है वो दूजी गल है, लेकिन कोशिश जारी है। उस वास्ते हमारा नौजवान ना भी ज्ञान हो चाहिए।
0: ताजिन ताज साहब, चूंकि हमारी जो शायरी है और जो अदब है इसके बीच इनकलाबी शायरी की बड़ी गुंजाइश है और इस फन के नाल तम जुड़िया अदीब होने के नाते इन लोगों और नौजवान की जड़ी सलाहियत उन उभारे हो जाए, उन इस तरह रागब की हो जाए, क्योंकि 20वीं सदी का शुरुआत का दौर में जब अलामा इकबाल 1905-8 तक जब यूरोप में गया, या अल्ताफ हुसैन हाली की अगर हम गल करें तो उसने बड़ी इनकलाबी शायरी लिखी कुनोली दौर में, तो उस तरीका के जो बदलाव की जरूरत है जड़ा लोग ग्रायां ते शहरां में चाहे और शहरां ते बड़ा जड़ा शहरों में गए हैं, तो बच्चा के अंदर नौजवानों के अंदर इनकलाब आने हो जाए, उनकी सोच में तब्दीली आनी जाए, उन्हें अपना माजी ऊपर फख्र महसूस करना चाहिए, इस वास्ते एक शायर होने के नाते तम की महसूस करे
1: या कमी महसूस करूँ की ये इनकलाबी चीज जी हमारे को बहुत काट है। शुरू का जड़ा हमारा बुजुर्ग शायर था उन्होंने शुरू में कुछ चीज ऐसी लिखी है जिनके बीच इनकलाबी चीज थी, जिस तरह मीन के इसको फजल मुश्ताक को एक शेर याद आवे, हिम्मत करके मारो हलो ता बनेगो काम सखलो। इस तरीका ना और लोगों ने भी लिखी है चीज, मगर बहुत ज्यादा लिखी नहीं गई, कमी महसूस कर रहा इस चीज की, तो मैं मतलब कोशिश की है कि हूँ मिजा के जरिए भी कई चीज जड़ी है तो वे इस तरह इनकलाबी चीज को तक हूँ कामयाब आऊंगा दूजी गल है, बहरहाल कोशिश में की है। तो सब पहला तो मना ये हजल सुना छोड़ू और हजल सुनाने तो पहला तो मैं यह गल कहूंगा कि हजल जड़ी है या अरबी के बीच पहला आई, अरबी ते मतलब फिर आ गई फारसी के बीच, फारसी बीच उर्दू में मुंतकिल हुई, तो गोजरी माँ अल्लाह का फजल ना थारी दुआ ना मैं कोशिश की है हूँ की सादा कामयाब आऊंगा तम लोगों की मर्जी है तम जी, तो हजल लिख सुनाऊ तमना, अग वफा की जोड़ अतेरा मीना हार जा लोड़ अतेरा, प्यार की ऊंची छाले छाले मेरे पीछे दौड़ अतेरा, अपना डंगर छोड़ के लुगा मेरी मैस ना होड़ अतेरा, प्यार वफा की पूरी अंगली मेरी नासे सोड़ अतेरा, तेरी कोट कचहरी मां फिर बिकिया मेरा खोड़ अतेरा, हेर के रक्कड़ मेरी डोगी शेर है, हेर के रक्कड़ मेरी डोगी रुठा चेची पोड़ अतेरा, पूरी नफरत डूंगी लाके दिल की मार मोड़ अतेरा, बैर वफा को जिस चोटा ना बन्ना उपरू रोड़ अतेरा, नफरत आला दिल को ताज पांडो पांडो तोड़ अतेरा। ते एक और निकी जी हजल है, सोच के गुत्थे बड़ो खुमार, सोच के गुत्थे बड़ो खुमार, मोटो नक है खुंडी तलवार, दुनिया का कन सुखड़ सुखड़, दुनिया का कन सुखड़ सुखड़, अरारू पार है एको पटकार, हट्टी हट्टी चुरलू चलू कन्ना ऊपर जातक सवार, बाप न बुढ़ो कहता सुनियो तकड़ो सोचा को मियार, चंडो चंडी आज वफा की आशिक कहिए या लोहार, नंग मुनुंगा जातक नचे कुदे गुर्बत सिर के पार।

0: इस तो अगे हम तुम्हारा मतलब वह गल कर रहे थे कि शुरू की जेडी मारी शायरी थी वह इस तरह थी कि माहौल जिस तरह को उसी तरह लोग अगे चलता गया। यानी शिंगरा को कितने जिक्र हुआ है, कितने माला को जिक्र हुआ है, कितने हवा को जिक्र हुआ है, कितने तला को जिक्र हुआ है, कितने सोना सोना कट्ठा को जिक्र हुआ है, ठंडा ठंडा पानियों को जिक्र हुआ है। इस तरह मतलब सीआरपी है बहते बारह
1: साहब जो तुमने गल की तुमने याद आ गया कि बारह मां जो लिखा जाए यार मारा लोग पहले जंग जीम थे पहला कोई सरहद नहीं थी लोग चलता ही नहीं था
0: जी
1: आज ही मारो एक तबको जो चलते रहे तो शायरी जुड़ी है बारह मां को या जिस भी माहौल के बंदो बैठो है उससे वह तो शायरी लिखा क्योंकि बैसाख जुड़ो वो सियाल बैस के भी ठंड में भी लिख सके।
0: देखिए मेरो अपनो जो नजरिया वो यो है कि वो शायर पर डिपेंड है कि वो शायर किस हैसियत को है वो के लिख सके वह उसकी अपनी ताकत की है
1: जी
0: वो किस तरीका माहौल तो मुतासर होकर लिखे या उसको बगैर लिखे किस तरीका लिखे। मगर उस जमाना का लोग भी इसी तरह लिखता रहे जिस तरीका ना मतलब माहौल उन्हें मिलते गए उसी तरह लिखता गया। यानी सियाल को मौसम थो तो फिर उन्होंने सियाल की गल की है बाहर को मौसम आते गए बाहर की गल की है जिस तरीका का माहौल मिलता रहे वे उस तरह करता रहा। तू अपने मुतालिक हूं या कहूँ कि अगर सियाल में गर्मिया की गल करूँ तो कर सकू तो गर्मियों में सियाल की गल करूँ कोहरा की गल करूँ ठंड की सख्त ठंड की गल करूँ तो कर सकू अल्लाह का फजल ना। लेकिन अक्सर मतलब राय लोगों की है कि शायर जो है वो हालात से मुतासर होकर का चीज लिखे।
1: गोजरी जुड़ो अदब है शेरी अदब यो बड़ो ताजो है कला मुझ बिजड़ी भी नीली नहीं हुई तो इस अदब के बीच तनकीद की कितनी गुंजाइश है।
0: तनकीद की बहुत गुंजाइश है लेकिन तनकीद बहुत काट की गई है तनकीद बहुत काट है यानी जितनी होनी चाहिए थी हमारा लोग इस मारा माजा बहुत काट लिखे तनकीद के मुतालिक जहाँ उतनो मारो रुझान जो है वो आगे नहीं बधे और होनी चाहिए जब तक तनकीद नहीं हो सके हम आगे नहीं बढ़ सकते तनकीद नाल एक माशरा को सुधार हो जाए।

0: मतलब जेड़ा साफ शफाफ अदब सामने आवा है। मतलब मेरे में कुताही अगर मेरे पर तनकीद लिखी जाएगी, चार आदमी तनकीद लिखे, पांच आदमी लिखे, जिस वक्त मैं सोचूंगा कि यार मेरे में इतनी गलती है, दोबारा हूं भी गलती नहीं कर सकूं, सुधर जाऊंगा, उसना सही तरीका ना पेश करने की कोशिश करूंगा, उस तरीका ना अदब जो है वो मेहरी अदब आवा है।
1: गोजरी जबान और अदब ना किड़ा किड़ा मसाइल जड़े वे दरपेश हैं, इसके बीच कोई रिसर्च भी हो रही है, क्योंकि मगरबी तहजीब उसका असरात है, इंटरनेट को दौर है, बाकी जबान की जड़े लहजे हैं उनका असरात है,
0: ये चीज हमारे सामने है। मतलब दूजी जबान का असरात जड़ा है, बाकी मगरबी इस वक्त दौर को जड़ो हमारे पर असरात हुए हैं, लेकिन उस तो हम पाका कि हम उन चीजों में मतलब उस नहीं है जिनमें बाकी लोग हैं, हमारा मारो कल्चर अजा भी सेफ है, लेकिन हमारा भी कोशिश करनी है काफी ताकि हम इसे और सेफ कर सका। मारो फोक अदब है जो हमने उसमें प्रिजर्व करना चाहिए, वो कितने जाया ना हुआ है, कहानी है, गीत है, बाकी चीजें, तो वे चीज हमें प्रिजर्व करनी है और कोशिश यह करनी है कि हम अपनी जबान जी है बोलने की कोशिश करा।
1: ताजिन ताई साहब, तुमने जी अपनी शायरी की उसमें कितनी फिर किताब छापी?
0: मेरी किताब ख्वाब सुलना ना है
1: जी,
0: तो उसमें कुछ संजीदा चीज भी है, कुछ नात भी है, तो नजम भी है, कथा भी है, तो गीत भी है, तो उस हवाला ना तुम दो नजम सुनाऊ। मैरी मुंह मंगलार बनी है, पूरा कार पर पार बनी है, टुक देखू डडियार बनी है, तोबा रार ते पार बनी है, पांडो टेंडर कार बनी है, चंडे मुच लोहार बनी है, मुंह लड़का अंगार बनी है, पारा रिच की नार बनी है, सुख सुख देखू तार बनी है, चंगी मोटी खार बनी है, एकण गल की चार बनी है, ओकड़ सिर तलवार बनी है, कंडा की सरकार बनी है, मेरा गाल को हार बनी है, यारी ला के यार बनी है, दिल के अद बचकार बनी है।
1: ताई दिन ताई साहब, तुमने किताब भी बड़ा ज्यादा लिखे हैं और अच्छा लिखे हैं, तुम्हारा सामीन वास्ते सौगात के थारी
0: के मोबाइल के ऊपर है, कन मुंडा के फोन मोबाइल, उनका चावे कर में फाइल, गे के रसो काल होर किला के, डाडी कर ठकोर किला के, सजे खबे इखी करता, कटी तंगे जोर किला के, फिर अगे की तारीख ना मतलब इसको जोड़ा है, रात की दीती जगराता ने खटी, सुतंगा कटा जागतंग की कटी, वेड़ो खड़ा के ताज नहीं था तो, पोता आज पोगते दादा की चटी, ख्वाब को ताणो कातले ता मनु, सूत वफा पड़कातले ता मनु, तकवा को मुला गातले ता मनु, जे अबलीस न प्रातले ता मनु। तो एक अगे हो रहा है कि मैं पिछली बरिया पांडो तोयो, पानी आली बां थिंदी है, मैं पिछली बरिया पांडो तोयो, पानी आली बां थिंदी है, नाल जमण के मक्खन खादो, सोच सरोड़ी तां थिंदी है, अंदरों पावे लुखो दिसे, बारों यार की हां थिंदी है, मां मुई है खाखा लुखो, ती उसकी को ना थिंदी है। तो अगे यो है बड़ी बर बड़ी सथरो डा खुरली मां, तक फिर खोरो ता खुरली मां, जेते खानो दूध ते मक्खन, ता रख पूरो का खुरली मां।
1: ताई जी ताई साहब, धारणा अदब बारे गल हुई, तुमने कितनों काम कियो और इसमें और कितनी गुंजाइश है, और वैसे ते शायर तम कड़ी चीजा की बेबसी जुड़ी है ना वह महसूस करें, ताकि नौ नौजवानों तक जुड़ा हमारा शायर था, कदीम शायरी जुड़ी हुई है, वह एक विरासत है, वह नौ नौजवानों तक पहुंचेगी ता ही उसको फायदा है।
0: जी,
1: तो मैं स्टूडियो में तशरीफ आनी, थारा बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
2: गोजरी मिजाइया का नामवर शायर चौधरी ताजदीन ताजोर नाल हमने गलबात की थी, तो यो इंटरव्यू उनको आर्काइव्स से हमने कढ़े थो। अगला प्रोग्राम हमारा एक कुल नात शरीफ है, तो सुन ले।

समीन आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे थे जाकिर हुसैन, माओवेन शायस्ता यतु। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक वानी।

मीडियम वे 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहां से गोजरी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: सामीन आदाब, 5:50 हो गए। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। गोजरी खबरनामा नाल हूं रियास अहमद बिजाड़। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत तरक्की की राह पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खेड का शोभा में सरमाकारी करण पर जोर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस ना मजीद मजबूत करण को मरकजी रेलवे वजीर ते मुतालबो। ते वादी में सैलानियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद। उन खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम सूरत हाल के बावजूद भारत एतमाद नाल तरक्की की नई मंजिल तय कर रहा है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं मीटिंग की सदारत करता नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क विकसित भारत को निशानों हासिल करने की तरफ पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मां रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पर भी जिम्मेदारियां आयद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खेड का शोभा में सरमाकारी इस शोभा का बुनियादी ढांचा ना मजबूत बनाने के नाल नाल खिलाड़ियों ना बेहतर मौका फराहम करने में मददगार साबित हो सके। श्रीनगर में अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब ना खिताब करता उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का उभरता खिलाड़ी खेड का शोभा में बेहतर कारकर्दगी को मुजाहरा करके यूटी को ना रोशन कर रहे हैं।
1: अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। उनमें से जो प्रतिभाशाली हैं उनकी आगे की यात्रा का ये पहला कदम है और ये टूर्नामेंट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मैं सभी प्लेयर से ये बात कहना चाहता हूँ ताकि भविष्य के लिए भी उनके भीतर नई संभावनाएं पैदा हो सके। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सबने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक रियासती मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिला में की जा रही तैयारियों को जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमा ने हिदायत दी कि वे यात्रा वास्ते बेहतर इंतजाम पहले ही मुकम्मल करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात और कई दूजा अहला अफसरान भी मौजूद था। वाजरे जे इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई ने शुरू होकर 28 अगस्त न मुकेगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में रेलवे का मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ना मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में रेल खिदमात ना मजबूती देने के मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वादी ना मुल्क का मुख्तलिफ हिस्सा नाल जोड़न और कनेक्टिविटी की सहूलियात में वादो करण का ताल्लुक ते एक संगे मील की हैसियत इख्तियार कर रही है। इस मौके पर वजीर आला ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस वास्ते अनंतनाग में एक स्टॉपेज कायम करने को मामलो मरकजी की नोटिस माने ताजे जनूबी कश्मीर का लोकन आराम पहुंच सके। उन्होंने मजीद क्यों जे वंदे भारत रेलगड्डी की फ्रीक्वेंसी में बदो किए जाना चाहिए।

0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जे इनकी जमात लोगों का आईनी और जमहूरी हकूक का तहफ्फुज और बहाली वास्ते मुसलसल जद्दोजहद करती रहेगी। पार्टी का सीनियर लीडर मरहूम गुलाम महीदीन शाह की बरसी का सिलसिला में छतावल श्रीनगर में एक तकरीब नाल खिताब करता उन्होंने कहा जे मरकजी सरकार ना जम्मू कश्मीर का लोगों के नाल किया गया वादा ना पूरा करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी का दूजा लीडर ने मरहूम लीडर ना खराज अकीदत पेश कियो। इस मौके पर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और माउन जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट चौधरी मोहम्मद रमजान भी मौजूद था। जमींदारों की बहबूदी का जे एंड के का मशावरती बोर्ड का एहतमाम नाल शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर का कैंप्स में आज तरक्की पसंद जमींदारों वास्ते एक दिन को तरबीती कैंप हो। इस मौके पर जमींदारों ने काश्तकारी की जदीद और साइंसी तौर तरीकों बारे जानकारी दी गई। जमींदारों ने यूनिवर्सिटी रवाना करण का मौका पर जरात वजीर जावेद अहमद डडार ने कहा जे फसल बीमो स्कीम सरकार की जेर गौर है। मीडिया नुमाइंदा नाल गल करता उन्होंने कहा
1: हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे हैं इनको जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी से इनकी जानकारी हो, लेटेस्ट जो हमारी इनोवेशंस होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशंस होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उस सारी चीजों को लेकर जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड्स में ही उस जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
0: ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकें। वादी की मशहूर झील मानसबल न तहफ्फुज देन और इसकी खूबसूरती न कायम रखने वास्ते इसकी वाटर बजटिंग करनो और झील के आसपास तमाम सरकारी इमारतों को ग्रीन ऑडिट किया जाना जरूरी समझो जा रहे हो। इस मामला पर मानसबल का किनारे डायरेक्टर न्यूज तारिक राथर नाल गल करता वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी का CEO एहसानुल हक चिश्ती ने कहो जे यो अमल साइंसी पैमाना पर अंजाम देन की जरूरत है।
2: मानसबल लेक है, बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स का सोर्स भी है। ये एक अच्छा खासा फिश का जो प्रोडक्शन है उसका भी एक सोर्स है, नदरों का भी एक सोर्स है। ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने कंसर्न एजेंसीज को कहा है कि इसकी एक वाटर बजटिंग की जाए ऑन साइंटिफिक स्केल, ताकि इससे हमें ये पता चले कि इसका इनपुट कितना है और आउटपुट कितना दे सकते हैं हम, इसकी कैरियंग कैपेसिटी क्या है, पानी कितना उठाया जा सकता है या नहीं उठा सकता, और इसकी लेवलिंग जो होगी। इसका मकसद ये है कि ये जो वेटलैंड है, ये जो लेक है, इसको सस्टेन किया जाए काफी देर तक और वाटर लेवल जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो हमने एक लीड लेते हुए ये इनिशिएट किया है कि हम अपने ऑफिसेज, अपने एसेट्स या जो दूसरे सरकारी दफातर यहाँ मानसबल के गिर्द नवा में है उनका एक ग्रीन ऑडिट किया जाए, ताकि ये देखा जाए कि कार्बन फुटप्रिंट कितना है, उसका लेवल कितना है और उसको कैसे रिड्यूस किया जाए।
0: जम्मू कश्मीर की सैल की जगह पर इन दिनों काफी रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। मुल्की और गैर मुल्की सैलानियों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की सैल पर आकर इसका कुदरती नजारा से महसूस हो रहे हैं। सियाह मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और इसका मौसम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ सैलानियों का तासरात
3: कुदरती बनाए करिश्मा है, उसे कश्मीर कहते हैं। धरती ये सहना सिखाती है, यहाँ की जो सरिता है वो बहना सिखाती है, और कश्मीर ये हमें जिंदगी जीना सिखाती है। कश्मीर की वादियों में, हवाइयों में, हर एक कोने कोने में खूबसूरती छुपी हुई है।
4: मुझे बहुत ही अच्छा लगा, माननीय मोदी जी ने संदेश दिया है कि आप अपने देश की जन्नत जो कश्मीर है, जितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, जिसमें प्राकृतिक एडवेंचर है, जो अपन विदेश में जाके देखते हैं वो अपन यहाँ लोकल देखना चाहिए।
3: मुझे 3 दिन हो गए लेकिन यहाँ पे लोगों में मैंने बहुत इंसानियत, उनका जो बोलना है, सादापन, सरलपन, ये मैंने नजर किया है।
4: बेलगाम में बहुत सुख शांति, अमन, चैन और भाईचारा है। यहाँ पे जो अपने मुस्लिम भाई भी है वो भी अपने साथ और अच्छे सहयोगी है, उनका नेचर भी अच्छा है।
0: जम्मू कश्मीर ने मुंशियात की लानत से छुटकारा दवाने वास्ते 100 दिन पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी जोरों नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुंशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मुंशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को पैगाम,
5: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट

0: फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिदत ना काबू करने वास्ते इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों का ताल्लुक थे। आर्मी गुडविल स्कूल अनंतनाग में सतवीं जमात की एक तालिबा हामिया मुख्तार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता क्यों
2: मिटाएंगे इस नासूर को जड़ से, चलो आज अहद हम दोहराए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हमारे खित्ते को तन्हाई, उदासी और तबाही की अंधेरों से निकालकर एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का अजम है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान सिर्फ एक हुकूमती मुहिम नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जानब समाजी बेदारी का सफर है। आओ सब मिलकर नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाए, हर घर में उम्मीद का दिया जलाए और अपनी वादी को अमन और सेहत का गहवारा बना दे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की तरफों जारी करदा एक इतला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का तलाड़ा स्ट्रेच पर जारी बहाली का काम के चलते यो स्ट्रेच 12 जून ते 17 जून तक रात 10 बजे ते सुबह 5 बजे तोड़ी ट्रैफिक वास्ते बंद रहगो। नोटिफिकेशन के मुताबिक यो फैसला मुसाफरों की सहूलत वास्ते लियो जा रहे है। इसके नाल ही गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मुक्यो, खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी में नशर वैगो। दियो इजाजत, रब रखो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस सी

0: 295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर शबजित 5 मिनट सपित पेश प्रोग्राम गर्मी बाई हिंदी खतरा।

0: निमंत्रण है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन बनियाल अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी अनंतनाग, जो 4 लेन पोलशरम बना रहे 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा।
1: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वोन कि खेलन हिंद शोबस में सरमाकारी हे अमे शोब बुनियादी ढांचे मजीद मजबूत बनाने सलाड़ियन बेहतर मौक़ फराहम कर मददगार सबित सपदित। श्रीनगर अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट के अख्तितामी तकरीब खिताब करान मुंतमो जम्मू कश्मीर वतलवन खिलाड़ी खेलन हिंद शोबस में बेहतर कारकरदगी हवित जम्मू कश्मीर नाव रोशन करान।
2: अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। उनमें से जो प्रतिभाशाली हैं उनकी आगे की यात्रा का ये पहला कदम है और ये टूर्नामेंट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मैं सभी प्लेयर से ये बात कहना चाहता हूँ ताकि भविष्य के लिए भी उनके भीतर नई संभावनाएं पैदा हो सके। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सबने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी।
1: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा श्रीनगर के सालाना सतही मीटिंग दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंद सिलसिले में करने इवान तैयारी हुंद मुफसल पर जायजे हतुम। तमो दियुत तमाम महकमन हदायत जे तिम करिन यात्रा जबर पठ आंद वातनावन बापत प्रथ किस्मक इंतजाम पेशगी मुकम्मल। मीटिंग में जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभा तो वारिया दोयम आला अफसर त मौजूद। तहि पाओ सत श्री अमरनाथ जी यात्रा सपद 3 जुलाई शुरू तो यह वाति 28 अगस्त अंद। बचाव वजीर ममलिकत संजय सेठन को रात लोक भवन श्रीनगर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सहित मुलाकात। जे एंड के होटलियर्स क्लब वफद त समख अम के सदर मुश्ताक चाया सिंदिस खयात समस एल जी मनोज सिन्हा। आज दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उड़ी सेक्टर समस पनन फरज अंजाम दिवान जुवन हिज कुर्बानी दिन वाले फौज के दोन बहादुर जवानन सोवर चवान विक्रम बालकृष्ण तो सैपर जाधव अर्जुन राजेंद्र खराज अकीदत अदा कोर्मुत। अकिस पैगाम मज वो तमो कौम थवि इन बहादुर जवानन हिज कुर्बानी हमेशा याद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बो तिंद गमजद अयालन तजियत तो हमदर्दी। जम्मू कश्मीर के वजीर अला उमर अब्दुल्लाहन कोर नई दिल्ली अंदर रेलवे किस मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव सत मुलाकात तो जम्मू कश्मीर में रेल खदमत जू जत दिन मुतलिक मामलन दुक दल। वजीर अला वो अत मौक पर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस हिंद मुख्तलिफ हिस्सन पान रलान तो रबत सजी हिंदन सहूलतन मज हुर कर हवाल के मील कन हैसियत अख्तियार कर। अत मौक पे वो वजीर अल जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बापत अनंतनागस मज स्टॉपेज या वनो ठहराव कायम कर मामल मरकजी वजीर सज नोटस मज युथ जनूबी हिंद लूकन राहत वाति। तमो वो मजीद जे वंदे भारत रेल गाड़ियन हज फ्रीकवेंसी या वनो तवोतुर गसे बढ़ा यु। जम्मू कश्मीर नश के आवलिन मज नबर कड़ने बापत अखत दोहन पे मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत सरगर्मी वसान जारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी तौर नशे मुखाल प्रोग्राम तो एकदाम निगरानी करान। तमो कोर हाल जम्मू कश्मीर यूटी कन तमाम जिलन मज पद यात्रा सिलसिले मुकम्मल। अभियान तहत वनिस तम वह पेशरफ्त प्रावन आम नश किस बितस खिलाफ पेश एल जी मनोज सिन्हा सुंद यह पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: समाजी सोथरस पे अत नौसूरस पे कबू प्रावन बाप दरकार इकदाम तो लूकन हजन जिम्वर हंद हवाल वो आर्मी गुड़विल स्कूल अनंतनागस मज सतम जमात हज अकि तलब इलम हामिया मुख्तारन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत्य।

0: கிராமி பேஸ் பண்ணும் ப்ரோக்ராம் போதான் ப்ரோக்ராமிக் ப்ரொடியூசர் வசீம் ஃபாரூக் வானி இஷு ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீநகர் சனிஸ் துய்மி சேலானஸ் பிரரியு
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீநகர் अपनी घड़ियां मिलाइए शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
1: शेरबीन के सामान को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मीटिंग। सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में कल मरकजी वजीर दाखिला की सदारत में अहम मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के तमाम पुलिस थानों को अब सीनियर पुलिस अफसरान की रहबरी हासिल होगी। और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आबपाशी सहूलियात का फुकदान। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
3: जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
5: तो रोका किसने है?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे?
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 9018074333।
7: 9018074333।
8: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
9: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
10: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
11: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
10: अच्छा भाभी,
11: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
10: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
12: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
1: शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं।

0: अगस्त से एक लैप्रोस्कोपिक यूनिट का बाजाबता इफ्तिताह किया, जबकि बाद में उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा जाकर 5 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑडिटोरियम हॉल का संग बुनियाद रखा। वजीर तालीम ने बाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल रक्षणा का दौरा करते हुए 1.71 लाख रुपए की लागत से नई इमारत के बुनियादी ढांचे का बाजाबता तौर पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हाई स्कूल रक्षणा के ग्राउंड में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम खत्ों की मसावी और मुतवाजन तरक्की के लिए पूरी तरह मुनज़म है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेहत की देखभाल और तालीम आवामी बहबूद के बुनियादी स्तून बने हुए और इंतजाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए अंत तक मेहनत करे कि जदीद सहूलियात यूटी के हर कोने तक पहुंचे। इस मौके पर बीरवा के एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी ने हल्के की बुनियादी तरक्याती तरजियात पर तवज्जो देने के लिए वजीर से इजहार तशक्कुर किया और आवाम को यकीन दिलाया कि जारी प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए बारीक बीनी से निगरानी की जाएगी। बाद में जरा अबला के साथ बात करते हुए वजीर सकीना मसूद यत्तू ने कहा,
1: मैं इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जो सरकार लोगों ने बनाए हैं, जिस सरकार को लोगों ने एतमाद दिया है और जिस सरकार की क़यादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार की अगर सबसे कोई प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ सेक्टर है। और हेल्थ सेक्टर में इन 16 महीनों में जो हमने कोशिश की है, जहाँ तक इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, कैथ लैब सिर्फ हमारे GMCs में हुआ करती थी या सिकिम्स में हुआ करती है, लेकिन आज जो हमारे GMCs नए बने, उनको बनाया गया था, सिर्फ बिल्डिंग को इनॉग्रेशन किया गया था, उसके बाद ना कोई क्रिएशन हुई थी, ना कोई इक्विपमेंट्स थे, कुछ भी नहीं था। तो हमारी कोशिश इस 1.5 साल में यही रही, जैसे कैथ लैब हो, MRI हो, या यहाँ पे जैसे आज ऑनरेबल MLA साहब ने कहा है और मैंने भी अपनी तकरीर में कहा है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। उसके लिए जो इक्विपमेंट आज यहाँ पे आए, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ के करीब है, जो हमने यहाँ पे पहुँचाया और जिनको हमने आज इनॉग्रेट किया, उसमें सर्जरीज हो सकती है यहाँ पे और आसान तरीके से हो सकती है। डायलिसिस भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर सेंक्शन किया हुआ है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो हमने यहाँ पर आज दिए हैं, उनका यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और उनसे लोगों की सर्जरीज में बहुत ज़्यादा आसानी हो। कोई एतराज़ नहीं है, हमारी कोशिश है इस सरकार की कि हम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी रखें, वो भी हेल्थ सेक्टर में। जहाँ तक ट्रामा हॉस्पिटल का सवाल है, नीड है यहाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हाईवे पे पड़ता है और ऑलरेडी यहाँ हमारे पास ज़मीन भी है, जहाँ पुराना ओल्ड हॉस्पिटल जो यहाँ पर था, अगर हम उसको डिसमेंटल करें और ज़मीन में नया एक हॉस्पिटल खूबसूरत बने। लेकिन मेरा इसमें सिर्फ इतना ही है, हमें सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनानी है, हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए, जो उसके लिए स्टाफ हो, जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, ताकि वाकई अगर हम ट्रामा हॉस्पिटल उसको नाम देते हैं तो वहाँ वाकई उस तरह का इलाज होना चाहिए। टीचर्स को तैनात करना, उनको रिक्रूट करना, वो आज की डेट में बंद है, रिक्रूटमेंट आज नहीं होती नहीं है। लेकिन उसके लिए रैशनलाइजेशन का जो काम था, जहाँ यहाँ किसी स्कूल में 10 टीचर चाहिए, वहाँ 20 होते थे, रैशनलाइजेशन पे ऑलरेडी काम हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई, हमने 0 से स्टार्ट किया है, टीचर अवेलेबल हो, तालीम अच्छी हो, क्योंकि जब आप स्कूल रखते हैं वहाँ पे हर फैसिलिटी होनी चाहिए और टीचर होना चाहिए जो बच्चों को अच्छी तालीम दे सके।
2: सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना यत्तू, जिन्होंने आज बीरवा हल्का इंतखाब और मुल्का इलाकों के दौरे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात की। यूनिस परी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर एमएलए पांपुर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज सब जिले अस्पताल पांपुर में 63 लाख रुपए मालियत की जदीद तिब्बी सहूलियात और आलात का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह की गई सहूलियात में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर वर्क स्टेशन, सी आर्म ऑर्थोकेबल यूनिट, लेप्रोस्कोपिक यूनिट और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर शामिल हैं, जिनसे अस्पताल की तशखीसी और जर्राही खिदमात में नुमाया बेहतरी आएगी। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने अवामी वफूद से मुलाकात भी की और उनके मसाइल और मुश्किलात सुने। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल के हल और बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पहले नायब वजीर आला मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की 44वीं बरसी के मौके पर आज सरनल अनंतनाग में मुनक्द एक तकरीब के दौरान उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर उनके फर्जंद डॉक्टर महबूब बेग, PDP लीडरान और कारकुनों ने मजार पर हाजिरी दी और वहां फातिहा खानी की और गुलपाशी की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने मरहूम की सियासी खिदमात, खुसूसन जमीन किसान की, कानून के निफाज को उनका तारीखी कारनामा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रियासती दर्जे की बहाली के साथ साथ उन आईनी जमानतों की बहाली के लिए भी मुतालबा करना चाहिए जो वापस ली गई हैं। समिन सरी गफ्फार अनंतनाग के हेटीगामा गांव में महकमे दही तरक्की ने गार्बेज डंपिंग यानी کوڑے کرکٹ کو جمع کرنے کی

0: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिसिंग के निजाम को बुनियादी सतह पर ज्यादा मौसर और मुस्तहकम बनाने की गरज से जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूनियन टेरिटरी के 257 पुलिस थानों के लिए 257 सीनियर पुलिस अफसरान की रहबरी बहम कराने को मंजूरी दी है। वाजे रहे कि यह कदम डीजीपीज और आईजीपीज की कॉन्फ्रेंस में पेश की गई तजावीज और विकसित भारत 2047 के कौमी विजन से मुताबिकत रख

0: कभी कभार एक बार ही आता है, प्रेशर बिल्कुल कम होता है, जिस वजह से घरों की अंडरग्राउंड टैंकियों में बड़ी मुश्किल से 2 या 3 बाल्टी पानी जमा हो जाता है। वहीं निजी तौर पे जिन्होंने घरों के आसपास बोरवेल खोदे हैं, उनमें भी पानी की कमी दर्ज हो रही है। बेजुबान जानवरों के लिए भी पीने का पानी नहीं मिलने से आम परेशानी पैदा हो रही है। वहीं पर रावी दरिया, उज और बनी के सेवा दरिया में पानी की सतह में भी कमी देखने को मिल रही है, जबकि रंजीत सागर डैम में बदस्तूर पानी अपनी सतह बनाए हुए रखे हैं। कठुआ में जल शक्ति महकमे को गर्मियों के दिनों में पीने के पानी की कमी की वजह से आम लोगों की नाराजगी और रोष झेलना पड़ता है। बिजली के फ्लक्चुएशन की वजह से शहर के कई हिस्सों में मुकामी आबादी ने चिंता जताई है। फ्लक्चुएशन से घरों में नस्ब फ्रिज, टीवी और एसी के ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं या सड़ रहे हैं। बावसूख जराय से मालूम हुआ है कि पावर की ओवरलोडिंग शेडिंग की वजह से बिजली की फ्लक्चुएशन हो रही है। वहीं पर सूबे जम्मू के बेशतर हिस्सों में गर्मियों से कोहराम मचा हुआ है। जम्मू, विजयपुर, सांबा के सरहदी देहात, रामगढ़ और कठुआ में मैदानी इलाकों के साथ साथ दिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 12 जून आने वाले कल के लिए महकमे मौसमियात ने पहले ही से अलर्ट जारी किया है।
1: कठुआ से रमेश मरहड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ में तैनात चौकीदारों और लंबरदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके कई माह से वाजिब अदा मुशाहरे को जल्द वागुजार किया जाए ताकि उन्हें मजीद माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दरियासना रामबन से मोहम्मद तस्कीन की तरह के मुस्तकिल मुलाजमत के मुतालबे को लेकर बानिहाल और रामबन की म्यूनिसिपल कमेटियों में काम करने वाले डेली वेजर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 2 हफ्तों से जारी है। हड़ताल के बायस बानिहाल और रामबन के मुतअद्दिद इलाकों में कूड़े करकट के ढेर जमा हो चुके हैं, जिससे आम शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की एक और इतला है कि किश्तवाड़ में दोपहर 2 बजे के बाद से आज तेज हवाएं चलने से मुतअद्दिद दरख्तों से मेवे गिर गए, जबकि शाम 4 बजे के करीब गरज चमक के साथ बारिश शुरू हुई। सरोड़ बोंजवा में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है, ताहम वाड़वन और पाडर इलाकों में ताहाल आसमान अबरालूद है और वहां आखिरी इतला मिलने तक बारिश नहीं हुई थी। दरियासना वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज सपहर से तेज आंधियां चलना शुरू हुई, जिसके नतीजे में दरख्तों से मेवाजात गिराने, मकानों की छतें उड़ने और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचने के वाकयात पेश आए। वाजिर है कि वादी में पिछले कई रोज से मुसलसल सख्त गर्मी पड़ रही थी और आज सपहर से मौसम ने जो करवट ली, इससे किसी कदर राहत महसूस हो रही है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, श्रीनगर। फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, J&K।
11: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए।

0: दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर शाम के 7:30 बजे खबरनामा हेत रऊफ अहमद गोड़ खास खास खबरन पेट अख नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन नई दिल्ली मज वजीर आजम मुलाकात। रियासती दर्ज बहाली सान जम्मू कश्मीर वाबस्त वारियन अहम मामलन आव दिन दल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन खेलन हंद शोबस मज सरमाकारी करनस पे जोर। वादी मज सैलानियन हंद भार रश। सयाहती जायन पे सैलानियन हज जान वसुद्रस। तो आलमी सुथरस पे गैर यकीनी सूरत हाल आने बावजूद भारत तरक्की हिजी वत पे ब्रोह ब्रोह पकान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वन खबर तफसील सान। वजीर आला उमर अब्दुल्ला कोर आज नई दिल्ली अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी सलाकात करी तिम जम्मू कश्मीर सबस्त वारियन अहम मामलन पे तबोदल ख्याल। इन मज खास रियासती दर्ज बहाली इकतसदी सूरत हाल तो तरक्की अमल हज रफ्तार हि मामल शामिल। वजीर आला वतलब सती भारत सरकार तरफ जम्मू कश्मीर इकतसदी तरक्की अख रफ्तार बख्शन रबत सजी मजीद मजबूत कर रोजगार मौक पैद कर बुनियादी ढांचे तोसी तो अवमी पापर जयी बापत मजीद काम करने जरूरत। उमर अब्दुल्ला कर सी कामयाब पे 10 वरी मुकम्मल करनस पे नरेंद्र मोदी वस वंज मुबारक। वजीर आला उमर अब्दुल्ला कोर नई दिल्ली अंदर रेलवे किस मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव सलाकात। जम्मू कश्मीर मज रेल खदमत जू जत दिन मुतलिक मुख्तलिफ मामलन आव दल दिन। अत मौक पे उन वजीर आला जम श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बापत अनंत नागस मज स्टॉपेज या वनो ठहराव कायम कर मामल मरकजी वजीर सज नोटस मज युथ जनूबी कशीर हिंदे लूकन राहत वाति। तमो वो वजीर जे वंदे भारत रेल गाड़ियन हज फ्रीक्वेंसी या जे तवोतर ग बढ़ाने युन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो खेलन हंद शोबस मज सरमाकारी हे अमि शोबक बुनियादी ढांचे मजबूत बनाने सिलाड़ियन बेहतर मौक फराहम कर मददगार सबित सपदित। श्रीनगर अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट इख्तितामी तकरीबी खिताब करान वो तमो जम्मू कश्मीर वतलवन खिलाड़ी खेलन हंद शोबस मज बेहतर कारकरदगी हवित जम्मू कश्मीर नाव रोशन करान। सेहत तबी तलीमी हज वजीर सकीना इतून बड़गाम जिले किस बेरू हल्कस मज बुनियादी ढांचक कैंसन प्रोजेक्टन शुरुआत करत सेहत तलीमी हंदिस शोबस अख नव जहद दिसम। तमो थव सब डिस्ट्रिक अस्पताल मागमा अके जदीद तरीन लेप्रोस्कोपी यूनिट दस तुलना अलाव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागमा अके इंतजामी ब्लॉक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरू ऑडिटोरियम हॉल तो गवर्नमेंट हाई स्कूल रटसुन बीरू अके नव एम आर एस हज तनकन। कोमलिन हज पापर जयी बापत सबूद जे एंड के मशावरती बोर्ड के अहतमाम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर किस कैंपस मज आज तरक्की पसंद कोमलिन हंद बापत अक दुख तरबती कैंप। अत मौक पे आई कोमलिन काश्तकारी हंद जदी तो नवीन तौर तरीकन हंदिस बारस मज जानकारी दिन। कोमिल जरा यूनिवर्सिटी को रवाना करने किस मौक पे वोन जरात वजीर जावेद अहमद डारन ज फसल बीमा स्कीम सरकार जैर गौर। वादी कशीर हिंदिस मशहूर सर मानसबल सरस रश कर यह वन वाले हंद बापत मजीद मर मुंद बनाने बापत अमिश वाटर बजटिंग कर सरस संद पम तमाम सरकारी इमारतन हंद ग्रीन ऑडिट कर जरूरी गुजरने यहां। अत मामलस पे मानसबल सर किस बठिस पे सबरन हंद शोब के सरबराह तारिक राथर सत कान वो वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी हंद सीईओ एहसानुल हक चिस्तियन जे अमल साइंसी बुनियाद पे अंजाम दिन इन जरूरत।
2: मानसबल लेक है, बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स का सोर्स भी है। ये एक अच्छा खासा फिश का जो प्रोडक्शन है उसका भी एक सोर्स है, नदरू का भी एक सोर्स है। ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने कंसर्न एजेंसीज को कहा है कि इसकी एक वाटर बजटिंग की जाए ऑन साइंटिफिक स्केल, ताकि इससे हमें ये पता चले कि इसका इनपुट कितना है और आउटपुट कितना दे सकते हैं हम, इसकी कैरियंग कैपेसिटी क्या है, पानी कितना उठाया जा सकता है या नहीं उठा सकता और इसकी लेवलिंग जो होगी। इसका मकसद ये है कि ये जो वेटलैंड है, ये जो लेक है, इसको सस्टेन किया जाए काफी देर तक और वाटर लेवल जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो हमने एक लीड लेते हुए ये इनिशिएट किया है कि हम अपने ऑफिसेज, अपने एसेट्स या जो दूसरे सरकारी दफातर यहाँ मानसबल के गिर्द नवा में है उनका एक

0: और साइंसी तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। किसानों को यूनिवर्सिटी रवाना करने के मौके पर ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा कि फसल बीमा स्कीम सरकार के ज़ेर गौर है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हमारे हैं, इनको जदीद तरीन जो है टेक्नोलॉजी से इनकी जानकारी हो, लेटेस्ट जो हमारी इनोवेशन होती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, इनको भी उसकी जानकारी मिले, उसके लिए इनके प्रोग्राम्स होते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी नई नई लेटेस्ट इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, उस सारी चीजों को लेकर जानकारी लेंगे ताकि अपनी फील्ड में ही उस जानकारी को कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
0: इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज माइक्रोप्लास्टिक्स इन फूड एंड एनवायरनमेंट के मौजू पर एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में एकेडमिया, सनत और तहकीकी इदारों से ताल्लुक रखने वाले माहरीन ने अवामी सेहत, माहौलियात की देरपाइयत और गजाई सलामती पर माइक्रो प्लास्टिक्स के मुज़िर असरात के मौजू पर अपने ख्याल का इजहार किया। कलीदी खुतबा एप्लीकेशन एक्सपर्ट सौरभ जैन ने दिया। वादी की मशहूर झील जीनी मानसबल को तहफ्फुज़ देने और इसकी देरपाइयत को लंबे अरसे तक कायम रखने के लिए इसकी वाटर बजटिंग करना और झील के इर्द गिर्द कायम तमाम सरकारी इमारतों का ग्रीन ऑडिट किया जाना जरूरी समझा जा रहा है। इस मामले पर जीनी मानसबल के किनारे डायरेक्टर न्यूज तारिक राथर से बात करते हुए वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ एहसानुल हक चिश्ती ने कहा कि यह अमल साइंसी पैमाने पर अंजाम देने की जरूरत है।
2: मानसबल लेक है, बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स का सोर्स भी है। ये एक अच्छा खासा फिश का जो प्रोडक्शन है उसका भी एक सोर्स है, नदरों का भी एक सोर्स है। ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने कंसर्न एजेंसीज को कहा है कि इसकी एक वाटर बजटिंग की जाए ऑन साइंटिफिक स्केल, ताकि इससे हमें ये पता चले कि इसका इनपुट कितना है और आउटपुट कितना दे सकते हैं हम, इसकी कैरियंग कैपेसिटी क्या है, पानी कितना उठाया जा सकता है या नहीं उठा सकता, और इसकी लेवलिंग जो होगी। इसका मकसद ये है कि ये जो वेटलैंड है, ये जो लेक है, इसको सस्टेन किया जाए काफी देर तक और वाटर लेवल जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो हमने एक लीड लेते हुए ये इनिशिएट किया है कि हम अपने ऑफिसेज, अपने एसेट्स या जो दूसरे सरकारी दफातर यहाँ मानसबल के गिर्द नवा में है, उनका एक ग्रीन ऑडिट किया जाए ताकि ये देखा जाए कि कार्बन फुटप्रिंट कितना है, उसका लेवल कितना है और उसको कैसे रिड्यूस किया जाए।
0: जम्मू में वेस्ट वंडर पार्क पर शद्दोमद से काम जारी है और इस पार्क को श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज से पहले खोला जाएगा। ये पार्क जम्मू के भगवती नगर इलाके में तवी दरिया के किनारे पर तकरीबन 40 कनाल जमीन के रकबे पर अमरनाथ बेस कैंप के नजदीक कायम की जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में तैयार किया गया 40 फुट ऊंचा मुजस्मा इत्तेहाद इस पार्क की खास कशिश है। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अमलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 11 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जा रही है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरतहाल और गैर मुस्तहकम सूरतहाल के बावजूद भारत एतमाद के साथ तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं मीटिंग की सदारत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क विकसित भारत का निशाना हासिल करने की जानिब पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर भी नाजुक जिम्मेदारियां आयद होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात लोगों के आईनी और जमहूरी हकों के तहफ्फुज़ और बहाली के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करती रहेगी। पार्टी के सीनियर लीडर मरहूम गुलाम महीउद्दीन शाह की बरसी के सिलसिले में छतबल श्रीनगर में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर लीडरों ने मरहूम लीडर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और मुआविन जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट चौधरी मोहम्मद रमजान भी मौजूद थे। प्रदेश बीजेपी सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार ने जवाबदेही और खिदमत से हुक्मरानी की एक नई इस्तिलाह मुतारिफ कराई है। वो बावे वाली माता मंदिर के नजदीक एक नुमाइश में बोल रहे थे, जहां मोदी सरकार के 12 साल तरक्याती सफर को उजागर किया गया। पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने एक साफ सुथरे और बाजमीर माशरे की तश्कील के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। रामबन में इलाके के अहम शहरियों से मुलाकात के अलावा उन्होंने वहां सफाई सुथराई की एक मुहिम की क्यादत भी की। बीजेपी के मीडिया इंचार्ज डॉ

0: है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान सिर्फ एक हुकूमती मुहिम नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब समाजी बेदारी का सफर है। आओ सब मिलकर नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाए, हर घर में उम्मीद का दिया जलाए और अपनी वादी को अमन और सेहत का गहवारा बना दे।
1: इहाते वकार छानपोरा श्रीनगर में आज मुनशियात के मुजिर असरात के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर इदारे के चेयरमैन अब्दुल गनी परे के अलावा दूरदर्शन के साबिक डायरेक्टर शब्बीर मुजाहिद, आकाशवाणी श्रीनगर की साबिक प्रोग्राम सरबराह रुखसाना जब्बीन और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। उन्होंने मुनशियात के खिलाफ सीनियर शहरियों का अहम रोल उजागर किया। मुकर्ररीन ने कश्मीर वादी में सरसरी तखमीनों के मुताबिक 15 लाख नौजवानों के इस लत में पड़े होने पर तशवीश का इजहार किया। अनंतनाग पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अब तक 156 स्मगलरों को गिरफ्तार करके 172 मामला दर्ज कर लिए हैं। जिले में 16 करोड़ रुपए मालियत के असासों को भी कार्रवाइयों के तहत लाया गया है। इस दौरान पुलवामा पुलिस ने आज 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनुष्यात की कुछ मकदार बरामद कर ली। दरियासना, गांधरबल और सोपोर इलाकों में पुलिस ने भंग की बड़ी मकदार को तबाह किया है। और अब रेल खिदमात से मुतलिक ये खबर। शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों के मौजूदा रश को देखते हुए 3 रेलगाड़ियों में 3rd AC का एक इजाफी कोच जोड़ने का फैसला किया है, जिससे ज्यादा मुसाफिरों को कंफर्म सीट मिलने का ज्यादा इम्कान रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से जारी करदा एक इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के नचलाना पट्टी पर जारी बहाली के काम के चलते ये स्ट्रेच 12 जून से 17 जून तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहा करेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड़रू के मुताबिक ये फैसला मुसाफिरों की सहूलत के लिए लिया गया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए नेशनल हाईवे के SSP ट्रैफिक राजा आदिल हमीद गनाई ने कहा,
2: कम्यूटर्स की जो है उनकी सेफ्टी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DC रामबन से 3 दिन का जो है हल्टेज लिया है, ताकि नाचलाना और हिंगनी के बीच का जो रोड स्ट्रेच है, ये क्रिटिकल बड़ा जो स्ट्रेच है, इसका जो है रिपेयर और मैकेडमाइजेशन किया जाए। इसके चलते चलते जो है इन 3 दिनों में 12 जून, 14 जून और 16 जून रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है किसी भी किस्म की गाड़ी को नवीब टनल और चेन्नई नासिक टनल के बीच में जो है टनल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
1: मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5°C जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5°C रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.8°C जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 30.1°C रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
3: समईन आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं शबीर उज़्ज़मा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में 12 साल मुकम्मल करके एक तारीख रकम की है। वो आज़ाद भारत के पहले ऐसे वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिन्होंने इतना लंबा अरसा इस ओहदे पर गुजारा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम इंतखाबात में एक बेमिसाल जीत हासिल करके उसी साल 26 मई को पहली बार वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा संभाला और बाद अज़ां 2019 में दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार जीत हासिल करके मुल्क की कमान अपने हाथों में संभाली। उनकी इस पायदर पर जीत के पीछे मुहरिकात में उनकी मुल्क व कौम की खुशहाली की उनकी दिन रात अनथक मेहनत कार फरमा है, जिसकी बदौलत उन्होंने आम लोगों खासकर गरीबों के दिल जीत लिए। उन्होंने बेशुमार ऐसी फलाही स्कीमों को मुतारिफ कराया जिनकी बदौलत अवाम के दिन बदल गए और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के काबिल हुए। बदले में लोगों ने भी उनको वोट देकर हक अदाई का फर्ज निभाया। अवाम के लिए उनकी तरफ से मुतारिफ करदा स्कीमों में लोगों के लिए पक्के घर, बिजली की सहूलत, साफ पानी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बुनियादी ढांचे की तामीर वगैरह शामिल है। 2019 में कोविड बीमारी के वक्त उन्होंने तमाम बाशिंदों के लिए मुफ्त राशन का ऐलान किया और तब से लेकर आज तक मुल्क के 80 करोड़ अवाम मुफ्त राशन हासिल कर रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने PM किसान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीमें میں متعارف کرائیں۔ جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے، وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی یہاں کی تعمیر و ترقی ان کی اولین ترجیح

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सब का साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नष्ट होता है।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। सामिन, अफगानिस्तान में बढ़ती गुर्बत और तालिबान की जानिब से ख्वातीन के हुकूक पर सख्त कदकनों के सबब घरेलू तशद्दुद में इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ख्वातीन के लिए इससे बचना और इसे रिपोर्ट करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान रोज बरोज संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके असरात पूरे मुआशरे पर गहरे वबा की शक्ल में सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान की तकरीबन निसफ आबादी इस वक्त इंसानी इमदाद पर इनसार करने पर मजबूर है। बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोजगारी और रोजमर्रा जिंदगी के ढांचे के बिखरने ने खानदानों को बका की मुसलसल जदोजहद में धकेल दिया है। जहां घरेलू सतह पर इनसार मजीद बढ़ गया है, खसूसन ख्वातीन के लिए, साल 2021 में इक्तदार में वापसी के बाद तालिबान हुकूमत की जानिब से आयद वसी पाबंदियों ने ख्वातीन के लिए आवामी जिंदगी में मौके को मजीद महदूद कर दिया है, जिसके बाइस उन्हें मुलाजमत, तालीम और नकलो हरकत तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। सामिन, ये तमाम अवामिल मिलकर ख्वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद में इजाफे का सबब बन रहे हैं, जबकि इससे बच निकलना और इसकी रिपोर्टिंग भी पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो गई है। नतीजतन ऐसे वाक़ियात को अब निस्बतन आसानी से छुपाया जा सकता है। ख्वातीन के हुकूक के कारकुनान और मकामी सहाफ़ी अफगानिस्तान में एक वाजिया रुझान की निशानदेही कर रहे हैं। माशी मजबूरी, जबरी और कम उम्री की शादियों में इजाफा कर रही है, जिससे ख्वातीन का शौहरों या ससुराल पर इनसार बढ़ जाता है और इस तरह घरेलू तशद्दुद कम ही मंजर आम पर आ जाता है। माहिरीन के मुताबिक जब हिफाजती निज़ाम नाकाम हो जाते हैं या जब मुतासरीन को अदालतों के ज़रिए कोई काबिल अमल रास्ता नज़र नहीं आता तो तशद्दुद बाज़ औकात जानलेवा सूरत इख्तियार कर सकता है। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे गौर में पेश आने वाला एक वाक़ा इस तलख हकीकत की अक्कासी करता है। फरजाना नामी 18 साल की उम्र में सूबे गौर के ज़िला पसाबंद में हलाक हो गई थी। फरजाना के मुआयने में तशद्दुद और मारपीट के वाज़िया निशानात मिले, जिसे जाहिर होता है कि फरजाना को कत्ल किया गया। माहिरीन के मुताबिक अगर तशद्दुद के वाक़या सामने आ भी जाएं, तब भी ये शाज़ो नादिर ही वहाँ सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह तशद्दुद के वाक़यात पर रिपोर्टिंग पर पाबंदियाँ मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। मीडिया पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और कोई भी इन मामलात पर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता। समय अफगानिस्तान में सामाजिक दबाव ज़्यादातर खानदानों के लिए खौफ का सबब होता है। बदनामी या इंतकामी कार्रवाई के डर से मुतासर ख़ानदान शिकायत दर्ज कराने से गुरेज करते हैं। हत्ता कि जब शिकायत दर्ज भी कराई जाए तो तहकीकात अक्सर तातुल का शिकार हो जाती है। हुकूक इंसानी के लिए सरगर्म ग्रुपों के मुताबिक तालिबान के ज़ैर निगरानी कानूनी ढांचा एक बुनियादी मसला बनता जा रहा है। अफगान इंसानी हकूक की तंजीम रवादारी ने उस वक्त शदीद तशवीश का इजहार किया जब तालिबान के सरबरा के दस्तखतों से जारी करदा फौजदारी तरीक़ेकार से मुतलिक एक दस्तावेज़ अफगानिस्तान भर की सूबाई

आकाशवाणी के श्रीनगर के स्टेशन से आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। सामिन, पाकिस्तान के जैर कब्जा कश्मीर में पुलिस और एक कलदम ग्रुप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान के दरमियान होने वाली झड़पों में कम अज कम 11 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ज्वाइंट इलेक्शन कमेटी के हामियों और पुलिस के दरमियान ये झड़पें उस वक्त हुई जब तंजीम ने हुकूमती पाबंदियों के बावजूद अपने एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार और एक राहगीर उस वक्त हलाक हो गए जब शरपसंदों ने गोलियां चलाई। इसके जवाब में वहां कानून नाफिज करने वालों ने फायरिंग की जिसमें 6 मुजाहरीन जाम बहक हो गए। रिपोर्ट के

कश्मीर में पुलिस और एक कलदम ग्रुप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान के दरमियान होने वाली झड़पों में कम से कम 11 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। जॉइंट इलेक्शन कमेटी के हामियों और पुलिस के दरमियान ये झड़पें उस वक्त हुई जब तंजीम ने हुकूमती पाबंदियों के बावजूद अपने एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार और एक राहगीर उस वक्त हलाक हो गए जब शरपसंदों ने गोलियां चलाई। इसके जवाब में वहां कानून नाफिज करने वालों ने फायरिंग की जिसमें 6 मुजाहरीन जाम बहक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक जॉइंट इलेक्शन कमेटी एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक है जो माशी और इंतजामी असलाहत का मुतालबा कर रही है। मकामी हुकूमत ने वहाँ चंद रोज़ कबल इंसदादे दहशतगर्दी के कवानीन के तहत इस तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी थी। गुज़श्ता हफ्ते जॉइंट अवामी इलेक्शन कमेटी के मरकजी दफ्तर को पुलिस ने सील कर दिया था, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के सबसे बड़े शहर मुजफ्फर आबाद में बड़े अवामी इजदामात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कलदम करार दी गई जॉइंट इलेक्शन कमेटी के अरकान ने तंजीम को दहशतगर्द ग्रुप करार देने के हुकूमती फैसले को जुल्म व जबर करार दिया है। तंजीम का मौकिफ है कि वो आवाम के जायज़ माशी और सियासी हकूक के लिए पुरमन जदोजहद कर रही है। उधर गुज़श्ता 70 साल से सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला के आवाम को इस किस्म के नाइंसाफियों, नाहमवारियों और महरूमियों का सामना है। कौमी भाईचारे की मुकद्दस कबा में मलबूस मरकजी और सूबाई हुकूमतें इस इलाके के आवाम को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। जनूबी अजला के आवाम को मुसलसल पसमानदगी में रखा गया है, उनके हकूक को पामाल किया जा रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी के नशे में नाअहल हुक्मरान शुमाली अजला की तरक्की और खुशहाली पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, जबकि जनूबी अजला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस इलाके की नाआकिबत अंदेश सियासी क़यादत जो अमूमी तौर पर मजहबी पेशवाओं और रिवायती जागीरदारों के हाथों में हैं, चुप्पी साध लिए तमाशा देख रहे हैं। वहाँ की हुकूमत से सूबे के इज्तिमाई हकूक़ के नाम पर वसाइल लिए जा रहे हैं और चंद मखसूस अजला पर बेदरी खर्च किए जा रहे हैं। असर हाजिर में सी पैक के तरक्याती मंसूबों के हवाले से आलमी और इलाकाई सतह पर तामीर नौ का वसी तर इनकलाबी अमल चलाया जा रहा है। शाहराओं, इकतसादी राहदारियों, तरक्याती मंसूबों और तजारती मंडियों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन जनूबी अजला के साथ तारीखी बेइंसाफी होती हुई नज़र आ रही है। अंधी सियासत की जबर और किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि सूबे में बनने वाले 10 इक्तिसादी जोन से एक भी जनूबी अजला को नहीं मिल सका। सितम पर सितम देखिए कि वस्त एशिया के साथ तिजारत के लिए दरा गोमल, दरा टोपी और दरा करम के वसीओ अरीज शहराओं के इम्कानात को नज़रअंदाज करते हुए दरा खैबर के तंग और तवील तरीन रास्ते पर इक्तसादी रहदारी बनाई जा रही है। वसाइल की तकसीम और बंदरबांट का मौजूदा अंदाज शायद पश्तून रिवायत की गमाजी करता हुआ नज़र आता है, जिसमें बेइंसाफी, जबर और सीनाजोरी की रिवायत वाजह तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन ये अंदाज किसी भी हवाले से महज़्ज़िब दुनिया और शाइस्ता अकवाम के लिए काबिले कबूल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमतें और गालिब पख्तून भाई क्यों नहीं देखते कि इस्तेहसाल और बेइंसाफी की फिजा में आवामी सतह पर दूरियों और नफरतों को मजीद फरोग मिल रहा है। सामईन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आइए प्रोग्राम के आखिर पर सुनते हैं एक और फिल्मी नगमा।

0: स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस जो रहते हैं जब भी जरूरत पड़ती है, या इसी तरह सीस्मिक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस, ये क्या?
1: बेसिकली स्नो क्लियरेंस जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आती है कि यहाँ पे तो स्नोबोर्न एरियाज है, जम्मू कश्मीर में बर्फ से ही हमें तो इसी से वी आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ स्नो,
0: लेकिन हमारा सर्वाइवल
1: इसी से है, लिंकड है। लेकिन जब ये बर्फ पड़ती है कभी कभार हमें इसका अच्छा भी नहीं लगता है कि
0: अनयूजुअल
1: इसने रोड ब्लॉक किया, तो उस वक्त यहाँ पे जो मंडेट है वो आरएनबी का एक विंग है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको आज बोलते हैं मैकेनिकल हाउसफुल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उनका पूरा कंट्रोल रूम हर जगह होता है, हर तहसील लेवल पे उनकी मशीनरी ऑलरेडी होती है, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखने पड़ी रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से हम कहें कि स्नो की वजह से लोगों को इतनी पब्लिक इनकन्वीनियंस हुई। लेकिन अब लोगों को भी साइमल्टेनियसली ये याद रखना है कि यूरोपियन कंट्री में भी जब स्नो पड़ती है इट टेक्स सम टाइम टू रिस्पॉन्स, बिकॉज अल्टीमेटली मशीन आर रन बाय इंजीनियर्स, ह्यूमन
0: इंटरवेंशन इज
1: ऑपरेटर जो हमारे ह्यूमन हैं। तो लेकिन माशाल्लाह गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट की पैसे की वजह से वहां पे बहुत एडवांस्ड मशीनरी लाई गई है।
0: अच्छा,
1: हाँ, जर्मन टेक्नोलॉजी लाई है, यूरोप की मशीनरी जो यूरोप में चलती है, स्नो कटर्स,
0: बिल्कुल
1: बड़े बड़े स्नो ब्लोअर्स लाए गए हैं, चाहे वो मगरोड हो, मारवन हो, आज वो कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी बड़ी इंप्रूवमेंट है।
0: ये
1: भी
0: तो फिरदौस साहब, तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी हो रही हैं, दोज आर बीइंग यू नो पुट इन प्लेस, कि जिससे आम लोग, जाहिर है उतने इन्फॉर्मेशन नहीं है, उतना इल्म नहीं है, लेकिन आपकी जो बात हम अभी सुन रहे हैं इससे यही है कि सरकार बहुत कुछ इनपुट दे रही है।
1: एग्जैक्टली तारिक साहब, जैसे जब पुराने जमाने में बर्फ पड़ रही थी तो दो तीन दिन के बाद हम घर से निकल रहे थे, जो हम सुन रहे हैं अपने एंसेस्टर्स से, जो हम
0: हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताया करते थे,
1: चार पांच दिन,
0: पांच पांच छह छह फुट होता था।
1: आज बंदा चाहता है कि स्नो हो और मैं हूं टूरिस्ट स्पॉट पे होना चाहे, जैसे गुलमर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टूरिस्ट,
0: सोनमर्ग है, पहलगाम,
1: गुलमर्ग में यही डिपार्टमेंट, यही इंजीनियर, यही मशीन कंटिन्यू रखते हैं 24/7 ड्यूरिंग स्नो रोड को ओपन, और मैंडेटरी रखना है क्योंकि टूरिस्ट का रश उसी वक्त होता है और उसी वक्त ज्यादा सिकड़िंग के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं,
0: exactly.
1: और रोड जैमिंग के चांसेस होते हैं। लेकिन इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द इंजीनियर्स, उनका मंडेट, उनको सैलरी भी मिल रही है, लेकिन सल्यूट भी करते हैं कि दे आर डूइंग दिस वर्क।
0: मुझे लगता है लोगों को यह समझनी चाहिए बात कि ये जो आपने कहा कि वो रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम आ गया है, बहुत रिड्यूस हो गया है, और बहुत कुछ काम हो रहा है ग्राउंड पे जो बजाहिर अगर हमें घर में बैठ के नहीं पता चलता, लेकिन वट एवर इज यू नो, जैसे आपने कहा रोड्स खुलते हैं जल्दी, हम ये इससे फटाफट कहीं वाटर लॉगिंग हो, कहीं और चीजें हो, तो इसमें मशीनरी लगा, मशीनरी और इन्वॉल्वमेंट, सो उसमें उसी वक्त देखा जाता है कि भाई लोगों को किस तरह की सहूलत जो है, राहत जो है वो मिलनी चाहिए। सर, सीस्मिक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन की मैंने बात की,
1: इसका आज पर यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट का है, यही जो अभी आप कह रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे ये कि सीस्मिक जोन 6 में जम्मू कश्मीर को डाला गया।
0: ओके, इसका थोड़ा सा बताएंगे हमारे लिसनर्स को,
1: वेरी हाई रिस्क की अर्थ के चांसेस यहाँ पे,
0: वेरी
1: हाई। तो इस मामले में इंजीनियर ने रोल अदा किया कि जनाब बिल्डिंग जब बनाते हो अब आप ऐसा बनाओ जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो।
0: अच्छा,
1: इसमें जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं सिविल के, बाकी वो आजकल लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में बहुत प्रोग्राम किए कि हम कैसे सेफ डिजाइन बाय सेफ एंड स्मार्ट। हम मकान डालते थे ऐसे ही बिना पूछे कंसल्टेंट की, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अर्थक्वेक कल यही मकान, इंसान भूचाल से नहीं मरता, इंसान मरता है द मटेरियल जो उसके ऊपर गिरता है बिकॉज ऑफ भूचाल। तो उसमें बिल्डिंग का सबसे ज्यादा रोल है। तो इस बिल्डिंग को हम सेफ बनाने की कोशिश करते हैं और उस डिजाइन में उसको सिस्मिक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जहां पे हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के, हम कैसे इसको रेजिस्ट बनाए, अर्थक्वेक रेजिस्ट बनाए।
0: तो सर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में जैसे हम अपने रिहायशी मकान है, रेजिडेंशियल हाउसेस हैं, तो इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमें स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हर जगह हमें निकलना है, इधर रोड्स हैं, तो इनकी तरफ किस तरह का फोकस किया जा रहा है, ये जो सिस्मिक रेजिस्टेंट आपने कंस्ट्रक्शन की बात की?
1: हमारे इंजीनियरिंग में होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे आप जो इफेक्ट करता है वो उसमें एक मेजर फैक्टर ही भी है इन द कंस्ट्रक्शन वर्क्स, कि हम कैसे बनाए इसको अर्थक्वेक रेजिस्ट, ताकि ये कल भूचाल से हमारी जानलेवा एक हथियार न बन जाए। अगर ये आज हमें शेल्टर दे रहा है, कल हमें मरने का वहां,
0: तो हमारी कोशिश रहती है।
1: इंजीनियर्स आर वर्किंग इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट पीपल दे आर बीइंग आस्क्ड अबाउट दिस, कि आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, आरएनबी कर रहा है, लोगों को अगर कहीं पे किसी को चाहे वो जा सकता है अपने कंसर्न एडब्ल्यू को, उनको शायद ये पता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है। जैसे डॉक्टर का कहीं क्लिनिक चल रहा है, हमारे एडब्ल्यू जहां है वो उनसे टेक्निकली क्या फीजिबल है रिगार्डिंग कनाल, रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन, रिगार्डिंग हाउस कंस्ट्रक्शन,
0: इस बारे में हम बाद में थोड़ा सा आफ्टर लेटर पार्ट इन द प्रोग्राम। तो सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई, जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इंजीनियरिंग फोरम है जम्मू एंड कश्मीर में भी, प्रमोशन जो है गवर्नमेंट का यानी फोकस है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है।

0: के लिए यूएनए के स्लोगन है कि आप डेवलपमेंट को पीछे नहीं छोड़, डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन जब हमने पिछला दौर देखा कि हमने डेवलपमेंट की एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, हमने रोड्स बनाए हमने लेकिन फॉरेस्टर्स को कट किया, वी हैव डन एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ द
1: फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन की और हमने रोड बनाए।
0: तो इसी तरह हमने रेलवे ट्रैक्स बनाए तो हमने नेचर को डिस्टर्ब किया, हमने हाईवेज बनाए तो हमने बड़े बड़े पहाड़ों को जो बड़ी अच्छी तरह एज पर हाइड्रोलॉजिस्ट जम लगे थे, कंक्रीटिंग हुई थी उनकी, तो हमने उनको डिस्टर्ब किया, उनकी इनस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने वापस हमें बैकफायर किया और जिसकी वजह से हम बहुत तंग आ गए। तो अल्टीमेटली यूएनओ ने ही गोल बनाया कि जनाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दीजिए, आप डेवलपमेंट भी करो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट।
1: ओके,
0: क्योंकि हमारे हालात बहुत खराब हो रहे हैं
1: जी,
0: हम गाड़ियां बना रहे हैं, हम ऐसे तेल इस्तेमाल करें, ये ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही काम है कि जिससे एनवायरमेंट ना पोल्यूशन हो, जिससे कल हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाए। जैसे दिल्ली का आपने हाल देखा, सीएनजी यूज करने से हम बहुत इंप्रूवमेंट आ
1: रहा है, क्वालिटी खराब
0: हो रही है। इसी तरह से हर मामले में इन्होंने ये गोल ही बनाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, हम एनवायरमेंट को डिस्टर्ब मिनिमम करेंगे।
1: वही सर आपसे पूछ रहा हूँ कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का आम लोगों के लिए क्या कहेंगे?
0: ग्रीन टेक्नोलॉजीज का सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे
1: जी,
0: तो घर पे कोल शोल बाकी तेल जला के, लेकिन आज हमारे पास जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास सोलर पैनल्स हैं। हम किसी वाटर पंप को चलाने के लिए बागों में इस्तेमाल करते थे फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का, वो तो पोल्यूशन छोड़ता था। आज हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, सोलर पंप्स हैं रादर इन मैकेनिकल, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो
1: जी।
0: बिल्डिंग्स में हम इतना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे कि हम लकड़ियों को झंगनों को काट काट के, आज आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इतने अच्छे मटेरियल हैं जो लाइट इन वेट भी हैं, एस्थेटिक भी हैं और जो नहीं एनवायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन ऑल सेक्टर्स वी थिंक ऑफ ग्रीन मीन्स वी से नो टू पोल्यूशन, वी से टू नो द ऑरिजिन ऑफ द पोल्यूशन, वी से नो टू द डिग्रेडिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो उनको हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज कहते हैं, यूज करते हैं।
1: तो इंजीनियर साहब क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए, हम सबको समझनी चाहिए कि हमें जो भी हमें काम करने हैं, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आपने बात की, हमें रोजमर्रा की जिंदगी गुजारनी है, हमें तरक्की भी करनी है, हमें सारी सहूलियात चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, तो क्या हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन इनपुट जो हमें आप जैसे आपने एक कंसेप्ट बताया, ये एक कंसेप्ट है ग्रीन, तो इसके बारे में लोग किस तरह से अवेयर किए जाने चाहिए या लोग किस तरह से समझने चाहिए, कहां पे ये इन्फॉर्मेशन मिले, कहां पे अवेयरनेस आ जाए?
0: जो भी चाहे आपके थ्रू मीडिया थ्रू प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चाहे लिटरेचर आ रहा है, चाहे डिपार्टमेंट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रूरल एरियाज में है जहां पे बीडीओ साहब होते हैं, इनके पास ये स्कीमें पहुंचती हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में। द पीपल शुड गो देयर, कंसल्ट देम। सपोज हॉर्टिकल्चर में आ जा रहे हैं, सोलर पंप्स आ रहे हैं, इनमें कनाल्स बनाने में आ रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजीज की कैसे हम मिनिमम इरोजन करें सॉइल का। तो इसी तरह से अर्बन में भी, अर्बन में जैसे हमारे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पूरी अर्बन प्लानिंग पे बहुत जोर दिया जाता है, जो भी हमारे टाउन प्लानर्स हैं उनको कंसल्ट किया जाए कि हम कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज करें और हम इस एनवायरमेंट को भी बचाएं, हम अपनी इस खूबसूरत कश्मीर को भी बचाएं।
1: तो सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का रोल रहता है इंजीनियर और प्रोफेशनल बॉडीज का?
0: हमने जब आपस में कॉन्टैक्ट किया तो हमने डिजिटल इक्विपमेंट सीख किया कि तारिक साहब हम आज मिल रहे हैं सपोज
1: जी जी,
0: तो आज डिजिटल दुनिया का इतना रोल हमारे घरों में भी है, हमारे ऑफिस में भी है, हमारी पब्लिक सर्विस में भी है। अगर ग्रीवेंस भी करनी है वो भी डिजिटल ही करनी है, अगर ग्रीवेंस को एड्रेस भी करना है वापस रिपोर्ट करना है वो भी है, यानी डिजिटल का बहुत रोल है। फोनों का रोल, स्मार्टफोन ने इतनी जिंदगी हमें हमारी इतना रोल अदा किया, तो इसके ऊपर हम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में या डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या हम कोशिश करते हैं कि इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट आ जाए। जैसे वर्ल्ड टेलीकॉम डे रिसेंटली था 17 मई को, तो उस पर भी जोर दिया गया कि हमें ये पूरा यूज कर रहे हैं बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। यहां पर भी आते हैं यही कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन
1: दूस एंड डोंट्स
0: रूल्स आर देयर, तो इस पर भी जोर दिया जाता है। आज डिजिटल में हर जगह हर डिपार्टमेंट चाहता है कि नए नए सॉफ्टवेयर आए ताकि ईज हो जाए वर्क में।
1: इंजीनियर फिरदौस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया जनाब।
1: समय इसके साथ ही इस खसूसी प्रोग्राम के दूसरे शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। अगले शुमारे में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
2: मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं।

0: ते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit will provide an opportunity.
3: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
2: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
4: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
6: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
5: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
7: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी श्रीनगर, समय मोहतरम 9:00 बजे।

मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समय रात के 9:15 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है।
1: खबरों के साथ मैं शमीम अहमद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों, बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलयाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैनुफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोज़गार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नज़रियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुवत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैनुफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए, ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यू की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया, जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत

0: जिंदगी बदलो।
1: अच्छा,
0: मैं बाशो कि कुछ था नफर आव इश में वनान अल्लाह तो बिर रब को
1: बुनियादी कथस यही दरअसल।
0: बेसिकली योस चीज सिस्टमस चेंज करे युस वजूद उस इंसान से दिस हलाए भी सुच अल्लाह तो बिर रब को
1: तो गो आलम सब इश तुहंद मर्शिद वनव
0: बिल्कुल
1: फकीर वनव
0: सोरे अज ब्रे मेरा ताज है
1: ते पद गई ती ब्रह्म पकान चूंकि इजन ये सफर छु इश बड़ क्रूर ती जूर ती अत सफरस दौरान पत इंसानस के मकाम दि तय
0: हजरत
1: इंसान ब्रह ब्रह पकान इजन ये सूफियत बेसिकली इश मकामन हिंज अख दौर यानि मकाम मुख्तलिफ सर कर तो पत कुन वातुन आखिर अगर ये सूफियत जानो ये सूफियत गई क्या
0: अगर अख इंसान सुंद वजूद तैयार गो ये अख ढांचा अख तैयार गो ये कम पर्पज खतरा आवे दुनिया
1: मन
0: अम सुंद पर्पज मा ओस युत योत कि मे बत खुन मे मकान बनाव ये जरूरी यम चीज तो जरूरी मगर उस इंसानस आव गोड़े वन के वफी अनफुसिक जो ये झांकने की बात है दैट इज कॉल्ड अ सूफियत।
1: अच्छा यानी पनिस पानस वन दिन
0: बिल्कुल सुच बुचस इस छ आखुन सब विनके से दत कथ करान करान छ वनी बुचस तो से कथ करान ये जेव गई मैं बांध यम चश्मा गई मैं बांध यम कान गई मैं बांध इट मीन्स के कहनत का चीज छ मैं उस चीज में ये करनावान छ।
1: अच्छा
0: ये मीन्स ने यम चीज में रोजी ये बने मैं अख सु मेच लपन अख अख बॉडी अख यस ये बॉडी अत अद बॉडी छ सो वैल्यू
1: किहन
0: ये बॉडी से खत्म गसान तथी मगर उस चीज अत मज छ अत मज ओस अत मज द्राव अत मज साव दलील छ सूफियत सोय यानी कि दैट इज कॉल्ड अगर इस इत पड़ विचो इट इज अ इनर पावर।
1: अच्छा
0: अंदरम ताकत अख सु ताकत उस इंसान सिंज वजूदस अख हस अख देवान छ यस ये वजवन मेच तो खूनुक लफड़ मामल छु इछु यमि वजूद इज दलील।
1: अच्छा
0: मगर अथ वजूदस मंस यस चीज छु सु छु मैंने तुम पे कोई चीज फोंक दी।
1: अच्छा अच्छा ये वंदे तो एस तो इमजन आम बोजन वर छि तिम यछन जानन जे पन्निस वजूदस वंदिन क्या छु जरूरी
0: अच्छा अगर इंसान सुन वजूद तैयार आव करन अशरफुल मखलूकात क्या जतो ने इंसानस लकब अशरफुल मखलूकात छु यथो मे सारनी मखलूकातन थोद।
1: अच्छा
0: यस ये शरफ छु शरफची दलील छ सो दलील यद अमिस वन छ दुन और अमे मज नमि सू चीज यमि चीज सम जान ग कि बह कत आस।
1: अच्छा अच्छा वन आम इंसान अम जन कर सूफियत सर कह रूद ये दुनिया पे पन जिंदगी गुजारान ठीक पे ब्या गुजारान अमिस कस कमी गिल
0: कमी हेक ग यीतिस कालस न रबस यह बंद हेचनावन छ तीतिस कालस त्रावस नल कहें क्या कह पावर छ अगर अम सुंद वजूद बनो अमिस कुन चीज निश कालो बला कर और ये वीज ये कालो बला कर अमिस तर पन बेस फिक्र कि बह क्या आस मे क्या उस कर बह क्या करने आस।
1: अच्छा यम जन उसूल छे मुख्तलिफ डायरेक्शन छे तिम छे ऑलरेडी दित मतलब किताबन मज ते या यम जन मजहबी किताब छे तिमन मज ते लिखित उसूल जिंदगी कित पड़ गसी गुजारन तो अगर तिमन उसूलन पर ते पाकि इंसान तो
0: सो छ सही कत छ बेपीर इंसान इरवे नावे बेपीर इंसान तावन जद पीरस छ ज कसम मज अख पीर छ जहिरुक पीर।
1: अच्छा
0: यस ये जहिरुक पीर छ यु छ फनाफ शेख यह इंसानस मरहलो मज गुजरन यीतिस कालस न इंसानस यत बॉडी यत वजूदस वसत लगे कुन चीज यानि कि अत चीज ग टच दिन वोल आत अमिस पन बेस समझ तर नॉर्मल लाइफ तिन रब समर कि तमिस कायन अत पकन यह कम तुम सास मज अखलस्तु नम हस रट सी तल यम हस यम तल रट यम दुनिया लोलंगरस मज पजित अम अखलस्तु यमिस अमि जच पे और यमिस ये जच पे तमिस तरान फिक्र कि मेन कश पट वनो या मानि या दुनिया मज क्या मेन जरूरत मेन यथ आलमस मज इन जरूरत क्या मगर तथ जरूरी सो मुर्शिद आसुन बह वन तुम आखुन साहब आम मुर्शिद यह जरूरी कथ क्या मैं बोजान विकस मुर्शिदस तो मुर्शिदस मज फरक मुर्शिद कामिल आसुन कामिल गो कि तमिस सत गसुन गोड सो हाल गुदरमुत यमिस क्या गुदरुन हेचनावान यह प्रण कथ कि गुदरुन हेचनावान ये इंसानस पे कह चीज गुदर सु बावि तमिस गुदरन वलिस यमिस अमि जरूरत
1: अच्छी वन तुम सूफ यह खुदशनास कि खुदाशनास
0: यह सो कथ कि खुदशनास तो खुदाशनास कम तरफन वोनमुत खुदाशनास अपत
1: अच्छा
0: तम कत चीज कुन दि हस خدا شناسا پیتا اتنا عالمی حیرت پیو

0: हर जब हम दो पर्च कुरान
1: हर जब हम दो पर्च कुरान
0: हर जब हम दो पर्च कुरान
1: हर जब हम दो पर्च कुरान
0: वनहन अकरब अलैहा मान
1: वनहन अकरब अलैहा मान
0: वनहन अकरब

यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय रात के 10:30 हो रहे हैं। आइए समाप्त करें आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: रीति रिवाज, विश्वास, मानतावां, ज्ञान, पदार्थ, कारोबार, कदरां कीमतां, पूजा विधियां, अनुशासित मतलब संसारक जीवन नाल संबंधित समुच्चा विरसा इस दे घेरे विच आ जांदा है। ए सब कुछ सभ्याचारक प्राणी नूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरक रूप विच अपने वड्डे वडेरियां तों प्राप्त हुंदा है। इस किस्म दी विरासत विच पदार्थक पहलुआं तों इलावा नैतिक, धार्मिक, बौद्धिक गतिविधियां अते होर सरोकार वी व्यापक पदर उत्ते कुछ दिस अते कुछ अदिस रूप विच पसरे होए हुंदे हन। इन्हां सारिया पहलुआं नूं ध्यान विच रखदियां सभ्याचारक विज्ञानियां जां सभ्याचारक अध्ययन करदियां वल्लों सभ्याचारक अंग निश्चित कीते गए हन। सो साथियों, डॉक्टर गुरबख्श सिंह फेरिंग ने अपनी पुस्तक सभ्याचार मुंडली जाण पछाण विच सभ्याचार नूं तीन मुख भागां विच वंडिया होया है। पहला प्रतिमानक, दूजा पदार्थक अते तीजा बोधात्मक। इन्हां तीनों अंगां विच विभिन्न पक्खां नूं विचारिया गया है। डॉक्टर फ्रैग दी ए वंड कुछ सीमावां यानी कि पदार्थक सभ्याचारक दे बावजूद सभ्याचार दे व्यापक वर्तारे नूं बहुत पक्खां नूं समेटण दी दृष्टि तो काफ़ी समर्थक हन। अते ई बैलर ने सभ्याचार दे दो मुख भाग पदार्थक सभ्याचार अते आर्थक सभ्याचार कीते हन। सो साथियो, इस तौर ते ए प्रकार सभ्याचार दे मुख तौर ते चार अंग निश्चित कीते गए हन। पहला पदार्थिक, दूजा सामाजिक, तीजा धार्मिक अते चौथा राजनीतिक। असी इन्हें पक्खां नूं होर भी जाणांगे। आओ इस साहित्यिक मणकियां दी माला नूं अगे तोरदे होए असी जुड़दे हाँ कहानी नाल। ते कहानीकार ने मंगत सिंह जुगनू, आओ सुनदे हाँ कहानी तुंदले नक्श।
1: रात किंज बीत गई, अख चिपकहनिया जा पल छिण दी कशमकश, समझो मैनू कुछ पता नहीं। रात देर नाल सुत्या सा, शायद इसलिए नींद कुछ मिठी मिठी जी आई सी, ते सवेर अखां खोलन दा मन ही नहीं करदा। आखिर मैं हौली हौली अखां खोल मिठी मिठी नींद नूं अलविदा कह बारी दिया शीशे चों बाहर तकिया, मैनू लगा पंज सवा पंज वजे होणगे, पर घड़ी ठीक सवा सत वजा रही सी। मेरा मन हाली भी सौण नूं करदा सी, शीशियां वाल तक इंज लग रहा सी जिवें पोह हुणे ही फुटी होए। सारी रात मैं की कर रहा सी, नींदर जां होर कुछ। अखां दे भारेपन तो इंज लग रहा सी जिवें मैनू मिठा मिठा नींदरा होया होवे। पोह मां दियां लम्मियां रातां ते कश्मीर, नाले सब नूं यख च कैद करन वाला महादेव चिले कलान। मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा सां कि मैनू कुछ हल्का हल्का कुछ धुंधला धुंधला याद आन लगा, कुछ धुंधले जे नक्श मेरे जहन च उभरन लगे। मैं सारी रात खाबां दी वलगण च पटक रहा सां, फिर अखां नूं अनींदरा तां पासना ही सी। खाब इक ऐसी सच्चाई जिसका संबंध हकीकत दी दुनिया नाल बड़े दूर दा होंदा है। कुछ सुफने इतने स्वादले होंदे हन कि बंदा सुफनियां दी सीमा विच रह सुरगां दे नज़ारे लैणा चाहुंदा है, ते कुछ सुफने इतने भयानक होंदे हन कि बंदा पैपीत हो के परेशानी दे आलम विच खो जांदा है। गल करदियां करदियां मैं कित्थों दा कित्थे पुज जांदा हां। मैं गल कर रहा सां अज रात दी, अज सारी रात मैं यारां दी महफ विच सां। हाय, यारां दी गल करदियां दिल दे किसे हिस्से नूं इक अजीब जिही मिठी मिठी कसक होंदी है, जिस नूं मैं केवल महसूस कर सकदा हां, बयान नहीं। यारां दियां बाहां विच गलवकड़ियां पा कश्मीर दियां सरसब्ज चिट्टियां वादियां उत्तों सुरगी झूठा ला रहा सां। सुरगी झूठा लाउंदियां ही किते मैं नौकरी लई शहर इंटरव्यू देण चला गया सां। नौकरी वलों ना उम्मीद हो के मैं अपने पिंड जाण वाली बस ते नाराज जे मूड विच चढ़ गया। बस खचा खच भरी सी ते ए साढ़े पिंड जाण वाली आखरी बस सी। बस विच कई सवारियां खड़ियां सन, पर एक दो सीटर ते एक तीनी बैठी सी जिसकी नाल वाली सीट खाली सी। मेरे तो पहला खड़ियां सवारियां उस सीट ते किसे दी होंद दी गवाही भर रहियां सन, इसलिए मैं चुप रहना ही मुनासिब समझिया। बस दे इंजन ते मेरा एक जानकार बैठा सी ते मैं बैक सीट तो थोड़ा जे अगे जा खड़ा हो गया। मेरे जानकार ने मेरा नाम लैके मैनू अपने कोल बैठने लई सद्या, पर मैं भीड़ चो लंघना कठिन समझ के ना कर दिती ते उस हस के मेरे ते एक मजाकिया फिकरा कस दिता ते मैं चुपचाप अपनी थां ते खड़ा रहा। इतने चो सीट ते बैठी हुई तीवी ने मेरा नाम बादब तरीके नाल लैके मैनू अपने नाल

0: जो इतिहास रचिया गया है वह निरोल पंजाबी भाषा दे विच नहीं है, वह सदुकड़ी भाषा दे विच है। इस विच नाथां दी जोगियां दी रचनावां ने, कुछ नाथां विचो प्रमुख ने जिवें कि गोरखनाथ दी रचनावां, चरपटनाथ दी रचनावां ते रतननाथ दी रचनावां। ए रचनावां सदुकड़ी भाषा दे विच ने, निरोल पंजाबी दे विच नहीं, जिवें मैं तुहानूं पहलां वी दस्सिया है। ए रचनावां जोग मत दा प्रचार करन लई, मानवता नूं सही रस्ता दसन लई कीतियां गईयां। इन्हां ने कविता नूं जरिया बना के समाज नूं कुछ सेध दित्ती। ए पंजाबी साहित दा मुढला यानी कि बेसिक पड़ा सी, जिहदे विच पंजाबी दे साहित दी इतिहास दी बुनियाद टिकी होई सी। पूर्व नानक काल विच बाबा फरीद जी ने जो बाणी लिखी वह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी दर्ज कीती गई। उन्होंने सानू ए उपदेश दिता कि सानू एक परमात्मा दे नाल जुड़ना चाहिदा है। इस बाणी विच उन्होंने मनुख नू परमात्मा नाल जोड़न दा, मानवता भाईचारे दा उपदेश दिता। इस समय विच वारां दी रचना भी कीती गई। कई लोग जो राज्यां दी प्रशंसा करदे सन, उन्हां दी जंगां दे बारे लिखदे सन, उन्होंने राज्यां दी तारीफ करन लई इस सब रचनावां दा साथ लिया। भगती साहित भी इस समय दे विच ही रचिया गया, जिन्हां दे विचो सानू कई सारे भगतां दी बाणी जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच भी मिलदी है। जेकर आपां गल कर लईए तां 15 भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच दर्ज है। उन्हां दे विचो साडे कोल सारे 15 नाम कुछ इस प्रकार ने: शेख फरीद जी, भगत बेनी जी, भगत पीखन जी, भगत धन्ना जी, भगत जयदेव जी, भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, भगत परमानंद जी, भगत पीपा जी, भगत रामानंद जी, भगत रविदास जी, भगत सदना जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत सैन जी, भगत सूरदास जी। ए सारे वख वख धर्मां वख वख जातियां दे नाल संबंधित सन, पर इन्हां सारिआं ने जो सानू उपदेश दित्ता वो ए सी कि सानू अंधविश्वास नहीं करना चाहिदा। इन्हां ने अंधविश्वास यानी कि मिथ्स नू, सस्पिशन्स नू खत्म करन दे लई गुरबाणी दी रचना कीती।
1: साथियो, ये वार्ता तुसी सुन रहे सी मनप्रीत कौर होरा पासो, पंजाबी साहित दा इतिहास। साथियो, आज दा साहित्यिक मैगजीन दा शुमारा इत्थे ही समाप्त हुंदा है। ते जिवें अज लोक मेलियां दे बारे गलबात कीती है, अगे भी असी साहित्यिक दा कोई ना कोई पक्ष लैके तुहाडे सामने हाजिर होवांगे। तद तक लई तुसी अपना ते अपने परिवार दा ख्याल रखो, आसे पासे सफाई रखो, खुश रहो। लैंदे हां इजाजत, रब राखा।
2: सोएन, आप पंजाबी मैगजीन से बात कर रहे थे। पेशकश समीना शाह। 11 बजे वाले हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नशरोंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
4: The topic for the Governing Council meeting.
5: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और

0: बुढ़ापा, टू यूथ, टू वर्किंग लाइफ, टू ओल्ड एज।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment.
0: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047.

0: And it was about details. The states talked about what they're doing. Inclusive human development covers all the four stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
1: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the center and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it as a historic moment, as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. India strongly condemned the recent attack on Palau-flagged tanker MT Setebalo off the coast of Oman, in which three Indian nationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the U.S. Charge d'Affaires. Mr. Jaiswal noted that the continuing attacks on shipping in the region are deeply worrisome and linked to the ongoing conflict. All four candidates of the National Democratic Alliance, NDA, have been elected unopposed to the Rajya Sabha from Andhra Pradesh today. The elected candidates are Vashyam Ramakrishna, Sana Satish Babu and Chintakayala Vijay of Telugu Desam Party TDP and Lingamaneni Ramesh of Janasena Party. Returning officer R. Vanita Rani announced their election after the completion of the nomination process and the absence of any contesting candidates. Minister of State for Chemical and Fertilizers Anupriya Patel today said that biopharmaceuticals are shaping the future of modern healthcare and India is well positioned to emerge as a global leader in the sector. Addressing the second Pharma Summit and Awards 2026 organized by ASSOCHAM in New Delhi, the minister highlighted that Biopharma Shakti initiative envisages the launch of 100 biologics by 2047, contributing to the vision of Viksit Bharat and Swasth Bharat. Ms. Patel said the government has created strong funding and policy pathways across the pharmaceutical value chain. She further highlighted the growing importance of advanced therapies and noted that initiatives such as the PRIP scheme, National Biopharma Mission, are helping create a robust ecosystem for innovation, research and manufacturing. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। रात के 11:10 हुए हैं। मरकजी गवर्नमेंट के 12 साल मुकम्मल होने पर आइए सुनते हैं एक खास प्रोग्राम।
3: साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
4: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं? क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद आपका।
4: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
5: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न

0: समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
0: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी। चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ

0: हेल्प ग्रुप में सम्मिलित थे, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है। गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है।
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा।

0: लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि जनहित सर्वोपरि इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप

0: सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या एलपीजी के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले, अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको

0: जब आप मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए, ये एआई का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है। और केंद्र सरकार का बराबर साथ।

0: दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
1: धन्यवाद।
0: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा थी, उसको इसी कालखंड में जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें मॉडर्न

0: एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में ही संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत

0: गंभीरता से सुना जाता है, और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: सुनिए, आप मरकजी सरकार के 12 साल मुकम्मल होने पर यह खास प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। रात के 11:45 हुए हैं। हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती है। आपसे इजाजत लेने से पहले एक नज़र कल हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्राम पर। 9:30 पर सेहत से मुतलिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक पेश होगा। कल के प्रोग्राम का मौजू है जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियां, एहतियात और इलाज। मेहमान डॉक्टर हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाजिया जीलानी, मेजबान हैं तबरीज बद्दी। हमारी नशियात का आगाज 6:30 पर होगा। प्रोग्राम सुबह का ही पेश खदमत होगा 6:35 पर। मॉर्निंग लाइव शो पर हम सुबह समाप्त करें 7:10 पर। स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर नश होगा 8:45 पर। कल के प्रोग्राम का मौजू है क्या नाबालिग बच्चों के लिए वसी बनाना दुरुस्त है। मुकर्रर हैं मोहतरम मौलाना फैयाज अहमद जरूर। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। मुकामी रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी सुबह के 9:00। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी, उनकी तालीमात और कलाम से मुतलिक सिलसिलावार प्रोग्राम सूफी सदा पेश खदमत होगा सुबह के 10:00। कल के प्रोग्राम में मारूफ सूफी शायर फकीर अब्दुल करीम से मुतलिक बात होगी, तहरीर फारूक फयाज की है। फारूक अहमद गनाई और साथियों की आवाजों में छोकरी रोज समाप्त करेंगे सुबह 11:30 पर और दिन में 2:30 पर। इनसे आप कलाम लाल और कलाम अफजल वन समाप्त करेंगे। बजमी नसवा रास्तों की दोपहर 12:40 पर इसमें वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के मौजू के तहत गुफ्तगू होगी। मेहमान है एडवोकेट सोहेला। प्रोग्राम की मेजबान है सायका तबसुम। NCERT का तैयार करता तालीमी स्पॉन्सर प्रोग्राम नश होगा दिन में 1:10 पर। सपहर 3:00 प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए। पहाड़ी प्रोग्राम 4:00 नश होगा। पंजाबी प्रोग्राम पेश होगा सपहर 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम के 5:00 पेश होता है। शाम 6:05 पर देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे। शहरबीन आप समाप्त करते हैं शाम के 7:00। प्रोग्राम आदि की आवाज़ रात के 8:00 नश होगा और रात 30 मिनट पर प्रोग्राम पेश होगा स्पोर्ट्स टाइम। समय नहीं है कल हमारे यहाँ से

नष्ट होने वाले प्रोग्राम यह आकाशवाणी श्रीनगर है। शब के 11:47 हुए हैं। अब हमारी आज की नशरियात यहीं पर बर्खास्त होती है। सुबह 6:30 पर कल की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शब बख़ैर। जय हिंद।

0: मुझको है तड़पाती लुटे कोई मन का नगर।
1: दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र

0: और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि पंचायती राज से संबंधित 4 पहल राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं। डिजिटल शासन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण व्यापक बनाने में ये ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका दर्शाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल बदलाव श्रेणी में पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक दिया गया है। ये सूचकांक स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतकों के आधार पर देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करता है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के सांगली जिले की कड़ेपुर ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, जबकि त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की बिजॉय नगर ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायतों द्वारा जमीनी स्तर की पहल श्रेणी के अंतर्गत सेवा वितरण के लिए रजत पदक प्राप्त हुआ है। अगले महीने की 1 और 2 तारीख को राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच अब से कुछ ही देर में रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said, the theme covers all aspects of life including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Vikasit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
2: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the center and the governments of Assam and Nagaland for exploration and

साथ किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर न रखना। रेगिस्तानों में उगते हैं अनबोए कांटों के जंगल, भीतर एक नदी होगी तो कल कल होगी हलचल। जो प्यारे सदियों के बंधक, अब उनको मजबूर न रखना। साथ किसी के रहना, लेकिन खुद को खुद से दूर न रखना। तो बात बस इतनी सी है कि किसी और के प्यार और उसकी चाहत में खो जाना तब तक ठीक है जब तक आपकी खुद की पहचान न खोने लग जाए। और यकीन मानिए, जो आपको खुद से दूर कर दे वो कभी आपका था ही नहीं।

लेकिन हम यानी एफएम गोल्ड हर पहर, चाहे दिन हो या रात, हर पल है आपके साथ और हमारा ये साथ हमेशा यूं ही रहे बरकरार इसी ख्वाहिश के साथ। मैं यानी नाज करती हूं आपको

यहाँ हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा, इधर इंसान है तेरा, उधर भगवान है तेरा, जमीन से आसमां तलक हर जगह गुणगान है तेरा। ये दुनिया चल रही है अब तलक मेरी जान, ये एहसान है तेरा, और तेरे होने से ही तो ये है कुदरत, तो इसकी शान रखा कर। बहलाने वालों को तू ना कहने का ईमान रखा कर, सही है कौन गलत जरा ये पहचान भी रखा कर, और आखिर में बस एक गुजारिश है कि तू अपना ध्यान रखा कर।

कभी कभी सिर्फ एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। वो आपको दिखाता है आपकी अच्छाइयां और आपकी गलतियां भी, दोनों को बिना किसी मिलावट के। और आपकी मुलाकात करवाता है वो आपके अंदर के उस इंसान से जिससे तो आप कभी मिले ही नहीं थे। तो जनाब, जिंदगी में कभी कहीं भी कोई ऐसा मिल जाए ना, तो उसे जाने मत देना, क्योंकि उसे आपके लिए आपने नहीं चुना है, बल्कि वो तो एक तोहफा है जो शायद आपकी तारीफ में उस ऊपर वाले ने भेजा है।

देखिए, हर रिश्ते में बहस होती है, गलत फहमियां भी होती हैं, कभी कभी मन भर भी जाता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो छोड़ने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कभी कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और जिसे परफेक्ट होना चाहिए वो है

नहीं पाती। लोग मिलते हैं मुझे, पर मैं उनसे ठीक से मिल भी नहीं पाती। सुनो, तुम लौट आओ ना किसी बहाने से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बांटना है तुम्हारे साथ।

मैं कभी कभी सोचती हूँ उन बातों के बारे में जो रह गई तुम्हारे और मेरे बीच। हम साथ होते तो कितनी बातें करते, है ना? पता है, मैं उन बातों को अब किसी और के साथ बांट भी नहीं।

पूरे सप्ताह की थकान उतर जाती है ना? आपके साथ भी होता है ऐसा? पर अफसोस, जिस दिन सोने की आजादी हो उस दिन, खासकर उस दिन, ढंग से नींद कहाँ आती है।

उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या, उसकी आंखों से खूबसूरत और क्या ही होगा जिससे हमें मोहब्बत है। तो कहना है मुझे तुमसे कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, ये बयां करने को अगर मुझे लफ्ज मिल जाएं, तो क्या खाक खूबसूरत है तुम्हारी आंखें।

चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। और पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें।

तो रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब तो बता मनाने की। हम खुद को गिरवी रख देंगे, तू कीमत तो बता मुस्कुराने की।

आंखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजाकर बैठ गई, और कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फौरन उस पर एक तितली आकर बैठ गई।

उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे। पलट के आए तो सबसे पहले तुझे हम मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल के पहले सफ में खड़े मिलेंगे। और अब हम मिलेंगे ठीक 1:10 पर। उससे पहले आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों के किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मैक्सिको एक गोल की बढ़त बना चुका था। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on One District, One Product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment. A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naifiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it a historic moment as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has said that the horticulture production in the country is expected to be about 3,778 lakh tons in 2025-26, showing an increase of 70.39 lakh ton over 2024-25. According to the second advance estimates of 2025-26 of area and production of various horticulture crops released by the ministry, horticulture cultivation area in the country is likely to reach 301.51 lakh hectare in 2025.

मैंने चांद पर कुछ लिखा है, तुम चुपके से पढ़ लेना। तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगी। तुम शाम को याद करना, मैं रात सपने में जरूर आऊंगी। और इन दिनों अपनी ही हरकतों पर हंसी आती है मुझे, बस एक यही तो बहाना है जिस पे हंसी आती है मुझे। और तुम दूर हो या पास, ये बात कोई मायने नहीं रखती। मैं देख चुकी हूं खुद को तुम्हारी आंखों में, अब मैं अपने घर में आईना नहीं रखती। और इस बात के साथ मैं यानी नाज करती हूं आपका स्वागत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 1:11:58। और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और यहां बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एक शेर और सुनते जाइए कि उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा। उसके चेहरे की चमक के सामने सब कुछ सादा लगा। आसमां पे चांद पूरा था, मगर हमें आधा लगा।

सच है ना कि जब महबूब का साथ हो तो कुछ भी आधा अधूरा नहीं लगता, एक सिर्फ उसके होने भर से सब कुछ पूरा हो जाता है। और दिल से बस यही अल्फाज निकलते हैं कि न चांद की चाहत है न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत है न तारों की, बस हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही तो है मेरी ख्वाहिश।

सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो। कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजरों से बतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, क्या है ये इश्क? सुलगती सांसें, तरसती आंखें,

सच ही तो है, ये रात, ये मौसम, सब कुछ बहुत खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा हो जाता है जब महबूब का साथ मिल जाता है। और यही जज्बात बशीर बद्र साहब क्या खूब बयां करते हैं कि रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, ये रात आंखों में ढली, पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए, और मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए।

कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जो हम करते तो किसी और से हैं, लेकिन हकीकत में वो बात हम खुद से कह रहे होते हैं। अब जो अगला गीत आप सुनने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसी ही बात कहता है कि मैंने कब चाहा था कि मुझे चांद सी महबूबा मिले, पर सच में जैसी मैंने चाही थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। और ये खूबसूरत बोल गीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने, और बेहद सादगी और मासूमियत के साथ गाया है मुकेश जी ने।

ये जिंदगी आखिर है क्या? एक मुकम्मल इश्क की तलाश ही तो है। तेरा इश्क है मेरी आरजू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क है, जान इश्क है, और ईमान की जो पूछो तो ईमान इश्क है। साहिर लुधियानवी साहब के ये खूबसूरत बोल आइए सुनते हैं। साल 1960 में आई फिल्म बरसात की रात से एक और बेहतरीन गाना और संगीत है रोशन साहब का।

इतना मजबूर न कर कि बातें बनाने लग जाएं, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाएं।

ये आवाज आखिर होती क्या है? वो जो किसी एक से किसी दूसरे तक पहुंचती है, तो वो आवाज तो कुछ भी हो सकती है। वो किसी की लिखाई में हो सकती है, वो किसी की बात में हो सकती है, या फिर किसी एहसास में भी तो हो सकती है, या फिर किसी के जज्बात, वो भी तो उसकी आवाज ही हो सकते हैं। गुलजार साहब ने ठीक इसी आवाज का जिक्र इस गाने में किया है दोस्तों, जो अब आप सुनने वाले हैं, और बखूबी उस आवाज को हम सब तक पहुंचाया है लता जी ने। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत इतना नाजुक एहसास है कि जिसमें इजाजत का शामिल होना बेहद जरूरी हो जाता है। हम जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे पर हक होता है, मगर उस हक को जता देने से अक्सर सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर हम अगर याद रखें कि इस हक को कमाया कैसे जाए, तो यकीनन रिश्ता बेहद खूबसूरत और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे इस गीत में हसरत जयपुरी साहब बोल रहे हैं। फिल्म जंगली का ये बेहद खूबसूरत गीत जो अब आप सुनने वाले हैं, इसमें संगीत है शंकर जयकिशन का और रफी साहब की आवाज वाकई सब कुछ कह जाती है।

इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं, ये जानने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? जिसको खोने का सबसे ज्यादा डर हो, बस वही तो है वो। सब कुछ अच्छा है, वो साथ भी है, लेकिन फिर भी दिल में एक डर है कि कहीं वो आंखों से ओझल हो गया तो। इन्हीं जज्बात को सुरों में बांधे कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे, फिल्म असली नकली से। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, कानों में मिसरी खोलती मीठी आवाज लता जी की।

ये रात आती है तो आसमां सज जाता है, तारों की महफिल में ये दिल बहल जाता है। दिन की सारी थकान मिट जाती है ऐसे जैसे कोई लोरी गाकर सुला जाता है। तो चलो अब आंखों में कुछ नए ख्वाब सजा लें, इस हसीन रात को गले से लगा लें। कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है, कल फिर एक नई सुबह का स्वागत करना है हमें मिलकर। आज की रात सब गिले शिकवे भुला दें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा

0: मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता से इतर विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच के सिलसिले में हरियाणा के विकास एवं पंचायत निदेशक कार्यालय के तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और दो निजी स्कूलों के खातों से 645 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रविवार तक 4 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on One District, One Product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said, the theme covers all aspects of life including education, health and employment. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. The Ministry of Panchayati Raj has said that 4 Panchayati Raj related initiatives have been selected for the National Awards for e-Governance 2026. The Ministry said that it highlights the growing role of Gram Panchayats in advancing digital governance and citizen-centric service delivery. It said the Panchayat Advancement Index has received the Gold Award under the category of Digital Transformation by Use of Data Analytics in Digital Platforms. It added that the index assesses the performance of Gram Panchayat across the country based on indicators linked to localized sustainable development goals. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has said that the horticulture production in the country is expected to be about 3,778 lakh tons in 2025-26, showing an increase of 70.39 lakh tons over 2024-25. According to the second advanced estimates of 2025-26 of area and production of various horticulture crops released by the Ministry, Horticulture Division area horticulture cultivation area in the country is likely to reach 301.51 lakh hectare in 2025-26, showing an increase of 0.14 lakh hectare over 2024-25. According to the advance estimates, food production is expected to be over 1,214 lakh tons due to increased production of banana, mango, papaya, apple and guava.

रोशनी से तेरी वहां चांद रूठा बैठा है, मैंने तुझे मांगा जब भी टूटता हुआ तारा देखा है। तेरे जैसी महक यहां किसी फूल में नहीं, यकीन कर मेरा मैंने हर बाग देखा है। जी हाँ, चांद अपने पूरे शबाब पर है और आप हैं मेरे यानी नाज के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और प्रोग्राम चल रहा है रात सुरमई। करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे जो है फिल्म अनाड़ी से, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश जी की, संगीत शंकर जयकिशन का और बोल हसरत जयपुरी साहब के।

बात ऐसी है कि मुझे चांद देखना पसंद है और उसे चांद सा दिखना पसंद है। वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पे छोड़ देती है। मुस्कुराते ही समाज के सारे बंधन तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना सवरना, बदल न जाए इस दुनिया का हाल वरना। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती। ये वो हां नहीं, बेफिजूल से सवालों में नहीं उलझती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, सोचो अगर वो काजल लगा ले तो एक दफा बस अपने उलझे बाल सुलझा ले तो। ये जमाना अपना रुख न बदल दे, हर कोई उसके साथ न चल दे, ये हवाएं रुक न जाएं कहीं उसे देखने को, ये हवाएं रुक न जाएं उसे देखने को कहीं। मैंने जब से देखा है उसे, मैं हूं बस वहीं, बस वहीं।

मरीज़े मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफी है। मरीज़े मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफी है। हर एक दवा से बेहतर निगाहे यार काफी है।

पत्थर है तेरे हाथ या कोई फूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सर पर अभी तो पिछली मसाफत की धूल है। तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। तू यार है तो इतनी कड़ी गुफ्तगू न कर, तेरा उसूल है तो मेरा भी उसूल है। लफ्जों की आबरू को यूं गवाओ ना अदीन, जो मानता नहीं उसे कहना फिजूल है।

बहुत गहरी थी रात, मगर हम सोए नहीं। बहुत गहरी थी रात, मगर हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में, मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी, जाग किस लिए रहे हो और किस लिए सोए नहीं।

तो भी एहसासे मोहब्बत हो तो आ जाना, किसी टूटे हुए दिल की जरूरत हो तो आ जाना। हमारा दिल तुम्हारी याद में दिन रात जगता है, तुम्हारी भी अगर ऐसी ही हालत हो तो आ जाना। जमाना प्यार का दुश्मन तुम्हें आने नहीं देगा, मगर कभी कोई आने की सूरत हो तो आ जाना। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। तुम अपने दिल के मालिक हो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते। न जी चाहे तो मत आना, तबीयत हो तो आ जाना।

हिज्र में एक रात ऐसे टाल देती हूँ, हिज्र में मैं एक रात ऐसे टाल देती हूँ, मैं खुद को जैसे सदमे में डाल देती हूँ। क्या तुम्हें सच में लौट के नहीं आना? चलो मैं तुम्हें एक और साल देती हूँ।

मुझे मालूम है तुम रास्ते क्यों भूल जाते हो, तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगता है। कोई भी रास्ता जो देर तक सीधा चला जाए, तुम्हें लगता है ये भी न पहुंचेगा कहीं, या फिर बंद हो जाएगा आखिर में। तो यही अच्छा है कि कोई मोड़ मुड़ जाए और फिर मिल जाए शायद कहीं।

तुमको पाकर जो मिली उस मोहब्बत का क्या करूं, दिल न फट जाए इतनी खुशी का क्या करूं। मैं न कहती थी कि मैं तरसी हुई हूं प्यार की, लो मोहब्बत हो गई अब दोस्ती का क्या करूं। चांद मेरा है, मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। हर तरफ बिखरी हुई इस चांदनी का क्या करूं, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक। ये जो तुमसे हो गई उस आखिरी का क्या करूं।

चेहरे पर मुस्कान सजा कर रखना, यही तो जिंदगी है। गम में भी खुद को संभाले रखना, यही तो बंदगी है। क्या रखा है रोकर इस दुनिया को दिखाने में, मुस्कुराकर सब भूल जाना ही सबसे बड़ी दिल लगी है। और तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तुम्हारी हंसी के पीछे का राज ढूंढती रहती हूं मैं, तो बस तुम्हारे मुस्कुराने की आस रखती हूं। रूठना मत कभी जिंदगी के इन थपेड़ों से तुम, तुम्हारी इसी मुस्कान में तो मैं अपनी कायनात देखती हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंत कयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमराही में। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

रात की खामोशी में जब प्यार की सरगम बजती है, तब दिल अपने प्यार के नाम की धड़कनों से महफिल सजा लेता है। मोहब्बत का सबसे सुंदर एहसास वही है जिसमें अपना कोई हर पल दिल के करीब महसूस हो।

प्यार की मीठी शरारतें और यादों की हल्की सी आहट रात को और भी हसीन बना देती है। कभी एक मुस्कान तो कभी एक याद दिल को बेकरार कर जाती है।

सच्चा प्यार किसी तुलना का मोहताज नहीं होता, वह अपने विश्वास और समर्पण से सबसे खास बन जाता है। जिस रिश्ते में अपनापन, वादा, प्यार हो, वह हर खुशी से बढ़कर होता है।

कभी कभी दिल की अनकहीं बातें ही सबसे गहरी मोहब्बत का एहसास कराती है। रात की तन्हाई में यादें वही सवाल पूछती है जिनका जवाब सिर्फ दिल जानता है।

प्यार में किए गए सच्चे वादे रिश्तों को उम्र भर की मिठास दे जाते हैं। जो साथ निभाने का वादा करते हैं वे दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं।

दुनिया में अगर कोई एहसास सबसे पुराना और सबसे नया है तो वो है प्यार ही। मोहब्बत हर दौर में दिलों को जोड़ने वाली सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है।

कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में ही दिल पर अपना नाम लिख जाती हैं। रात की चांदनी में पहली मोहब्बत की यादें आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहली बार लगी थी।

और इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। और आप कहीं मत जाइएगा, जी हाँ 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाहों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। मंत्रालय ने हितधारकों से कहा है कि वे भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तुरंत नौवहन महानिदेशालय को दें ताकि तत्काल हस्तक्षेप और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और चुनाव अधिकारी ने उन्हें औपचारिक रूप से निर्विरोध विजेता घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सांसद लिशेम्बा संजावोबा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि फल, सब्जियां, फूल और सुगंधित एवं औषधीय फसलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की चुपके चुपके फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार अनंत बख्शी और संगीतकार एस जी बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म संसार से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म अनुराग से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म चला बापू से मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सफर से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार इंदीवर।

कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ भी रहा है। तो अगला गीत सुनते हैं फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर, क्षमा कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार एस जी बर्मन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सरगम से मोहम्मद रवि और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत वेरेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे 100.1 MHz पर। मैं जल्द हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और अच्छे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलेन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य की ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें कल औपचारिक रूप से विजेता घोषित किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि को दर्शाता है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ। भजन है फिल्म भक्ति में शक्ति से, मोहम्मद रफी, दिलराज कौर और उमी और उनके साथियों की आवाज में।

हे प्रभु, आपकी कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब विश्वास ईश्वर पर हो तो हर कठिन राह भी सरल और प्रकाशमय बन जाती है।

पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरने के लिए मन को भय और संकोच से मुक्त करना पड़ता है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है उसके लिए आकाश भी सीमित नहीं रहता।